मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्स पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 14वीं तिथि, तदनुसार 4 जून सन 2026 सवेरे के 5:59 और 8 सेकंड हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: बोल रहे हैं, सवेरे के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा।

0: का। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। ईश्वर भक्ति के रंग से बढ़कर श्रोताओं कोई रंग नहीं है। मनुष्य जब भक्ति में रमता है तो अपने सारे दुख भूल जाता है और अपना सब कुछ उसकी भक्ति में अर्पण कर देता है। और सांवरे की भक्ति का रंग अगर चढ़ जाए तो मनुष्य बस यही कह पाता है।

मानिक वर्मा की आवाज में अभी आपने सुनाई ये भजन। ईश्वर भक्ति से बड़ा सुख इस संसार में दूसरा नहीं है। इंसान के जीवन में इतनी परेशानियां हैं कि इन चीजों की चिंता में वह दिन रात जलता रहता है। मोहमाया चिंता कभी समाप्त ही नहीं होती, इसलिए ईश्वर भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जो जीवन की सभी चिंताओं और परेशानियों का हल दे सकता है।

नंदनी शरण की आवाज में अभी आपने सुना ये भजन। गुरु नानक जी कहते हैं, ईश्वर एक है और हर जगह मौजूद है। सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करो। ईश्वर सब में व्यापक है, सबका पिता वही है। इसलिए सभी से प्रेम करना चाहिए और बुरे विचारों को त्याग देना चाहिए।

संत अनूप सिंह की आवाज में भी आपने सुना ये शब्द। श्रोताओं, कहते हैं जिस बंदे पर अल्लाह की रहमत होती है वह इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान होता है। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे सरताज, मेरी सारी जिंदगी तुझ पर निसार है। ऐ मेरे रब, मुझे अपनी पनाह में लेकर मुझे अपनी रहमत से नवाज दे।

जोगेंद्र और साथियों की आवाज में अभी आपने सुनी ये नात। कहते हैं कि जीवन में किसी भी तरह की समस्या हो या कोई परेशानी हो तो साईं बाबा का नाम जपने से, वंदन करने से हर परेशानी दूर हो जाती है। हे साईं बाबा, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और हम अज्ञानियों को अपने ज्ञान की ज्योति से प्रकाशमय बना दें।

0: अनुराधा पौड़वाल और साथियों की गाई इस आरती के साथ ही भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान से आज का प्रसंग। गायक कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह और महेंद्र कपूर। संगीत है सतीश भाटिया का।
1: एपिसोड 163।

गंगा तट पर श्री राम तथा सीता को रात्रि विश्राम के लिए धरती पर सोते देख निषाद राज को बहुत दुख हुआ। उनके आहत मन को सांत्वना देने के उद्देश्य से रात भर लक्ष्मण ज्ञान वैराग्य की मीमांसा करते हुए भक्ति का उपदेश देते रहे। इस प्रकार श्री राम के गुणों की प्रशंसा करते हुए सवेरा हुआ। स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री राम ने बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। ये देख सुमंत्र की आंखों में आंसू उमड़ आए। महाराज दशरथ ने उन्हें यह कहकर श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ भेजा था कि वन दिखाकर गंगा स्नान करा वो उन्हें साथ अयोध्या लौटा लाए। श्री राम को महाराज का यह संदेश सुनाकर सुमंत्र बालकों की भांति रो पड़े। राम ने अपने चरणों में गिरे सुमंत्र को उठाकर उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा, हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों का अध्ययन मनन किया है। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म पालन का अवसर सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश होगा। प्रतिष्ठावान व्यक्ति के लिए अपयश तो करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाला होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान से आज का प्रसंग। गायक कलाकार थे भूपेंद्र सिंह और महेंद्र कपूर। संगीत था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: धर्माचरण एक उपासना है। उपासना में विरोध की गुंजाइश नहीं। जो स्वधर्म का निष्ठा से आचरण करेगा उसमें स्वभावतः ही दूसरे धर्मों के लिए आदर रहेगा। जिसमें पर धर्म के लिए अनादर हो उसके बारे में समझ लीजिए कि वो अपने ही धर्म का आचरण नहीं करता। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, ये सभी धर्म सत्य व मनुष्योपयोगी ज्ञान की मूर्तियां हैं। उनके ज्ञान में विरोध कहीं नहीं, बल्कि विरोध की कल्पना कतिपय मनुष्यों की समझ का दोष है। समस्त संसार का सृष्टा एक ही है, उसे विभिन्न धर्म विभिन्न नामों से पुकारते हैं। सारे धर्म भगवान के चरण हैं, अतः सभी धर्मावलंबियों को एक ही सृष्टा की संतान होने के कारण आपस में प्रेम तथा सौहार्द से सदैव बरतना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत के निवारणों के लिए उनका कहना है, अस्पृश्यता भारतीय समाज का कलंक है, इसे दूर करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। इसके लिए दो बातें आवश्यक हैं। प्रथम, हरिजनों की आर्थिक स्थिति और उनके रहन सहन की मनोवृत्ति में सुधार। स्वच्छ व्यक्ति से कोई घृणा नहीं करता। यदि हरिजन भाई कार्य के बाद स्वच्छ रहें तो किसी को उनसे घृणा नहीं होगी। दूसरे, सवर्णों के विचारों की संकीर्णता दूर होना। आत्मा सबके देह में एक सी बसी है, फिर भेदभाव कैसा। समाज का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने कार्य की आवश्यकता और महत्ता के कारण समान रूप से आवश्यक और महत्वपूर्ण है, फिर सामाजिक अंगों का एक दूसरे से अलगाव कैसा। हरिजन एवं सवर्णों को सामाजिक कड़ी की तरह प्रेम के बंधन में जुड़े रहकर कार्य करना चाहिए, यही वास्तविक समाज कल्याण है। ग्राम सेवा के बारे में भी विनोबा जी का आग्रह है कि भारत की ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या से कई गुना अधिक है, अतः देहातों का सुधार वास्तविक भारत का सुधार है। ग्राम सेवा ही परम धर्म है। आज सभी कार्यों के विशेषज्ञों को ग्रामों में जाकर ग्रामीणों को उनके रहन सहन के तरीकों के बारे में अत्यधिक जानकारी देकर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहिए। देहातों को स्वावलंबी बनाना चाहिए, उनको स्वाभाविक तथा संयमशील जीवन और नैसर्गिक उपचार सीखने चाहिए। ये सब तब ही संभव है जब वे उद्योगी बने। हिंदुस्तान का आज सबसे मुख्य रोग आलस्य है। हम निरंतर उद्योग करते रहकर उसे दूर कर सकते हैं, इसलिए उद्योग करना चाहिए। वह निरंतर हो, वह जीवन में घुल मिल जाना चाहिए, उसी पर हमारे जीवन का आधार होना चाहिए और उद्योग व्यवस्थित होने चाहिए, यही ग्रामोन्नति का सार।

0: हमें उद्योग छोड़कर झूठी भक्ति नहीं करनी है। दिन भर उद्योग करके अंत में शाम और सुबह भगवान का स्मरण करना चाहिए, जिसमें अपने उद्योग को भगवत अर्पण करना होता है। तभी हमारे हाथों अनजाने हुए पापों को भगवान क्षमा करता है, हमें सत्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तब हमारी तरक्की होती है और हमारा जीवन सुखी बनता है।
1: अभी आप चिंतन सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के निजी विवाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। काव्यधारा में लीजिए प्रस्तुत है सारिका मेहता से पूर्व प्रसारित काव्य पाठ।
2: उम्मीदों से जुड़े होते हैं रिश्ते, उम्मीदों से जुड़े होते हैं रिश्ते, उम्मीद टूटते ही टूट जाते हैं। उम्मीदों से जुड़े होते हैं रिश्ते, उम्मीद टूटते ही टूट जाते हैं। सारा खेल तो उम्मीदों का है, पर दोषी इंसान बन जाते हैं। मायूस ना हो, ये जिंदगी है जो कभी भी बदल सकती है। मायूस ना हो, ये जिंदगी है जो कभी भी बदल सकती है। बिगड़ी है जो बात आज, बिगड़ी है जो बात आज, वो कल फिर संवर सकती है। क्या हुआ जो आज किस्मत खोटी है, क्या हुआ जो आज किस्मत खोटी है। सब्र कर, ये कभी भी चमक सकती है। हौसला रखना फिर भी खुद अपने पर, हौसला रखना फिर भी खुद अपने पर। नियति है जो कभी भी पलट सकती है। जिंदगी जीने का एक दस्तूर बना लो, जिंदगी जीने का एक दस्तूर बना लो। कोई ना मिले खुद को दोस्त बना लो। बीत गया जो पन्ना खुलता नहीं दोबारा, बीत गया जो पन्ना खुलता नहीं दोबारा। जो सामने है उसे आज ही पढ़ डालो। मत सोचो कोई क्या कहेगा क्या समझेगा, मत सोचो कोई क्या कहेगा क्या समझेगा। जो अच्छा लगे उसे बेपरवाह कर डालो। बीत जाए जब उम्र फिर नहीं दोहराती है, बीत जाए जब उम्र फिर नहीं दोहराती है। जिंदगी मौके कम धोखे ज्यादा दे जाती है। जो पल आज है उसे समेट लो यारा, जो पल आज है उसे समेट लो यारा। ये जिंदगी है फिर मिलेगी नहीं दोबारा। खुद को खुद में ढूंढ ले, खुद को खुद में ढूंढ ले, खुदा ही मिल जाएगा। खुद को खुद में ढूंढ ले, खुदा ही मिल जाएगा। काहे जाए मंदिर मस्जिद, मन मंदिर में वो दिख जाएगा। काहे जाए मंदिर मस्जिद, मन मंदिर में वो दिख जाएगा। दीन दुखियों की सेवा कर ले, तेरा कर्म ना निष्फल जाएगा। रखना सब में समभाव तू, रखना सब में समभाव तू, हर सीरत में उसको पाएगा। लेगा परीक्षा वो हर पल तेरी, लेगा परीक्षा वो हर पल तेरी। तारने भी खुद आ जाएगा। रखना विश्वास खुद अपने पर, रखना विश्वास खुद अपने पर, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। एक गीत प्रस्तुत करना चाहूंगी। वी

जो आएगा लहू बहाने पहले सर कटवाएगा, जो आएगा लहू बहाने पहले सर कटवाएगा, देश की खातिर।

हुआ अमर इतिहास गवाह है, युगो युगो तक याद किया हुआ अमर इतिहास गवाह है, युगो युगो तक याद किया मातृभूमि का।

इतिहास सुनहरे पन्नों पर लिखी जाती है, बनती है इतिहास सुनहरे पन्नों पर लिखी जाती है। हर रिश्ते में बनावट है, हर रिश्ते में बनावट है, हर चेहरे में मिलावट है। हर रिश्ते में बनावट है, हर चेहरे में मिलावट है। देखूं जब जब अपनी माँ का चेहरा, आज तक कोई ना थकावट है। हर रिश्ते में बनावट है, हर चेहरे में मिलावट है। देखूं जब जब अपनी माँ का चेहरा, आज तक कोई ना थकावट है। ढल जाता है हर रिश्ता उम्र के साथ, ढल जाता है हर रिश्ता उम्र के साथ। बस यही रिश्ता है जिसमें अंत तक गर्माहट है, जिसमें अंत तक गर्माहट है। बहुत कुछ छूट जाता है, बहुत कुछ छूट जाता है, बहुत कुछ पाने के बाद। बहुत कुछ छूट जाता है, बहुत कुछ पाने के बाद। याद किसी की आती है उसके चले जाने के बाद। बहुत कुछ छूट जाता है, बहुत कुछ पाने के बाद। याद किसी की आती है उसके चले जाने के बाद। आंखों से आंसू बहा तो हथेली पर थाम लिया, आंखों से आंसू बहा तो हथेली पर थाम लिया। दर्द रहता है कहीं ना कहीं बहुत मुस्कुराने के बाद। हंसती आंखों में उदासी के पहरे होते हैं, हंसती आंखों में उदासी के पहरे होते हैं। बिखेरते हैं जो सबकी राहों में उजाले, बिखेरते हैं जो सबकी राहों में उजाले। अक्सर उनके नसीबों में अंधेरे होते हैं। वफा की राह में जो घर से निकलते हैं, उन्हीं को राह में बेवफा लोग मिलते हैं। दिल बड़ा उम्मीदें छोटी रख, दिल बड़ा उम्मीदें छोटी रख। जिंदगी जीनी है तो अरमान थोड़े रख। दिल बड़ा उम्मीदें छोटी रख, जिंदगी जीनी है तो अरमान थोड़े रख। माना निराशाओं के अंधेरे हैं राहों में, माना निराशाओं के अंधेरे हैं राहों में, पर आशाओं की लो मन में जलाए रख। हट जाएंगे राह से कांटे कभी ना कभी तो, पर उम्मीदों के फूल तू दिल में खिलाए रख। पर उम्मीदों के फूल तू दिल में खिलाए रख। आएगी एक दिन मंजिल खुद ढूंढते हुए तुझे, आएगी एक दिन मंजिल खुद ढूंढते हुए तुझे। बस कदम बढ़ा और खुद पर तू विश्वास रख, खुद पर तू विश्वास रख। खुद से ही रूठे खुद को ही मना लिया, खुद से ही रूठे खुद को ही मना लिया। जिंदगी ने जाने हमें क्या क्या सिखा दिया। खुद से ही रूठे खुद को ही मना लिया, जिंदगी ने जाने हमें क्या क्या सिखा दिया। गम मिला या खुशी मिली, गम मिला या खुशी मिली, जो मिला हंसकर अपना लिया। ना गिला किया ना शिकवा किया, ना गिला किया ना शिकवा किया। गिरते हंसुओं को भी हथेली पर थाम लिया, ना गिला किया ना शिकवा किया। गिरते आंसुओं को हथेली पर थाम लिया। जो छूट गया उसे यादों में सजा लिया, जो छूट गया उसे यादों में सजा लिया। जो साथ है उसे गले लगा लिया। क्या करें जाकर शिकायत जिंदगी से भी, क्या करें जाकर शिकायत जिंदगी से भी। तेरे हर दस्तूर को खुद में ही ढाल लिया। जो दुनिया से दूर बैठा है, जो दुनिया से दूर बैठा है, वो नजदीक से सबको समझ बैठा है। जो दुनिया से दूर बैठा है वो नजदीक से सबको समझ बैठा है। झलकता है दर्द अब उसकी आंखों में, झलकता है दर्द अब उसकी आंखों में। शायद वो अपनी खुशियां लुटा बैठा है। उदास है चेहरा खामोश है जुबां, अब अपने खिलाफ सब कुछ सुन बैठा है। उदास है चेहरा खामोश है जुबान, अब अपने खिलाफ सब कुछ सुन बैठा है। देख लिया दुनिया के रंग में ढलकर, देख लिया दुनिया के रंग में ढलकर। अब खुद में ही रहना वो सीख बैठा है, अब खुद में ही रहना वो सीख बैठा है।

काव्यधारा में अभी आप सुन रहे थे सारिका मेहता से पूर्व प्रसारित काव्य पाठ। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले संस्कृत में उसके बाद हिंदी में। कृपया

0: अथ वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन विमानन परिवहन मार्ग आधारभूत संरचना क्षेत्रेषु महत्वपूर्णाः योजनाः अनुमोदिताः। पश्चिम एशिया संकट कारणेन वर्धितेषु इंधन मूल्येषु भारतीय विमान सेवानां कृते विमान इंधनस्य अर्थात ATF मूल्यस्य स्थिरीकरणार्थं तैल विपणन समवायेभ्यः सहस्रकोटि रूप्यकाणां आय व्यय सहायतां प्रदातुं प्रशासनं निर्णयं कृतवत्। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अवोचत् यत् एतेन विमानन क्षेत्र संबद्धाः प्रायः 77 लाख आजीविकाः सुरक्षिताः भविष्यन्ति। सहायता योजनेयं 36 मास पर्यन्तं प्रवर्तयिष्यते। मंत्रिमण्डलेन दिल्ली निकटवर्ती क्षेत्रे वायु प्रदूषण नियन्त्रणार्थमपि एकस्याः योजनायाः अनुमोदनं कृतम्। द्विवर्षीय योजनायां प्रायः 2 लाख ट्रकयानानि 16,000 बसयानानि च प्रतिष्ठापयितुं लक्ष्यं निर्धारितम्। मंत्रिमण्डलीय समित्या ओडिशा राज्ये रामेश्वरात् पारादी पर्यन्तं 63,100 किलोमीटर परिमितस्य नूतन तटीय राजमार्ग निर्माणाय अनुमतिः प्रदत्ता। एतदतिरिच्य समित्या बिहार राज्ये राष्ट्रीय राजमार्गयोः 31 तथा 31,200 च इत्येतयोः खगड़िया पूर्णिया खण्डस्य चतुर्पथ परियोजना अपि अनुमोदिता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां वेनेजुएला देशस्य राष्ट्रपतिना डेल्जी रोड्रिगेज इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तां विधास्यति। अस्याम् उच्चस्तरीय चर्चायां भारत वेनेजुएला संबंधानां अशेषेषु पक्षेषु मंथनं भविष्यति। सहैव ऊर्जा सुरक्षा व्यापार निवेश स्वास्थ्य सेवा परिवहनम् नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादिषु क्षेत्रेषु भविष्ये सहयोगस्य नूतन मार्गाणां अन्वेषणं च भविष्यति। रोड्रिगेज वर्यः भारत देशस्य 5-दिवसीय यात्रायां ह्यः नवदिल्लीं समागच्छत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् कृत्स्नेहि विश्वे योगस्य लोकप्रियता तीव्रगत्या वर्धमाना वर्तते। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन सन्देशेन प्रधानमन्त्रिणा संसूचितं यत् अद्य प्रथम वैश्विक योगासन प्रतियोगितायां सह आभासीय माध्यमेन सम्मिलितो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्य सायंकाले त्रिपुरा राज्यस्य 2-दिवसीय यात्रायां अगरतला नगरं प्रति एष्यति। यात्रावधौ श्री शाह पुष्पवंत पैलेस इत्यस्य शिलान्यास समारोहे भागं ग्रहीष्यति। लंकामुरा स्थिते सीमा सुरक्षा बलस्य निरीक्षणं च करिष्यति। सहैव राज्य केन्द्रीय सुरक्षा अधिकारिभिः सह एकं उच्चस्तरीय उपवेशनं करिष्यति। गृहमन्त्रिणः यात्रां वीक्ष्य त्रिपुरा प्रशासनेनापि एका उच्चस्तरीया प्राशासनिक सुरक्षा सीमा सभा आयोजिता। राष्ट्रीय राजधान्यां दिल्ल्यां मालवीय नगरस्य एकस्मिन् विश्रांति निलये भीषणाग्निकाण्डे 21 जनाः मृत्युमुपगताः, अनेके च जनाः व्रणिताः अभवन्। दक्षिण दिल्ली आरक्षी विभागस्य उपायुक्तः अनंत मित्तलः अवोचत् यत् अग्निशमन विभागस्य 8 वाहनैः सह अग्निः नियन्त्रितः। आरक्षिणाम् अग्निशमनस्य तथा अन्य आपत्कालिक सेवानां संयुक्त प्रयत्नैः 40+ जनाः सुरक्षित रूपेण उद्धृताः, चिकित्सोपचारार्थं च चिकित्सालयेषु प्रेषिताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी घटनामुद्दिश्य गहनं दुःखं व्यक्तीकृतवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, गृहमन्त्री अमित शाहः तथा दिल्ली राज्यस्य मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ता अपि अस्मिन् दुःखदे घटनाक्रमे शोकं प्रकटितवन्तः। सर्वैः नेतृभिः शोक संतप्त परिवारान् प्रति गहन संवेदना व्यक्तीकृता। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ हुआ

0: वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। उनका आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलने का कार्यक्रम है। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए गए नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के अधिकारी शिवाजी माजी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना में सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमान ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही अवैध संपत्तियों, अनाधिकृत गेस्ट हाउसों और अग्नि सुरक्षा नियमों तथा भवन उपनियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ पूरे शहर में विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सवेरे के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय है प्याज के गुण।
3: हमारे देश में अति प्राचीन काल से ही प्याज का सेवन होता आ रहा है।

0: प्याज सब्जियों और मसालों में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है, जिसके कारण अधिकतर लोग खाने में और तरह तरह के खाद्य पदार्थों में मसालों के साथ प्याज का प्रयोग करते हैं। भारतीय पाक कला के कामल है ये मसाले। मसालों का मिश्रण अपने आप में अनेक औषधीय गुण लिए होता है। कुछ लोग प्याज की गंध से घबराते हैं, इसका सेवन करने से हिचकते हैं। कौन समझाए उन्हें और कौन कहे उनसे कि प्याज के औषधीय गुणों को क्यों नजरअंदाज किए जाते हो? धनिया चबा लो, गंध गायब हो जाएगी। प्याज औषधीय गुणों से भरपूर होता है। प्याज में एक प्रकार का उड़नशील तेल निकलता है, जिसमें गंधक, एल्बुमेन, लेस, प्रस्फुटक अम्ल, चूने के सिट्रेट और लिग्निन होते हैं। सफेद प्याज को खूब महीन काटकर इसमें सेंधा नमक और जीरा मिलाकर भोजन के साथ खाने से गला साफ रहता है और उदर के विषाक्त तत्व नष्ट हो जाते हैं। खांसी में प्याज का थोड़ा सा रस सुबह और शाम पीने से या इनका काढ़ा बनाकर सेवन करने से सभी तरह की खांसी दूर हो जाती है। तपेदिक की खांसी में भी प्याज का रस बहुत लाभकारी होता है। प्याज के रस में शहद भी मिलाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। प्याज का रस पीने से काली खांसी का रोग भी ठीक हो जाता है। आग से जल जाने पर प्याज को अच्छी तरह से कुचलकर जले हुए स्थान पर लगाने से तुरंत आराम मिलता है। यक्षमा के लिए बहुत सालों पहले इंग्लैंड के डॉक्टर पर्स कच्चा प्याज बताया करते थे। डॉक्टर W.C. मिंचेन के अनुसार शरीर पर यक्षमा के कीटाणुओं के आक्रमण को प्याज का रस नष्ट कर देता है। ये स्वास्थ्य रक्षक और कीटाणु नाशक होता है। कच्चे प्याज पर नमक डालकर खाने से यक्षमा में लाभ होता है। पीलिया रोग में एक उपाय करके देखें। छोटे प्याज छीलकर उनको चौकोर काटकर सिरके या नींबू के रस में डाल दें। ऊपर से नमक और काली मिर्च डाल दें। इस तरह नित्य सुबह शाम एक प्याज खाने से पीलिया दूर होगा। आधा कप सफेद प्याज के रस में गुड़ और हल्दी पिसी हुई मिलाकर सुबह और शाम पीना पीलिया में लाभदायक होता है। प्याज के 4 चम्मच रस में 2 चम्मच पिसी मिश्री मिलाकर दिन में 3 बार पीने से खूनी बवासीर में लाभ होता है। पेट में कृमि और अजीर्ण होने पर प्याज का रस 1 चम्मच 2-2 घंटे में रोगी को पिलाएं। ऐसा करने से पेट के कीड़े शीघ्र नष्ट हो जाएंगे और बदहजमी भी ठीक हो जाएगी। जिनके हृदय की धड़कन बढ़ गई हो, हृदय रोग से बचना चाहते हो, वे एक कच्चा प्याज नित्य खाना खाते समय खाएं। इससे धड़कन सामान्य हो जाएगी, हृदय को शक्ति मिलेगी। प्याज का रस उचित मात्रा में लेना रक्त प्रवाह में सहायक होता है और दिल को कई बीमारियों से सुरक्षित भी रखता है। लकवे में प्याज का उपयोग मददगार है। हैजा फैलने पर इससे बचने के लिए 25 ग्राम प्याज का रस, 1 कप पानी, 1 नींबू, थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, अदरक का रस नित्य 4 बार पीते रहें। इससे हैजा नहीं होगा। प्याज औषधि के रूप में ही लाभदायक है। प्याज में पाया जाने वाला सोडियम, गंधक, पोटाश और पदार्थ मानव शरीर के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। प्याज को उपयोग में लाने के पूर्व नमक के पानी में अच्छी तरह भिगो लें, तत्पश्चात ही प्रयोग में लाएं। इससे प्याज के दुर्गुण जाते रहते हैं। इतने सारे गुण हैं प्याज में, इनका सेवन कीजिए और लाभ उठाइए।
1: प्याज के गुण। अभी आप सुन रहे थे इस विषय पर जानकारी, कार्यक्रम था स्वास्थ्य चर्चा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। खेती की बातें कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय है करेला की वैज्ञानिक खेती।
2: किसान भाइयों नमस्कार, खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे किसान भाई खेती करते हैं और खेती से लाभ भी उठाते हैं। कुछ किसान भाई हमारे गन्ने की खेती करते हैं, कुछ दलहनी फसलों की खेती करते हैं, कुछ तिलहनी फसलों की खेती करते हैं, कुछ किसान भाई हमारे सब्जियों की खेती करते हैं। और इस समय की अगर बात करें तो सब्जियों की खेती में बेल वाली फसलें हमारे किसान भाई लगाते हैं और उनसे सब्जियों का उत्पादन लेते हैं। तो आज इसी के संबंध में एक जानकारी लेकर आए हैं, जिसका विषय है करेला की वैज्ञानिक खेती। किसान भाइयों, करेला एक महत्वपूर्ण सब्जी फसल है जिसकी खेती

0: पूरे भारत में की जाती है। यह पौष्टिक गुणों से भरपूर होने के साथ साथ औषधीय महत्व भी रखता है। करेले में विटामिन ए, बी, सी, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारे किसान भाई वैज्ञानिक विधि से इसकी खेती करने पर अधिक उत्पादन और अच्छी गुणवत्ता के फल प्राप्त कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। करेले की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है। इसके बीजों के अंकुरण के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान सर्वोत्तम माना जाता है। इसकी खेती वर्ष भर विभिन्न मौसम में की जाती है, लेकिन मुख्य रूप से जायद और खरीफ मौसम में इसकी खेती अधिक होती है। करेले की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मिट्टी का पीएच मान 6.0 से लेकर 7.5 के बीच होना चाहिए। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले हमारे किसान भाई गहरी जुताई करें, फिर 2-3 बार उसमें हैरो या कल्टीवेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लें और पाटा लगाकर समतल कर लें। और किसी भी चीज का उत्पादन लेने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसकी किस्में। और करेले की किस्मों की बात करें तो पूसा दो मौसमी, पूसा विशेष, अर्का हरित, कोयम्बटूर लॉन्ग, पंजाब करेला एक तथा प्रिया प्रमुख किस्में हैं। क्षेत्र और मौसम के अनुसार उपयुक्त किस्मों का चयन हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए और जब भी बीज की बुआई करें तो उन्हें उपचारित जरूर करें। बीज की मात्रा सामान्यतः 4-5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। बुवाई से पहले बीजों को 12-24 घंटे तक पानी में भिगोने से अंकुरण अच्छा होता है और बीज उपचार के लिए फफूंदनाशी दवा से उपचारित करना हमारे किसान भाइयों के लिए लाभदायक रहता है, जिससे बीज जनित रोगों का प्रकोप कम हो जाता है और फसल का उत्पादन और गुणवत्ता दोनों अच्छी होती है। हमारे किसान भाई इसकी बुवाई मेड़ों या थालों में करें। पौधे से पौधे की दूरी 50-60 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 2-2.5 मीटर हमारे किसान भाई को रखनी चाहिए। प्रत्येक स्थान पर हमारे किसान भाई 2-3 बीज बोएं। अधिक उत्पादन लेने के लिए हमारे किसान भाई को संतुलित उर्वरक प्रबंधन करना आवश्यक है। खेत की तैयारी के समय 20-25 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर हमारे किसान भाई को डालनी चाहिए। इसके अलावा हमारे किसान भाई 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से अपने खेतों में प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुवाई के समय हमें दे देनी चाहिए, जबकि शेष नाइट्रोजन की मात्रा 2 बराबर भागों में बांटकर बाद में हमारे किसान भाई को करेले की फसल में देनी चाहिए। करेले की फसल में समय समय पर सिंचाई करना आवश्यक है। गर्मी के मौसम में हमारे किसान भाई को 5-7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए और वर्षा ऋतु में आवश्यकता अनुसार हमारे किसान भाई को सिंचाई करनी चाहिए। किसान भाइयों, फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए खरपतवार नियंत्रण बहुत जरूरी है। खरपतवार नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाई समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए और इसके साथ साथ हमें एक काम और करना है, हमें अपने पौधों की जड़ों पर मिट्टी भी चढ़ा देनी चाहिए जिससे हमारा पौधे की जड़ मजबूत रहे। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए बेलों का सहारा देना आवश्यक होता है। इसके लिए हमारे किसान भाई मचान या ट्रेलिस विधि अपना सकते हैं, जिससे जो हमारे पौधे हैं वो जमीन पर ना फैले, जिससे हमारा फल अच्छा प्राप्त हो। किसान भाइयों, जो हमारी फसल को प्रभावित करते हैं वो रोग और कीट करते हैं, तो हमें रोग और कीटों से अपनी फसल को बचाना है। करेले की फसल में फल मक्खी एक प्रमुख कीट है, यह फसल में अंडे देकर नुकसान पहुंचाती है। इसके नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाई को अपनी करेले की फसल में फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करना चाहिए और जो संक्रमित फल है उसे तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए और अपने खेत की नियमित निगरानी हमारे किसान भाई को करनी चाहिए। किसान भाइयों, इसमें कुछ प्रमुख रोग भी लगते हैं, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू, मोज़ेक और डाउनी मिल्ड्यू। इसमें क्या होता है कि हमारे किसान भाइयों की पत्तियों पर जो सफेद चूर्ण जैसा पदार्थ दिखाई देता है, जो हमारी फसल की गुणवत्ता और उत्पादन को प्रभावित करता है। इसके नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाई रोगग्रस्त पौधों को अपने खेत से बाहर कर दें और किसी फफूंदनाशी दवाई का उपयोग करें। किसान भाइयों, फूल आने के लगभग 55-70 दिनों में फसल जो तुड़ाई योग्य हो जाती है। हमारे किसान भाइयों को फलों की तुड़ाई कोमल और हरी अवस्था में करनी चाहिए। हमारे किसान भाई अगर वैज्ञानिक ढंग से इसकी खेती करते हैं तो करेले की उपज 150 से लेकर 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस प्रकार उन्नत किस्मों का चयन, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, उचित सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण और रोग कीट प्रबंधन जैसी वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर करेले की खेती से अधिक उत्पादन और बेहतर आर्थिक लाभ हमारे किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, खेती की बातें कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। कल एक और नई जानकारी के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। किसान भाइयों, नमस्कार।
1: करेला की वैज्ञानिक खेती, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे जानकारी। कार्यक्रम था खेती की बातें। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। संदेश टू सोल्जर कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 4 बजे। प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का खेल भारतीय कार्यक्रम रात्रि 10 बजे। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 9:30

0: मिनट पर सुनेगा नाटक प्यासे पत्थर। गीत संध्या कार्यक्रम रात्रि 8 बजे और एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा 8:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में शाम 7:32 पर सुनेगा गुलाम हुसैन साबरी और साथियों की गायक कव्वाली। छाया गीत का समय रहेगा शाम 6:55 पर। रेडियो प्रसारण के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष भेंट वार्ता सुनेगा पराग से निधि भारद्वाज की बातचीत शाम 6:45 पर। कार्यक्रम 90 साल बेमिसाल के अंतर्गत कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर सुनेगा डॉक्टर सतनाम सिंह नागर विषय वस्तु विशेषज्ञ से जितेंद्र कुमार की बातचीत। विषय होगा श्री अन्न और मानव स्वास्थ्य। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा उड़द मूंग की खेती लखपति दीदी योजना। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर आज क्रम होगा बूझो तो जाने कुछ खास है आज नॉन फिल्मी चार्ट बस्टर कहानी के उस पार। साथ ही आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम सुनेगा शाम 5 बजे रिश्ता ये खास है। बसंत देसाई के संगीत निर्देशन में बने गीत हम आपको सुनवाएंगे एक ही संगीतकार कार्यक्रम में दोपहर 2:30 पर। लोकधारा कार्यक्रम में 1:45 पर आप सुनेंगे सीताराम चौहान के गाए जौनसारी लोकगीत। महिला जगत कार्यक्रम में दोपहर 1:15 पर क्रम होगा आधी आबादी से। साथ ही सुनेगा श्रीमती अंजलि वर्मा पर्यावरणविद एवं शांति शिक्षिका से भावना अरोड़ा की बातचीत। विषय होगा पर्यावरण संरक्षण महिलाओं की भूमिका। मिड डे मेलेडी कार्यक्रम 12:30 पर और कार्यक्रम सैनिकों के लिए 12:05 पर। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे सुबह 11:30 पर। चित्रपट संगीत कार्यक्रम सुबह 11 बजे। गीत तुम्हारे कार्यक्रम 10:30 पर और सुहाना सफर कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10 बजे। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी की नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:18 होने को है। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं। मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकू नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना। मनन में ही उसे आनंद है। मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने लोकहित के 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर की समीक्षा बैठक। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रस्तावित आयोजनों को जन जागरण का व्यापक अभियान बनाने का दिया निर्देश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली NCR में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल। और वाराणसी में आज से शुरू हो रही है ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लोकहित के 24 प्रस्ताव पारित किए गए। नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मंजूरी दे दी।
1: नगरीय क्षेत्रों में जो हमारे 17 नगर निगम है और नोएडा, कुल 18 हमारे जो बड़े शहर हैं, उनमें ई बसें संचालित करने के लिए हम लोग प्रस्ताव लेकर गए थे और उसमें 1725 नई बसें चलाने का हमारा प्रस्ताव था, जिसे माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। और ये बसें 17 नगर निगम है और प्लस नोएडा, उसमें जेवर जो एयरपोर्ट है उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं।
0: कैबिनेट ने सरकारी वकीलों के भत्तों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत मक्का खरीद नीति को भी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था, आगामी आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा तथा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रस्तावित जन भागीदारी आधारित कार्यक्रमों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम केवल औपचारिक आयोजन न होकर जन भागीदारी और जन जागरण का व्यापक अभियान बने। बैठक में मुख्यमंत्री ने 8, 9 और 10 जून को 2 पालियों में आयोजित होने वाली आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा की सूचिता निष्पक्षता और गोपनीयता को बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों से भी सख्ती से निपटा जाए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण GIDA के विभिन्न क्षेत्रों के लिए करीब 208 करोड़ रुपए के 71 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद से सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ी है। इसी का परिणाम है कि सरकार को 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
3: प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त, 15 लाख करोड़ का हमने जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया, 7.5 लाख करोड़ का हमारे पास तत्काल तैयार है, इसको कभी भी हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर सकते हैं, लाखों नौजवानों को इसके माध्यम से कार्य मिला है।
0: मुख्यमंत्री ने कल गोरखपुर में ही आजमगढ़ बस्ती और गोरखपुर की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता संगोष्ठी 2026 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती करने पर बल दिया।
4: जो औद्यानिक फसल हम पैदा करें, न्यूनतम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग कर न्यूनतम उन मानकों पर खरा उतर सके जो निर्यात करने लायक भी हो, और इसके लिए प्राकृतिक खेती एक बेहतरीन ऑप्शन है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल

0: AIRnews_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली NCR में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने वाली योजना को मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत में जानकारी दी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: केंद्रीय मंत्री श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के भागीदार राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू किया जाएगा।
2: इस स्कीम के लिए 5041 करोड़ रुपीस का आउटले है। सपोर्ट लेंगे गवर्नमेंट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। इनकी मदद से करीब 2 लाख के आसपास ट्रक्स हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम बनाया जाएगा, और करीब 16,000 बसेज हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम है। इससे हमारा मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में दिल्ली में पोल्यूशन सिग्निफिकेंटली कम होगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। प्रस्तुत है मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर एक विशेष रिपोर्ट।
3: सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुँचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है, जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाराणसी में आज से 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
4: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा, बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग ने इस सप्ताह के दौरान प्रदेश में अधिकतम तापमान में 4-6 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक इस अवधि में न्यूनतम तापमान में भी 2-3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी हो सकती है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने लोकहित के 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर की समीक्षा बैठक। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रस्तावित आयोजनों को जन जागरण का व्यापक अभियान बनाने का दिया निर्देश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली NCR में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल। और वाराणसी में आज से शुरू हो रही

0: है ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दो दिवसीय बैठक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

एक सुहानी सुबह में जो ही सूरज की पहली सुनहरी किरण धरती पर पड़ती है, उसी किरण के साथ सारी प्रकृति खिल जाती है। जी हाँ श्रोताओं, और ये हम सभी जानते हैं, और इसी पहली किरण के साथ शुरू होता है हमारा कार्यक्रम जिसका नाम है सूरज के साथ साथ। और आप सभी श्रोताओं को मेरा यानी ज्योति गौड़ का आज के कार्यक्रम में प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। और श्रोताओं देखिए, आइए बात करते हैं गर्मी में हाइपरहाइड्रोसिस से बचें। देखिए गर्मी बहुत जोरों पर है, हम कहेंगे गर्मी अपने चरम पर है, और गर्मी के दिनों में पसीना आना तो लाजमी है, लेकिन अगर आप हाइपरहाइड्रोसिस यानी अत्यधिक पसीना आने से जूझ रहे हैं तो गर्मी और उमस आपकी परेशानी को और भी बढ़ा सकती है। आप पसीने के निशानों, भीगी हुई शर्ट और फिसलन भरी हथेलियों को लेकर लगातार चिंतित हो, यह समस्या वाकई परेशान करने वाली और निराशाजनक है। लेकिन खुशकीमती से आपको हमेशा के लिए पसीने से तर गर्मियों की परेशानी झेलने की जरूरत नहीं है। सही दृष्टिकोण और आधुनिक उपचारों की मदद से आप अपने लक्षणों को नियंत्रित कर सकते हैं और धूप का आनंद ले सकते हैं। श्रोताओं आपको बता दें कि हाइपरहाइड्रोसिस है क्या। हाइपरहाइड्रोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपकी पसीना ग्रंथियां अत्यधिक सक्रिय हो जाती हैं। भले ही आप अधिक गर्म न हो, तनावग्रस्त न हो या व्यायाम न कर रहे हो। और अत्यधिक पसीना आने का कारण क्या है? आमतौर पर इसके लिए तंत्रिका तंत्र को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अत्यधिक पसीना आना मुख्य रूप से तंत्रिका संकेतों में गड़बड़ी के कारण होता है, जिससे पसीना ग्रंथियां अधिक मात्रा में पसीना उत्पन्न करने लगती हैं। हालांकि इससे स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं है, लेकिन यह आपके जीवन की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, जिससे सामाजिक चिंता, कपड़ों से जुड़ी समस्याएं और लगातार बेचैनी हो सकती है। और तापमान बढ़ने पर आमतौर पर लक्षण भी बढ़ जाते हैं। गर्म मौसम में पसीना आना स्वाभाविक है, जो शरीर की प्राकृतिक शीतलन प्रक्रिया है, लेकिन हाइपरहाइड्रोसिस होने पर यह प्रक्रिया पहले से ही सक्रिय रहती है। इसलिए अतिरिक्त गर्मी और नमी के कारण पसीने की बाढ़ आ जाती है, खासकर बगल और हाथों जैसे क्षेत्र में। तंग कपड़े, कृत्रिम कपड़े और बाहरी गतिविधियां भी समस्या को बढ़ाती हैं, लेकिन कुछ सरल बदलाव और दीर्घकालिक उपायों से आप इसके प्रभावों को कम कर सकते हैं और शर्मनाक समस्याओं से बच सकते हैं। श्रोताओं आप

घर पर ही अत्यधिक पसीना आने के लक्षणों को नियंत्रित कर सकते हैं। एंटीपर्सपिरेंट और डिओड्रेंट का इस्तेमाल करें। एंटीपर्सपिरेंट पसीने की ग्रंथियों को बंद करके काम करते हैं, जिससे शरीर पसीना बनाना बंद कर देता है। डॉक्टर कुछ खास तरह के एंटीपर्सपिरेंट या प्रिस्क्रिप्शन वाले डिओड्रेंट की सलाह दे सकते हैं। अत्यधिक पसीना आने की समस्या के लिए सबसे अच्छा डिओड्रेंट एल्युमिनियम आधारित होता है। अपनी दिनचर्या में बदलाव करना, जैसे कि बार बार स्नान करना, हल्के लक्षणों में सुधार ला सकता है। श्रोताओं, सांस लेने योग्य कपड़े पहने, जैसे सूती कपड़े, और अधिक सोखने वाले कपड़े चुनने से पसीना आने पर आपको अधिक आराम मिलेगा। मिश्रित कपड़ों और पॉलिस्टर से बचें, क्योंकि ये गर्मी को रोकते हैं और आपको अत्यधिक पसीना दिलाते हैं। और अगर इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी पसीने के दागों से आप जूझ रहे हैं, तो किसी विशेषज्ञ की सलाह लें। अत्यधिक पसीना आना एक चिकित्सीय समस्या है, जिससे राहत पाना आप सभी का अधिकार है। और इस गर्मी के मौसम में भी आपको सुनवा देते हैं एक ये थोड़ा थोड़ा गर्मी से ठंडक वाला गीत।

0: कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आइए आपको जानकारी देते हैं आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 4 जून को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 19 अगस्त 1982 को हुई थी। मूल रूप से 1982 के लेबनान युद्ध के पीड़ितों पर केंद्रित इसका उद्देश्य दुनिया भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार बच्चों द्वारा झेली गई पीड़ा को स्वीकार करना है। यह दिन बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। महासभा ने 19 अगस्त 1982 को अपनी 31वीं पूर्ण बैठक में अपने पुनः शुरू हुए 7वें आपातकालीन विशेष सत्र में फिलिस्तीनी के मुद्दे पर विचार करते हुए इसराइल के आक्रामक कृत्यों के शिकार फिलिस्तीनी और लेबनानी बच्चों की बड़ी संख्या से स्तब्ध होकर प्रत्येक वर्ष 4 जून को आक्रामकता के निर्दोष बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर।
2: 8700014242।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
6: तो इंतजार किस बात का,
5: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
6: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
5: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
6: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
5: और हमारा ईमेल आईडी है
6: akashwaninajibabad@gmail.com।
5: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
6: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: आकाशवाणी नजीबाबाद से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आइए अब आपको जानकारी दे दें 4 जून की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। 4 जून को देश और दुनिया में वैसे तो अनेक घटनाएं घटी, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हम आपको बता रहे हैं। 4 जून 2005 को लाल कृष्ण आडवाणी ने कराची में मोहम्मद जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति बताया। 4 जून 2008 को हरियाणा सरकार ने पारिवारिक पेंशन का लाभ 25 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को भी देने की घोषणा की। 4 जून 2008 को ही न्यूयॉर्क की सीनेटर हिलेरी क्लिंटन को पछाड़ते हुए बराक ओबामा ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी हासिल की। और 4 जून 2011 को नए सर्वेक्षण में खुलासा हुआ कि भारतीय लोग आर्थिक वृद्धि पर पर्यावरण रक्षा को मामूली रूप से प्राथमिकता देते हैं। अमेरिका की प्रमुख सर्वेक्षण एजेंसी गैलेप ने अपने ताजा सर्वेक्षण में कहा कि ज्यादातर आबादी अर्थव्यवस्था से ज्यादा

पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। और 4 जून 1975 को आज ही की तारीख में अमेरिका के उत्तरी कोरोलिना की लिटिन नदी के पास वैज्ञानिकों ने 62 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म की खोज की थी। चट्टानों में सुरक्षित मिला यह जीवाश्म एक प्राचीन समुद्री जीव माना गया। रेडियोमेट्रिक डेटिंग से इसकी आयु का पता चला। और 4 जून 2010 को ही एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट को लॉन्च किया था। फ्लोरिडा के कैप कैनावरेल से उड़ान भरने वाले रॉकेट ने पहली ही कोशिश में ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के एक डमी मॉडल को पृथ्वी की रक्षा में स्थापित कर इतिहास रचा। और आइए अब आपको बता दें 4 जून को किन व्यक्तियों ने संसार को अलविदा कह दिया। 4 जून 2018 को मॉरिशस में हिंदी कथा साहित्य के सम्राट कहे जाने वाले साहित्यकार अभिमन्यु अनंत इस संसार को अलविदा कह गए। 4 जून 2016 को हिंदी और मराठी फिल्मों की भारतीय अभिनेत्री शुभला देशपांडे का निधन हुआ। 4 जून 1962 को आयुर्वेदिक औषधियों के प्रचार प्रसार के लिए प्रसिद्ध अचंत लक्ष्मीपति का भी निधन हुआ। और आइए अब आपको जानकारी दे दें 4 जून को जन्मे व्यक्तियों के विषय में। 4 जून 1988 को भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रवीण भगत का जन्म हुआ। 4 जून 1948 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल शास्त्री का भी जन्म हुआ। भारत की सबसे अग्रणी महिला रसायन वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर दर्शन रंगनाथन का जन्म भी 1941 में आज ही की तारीख को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने मिरांडा हाउस से उच्च शिक्षा प्राप्त की और दिल्ली विश्वविद्यालय के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीएचडी की डिग्री हासिल की। लंदन के इंपीरियल कॉलेज से फेलोशिप आपने जीती। बाद में आईआईटी कानपुर, आईआईसीटी हैदराबाद व आईसीसीआरआई जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दी। रंगनाथन का मुख्य योगदान बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में था। उन्होंने प्रयोगशाला में प्राकृतिक रूप से होने वाले जैविक प्रक्रिया और प्रोटीनों की संरचना की नकल करने में महारत हासिल की थी। और 4 जून 1946 को ही जन्म हुआ था भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध पार्श्व गायकों में से एक एसपी बाला सुब्रमण्यम का। एसपी बाला सुब्रमण्यम, जिन्हें आमतौर पर एसपीबी या बालू के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय पार्श्व गायक, टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता, अभिनेता, संगीतकार, डबिंग कलाकार और फिल्म निर्माता थे। उन्हें सर्वकालिक महानतम भारतीय गायकों में से एक माना जाता है। उन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी फिल्मों में काम किया और कुल 16 भाषाओं में गीत गाए। तो श्रोताओं, आपको भी सुनवाते हैं इनका ही गाया फिल्म साजन का ये गीत।

गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ, और सूरज के साथ साथ कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और आइए अब आपको अवगत कराते हैं अखबारों की चंद सुर्खियों से। शुरुआत कर रहे हैं हिंदुस्तान के साथ, तो हिंदुस्तान लिखता है पत्ता गोभी की सुगंध से होगी फसलों की सुरक्षा। अब पत्ता गोभी की सुगंध फसलों की सुरक्षा में मदद करेगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने नई जैविक तकनीक विकसित की है जो प्राकृतिक तरीके से कीटों को दूर रखने में सक्षम है। विश्वविद्यालय में जंतु विज्ञान के अध्यक्ष एवं प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रोफेसर किपेंद्र और प्रोफेसर अर्चना कुमार के शोध में पता चला है कि पत्ता गोभी से निकलने वाली कुछ प्राकृतिक सुगंध न सिर्फ हानिकारक कीटों को फसल से दूर रखती हैं, वहीं उन लाभकारी कीटों को अपनी ओर खींचती हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को खत्म कर देते हैं। और हिंदुस्तान की ही एक और सुर्खी है, डीके कर्नाटक के 34वें मुख्यमंत्री बने। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के नेतृत्व हस्तांतरण की प्रक्रिया बुधवार को औपचारिक रूप से पूरी हो गई। डीके शिवकुमार ने संविधान की प्रति हाथ में रखकर राज्य के 34वें मुख्यमंत्री के तौर पर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। रुख करते हैं अमर उजाला की ओर, तो अमर उजाला लिखता है मेरठ और सहारनपुर समेत 18 शहरों में चलेंगी एसीई बस। मेरठ और सहारनपुर समेत प्रदेश के 18 शहरों में लोगों को सुगम यातायात की सुविधा देने के लिए एसी इलेक्ट्रॉनिक बस चलेंगी। नगर विकास विभाग ने इस प्रस्ताव को बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई। इन बसों का संचालन प्राइवेट संचालनों द्वारा ग्रास क्रास्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर किया जाएगा। इन बसों के संचालन से 45,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। अमर उजाला की एक और सुर्खी है रिकॉर्ड उत्पादन और बंपर सरकारी खरीद से देश भर की मंडियों में गिरा गेहूं का भाव। देश में इस साल गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन और उम्मीद से अधिक सरकारी खरीद ने मंडियों का समीकरण पूरी तरह बदल दिया है। सरकार की गेहूं खरीद 2026-27 के रबी विपणन सत्र में 17% बढ़कर 3.5 करोड़ टन से अधिक हो गई है। यह 3.45 करोड़ टन के तय लक्ष्य और पिछले वर्ष के 3 करोड़ टन के स्तर दोनों से अधिक है। एक तरफ जहां सरकारी गोदाम गेहूं से पट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मंडियों में बंपर आवक और व्यापारियों की कमजोर दिलचस्पी के कारण गेहूं की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि खुली मंडियों में भाव टूटने से किसानों की नगद कमाई प्रभावित होगी, जिससे पहले से ही सुस्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव और ज्यादा बढ़ सकता है। रुक करें दैनिक जागरण की ओर, तो दैनिक जागरण लिखता है कीमोथेरेपी के कष्ट से मरीजों को मिलेगी राहत। कैंसर जैसी घातक बीमारी के उपचार की दिशा में आईआईटी बीएचयू के वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता मिली है। अब न सिर्फ कैंसर उपचार में कीमोथेरेपी पर निर्भरता काफी हद तक कम होगी, बल्कि मरीज को इससे उपचार के दौरान होने वाले गंभीर दुष्प्रभावों और स्वास्थ्य कोशिकाओं के नुकसान से भी राहत मिलेगी। संस्थान ने बायोकेमिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर विकास कुमार दुबे और उनके शोधार्थियों की टीम ने ऐसा रासायनिक यौगिक खोजा है जो शरीर के भीतर जाकर केवल कैंसर कोशिकाओं को ही निशाना बनाता है। यह यौगिक कैंसर कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि रोकने के साथ उन्हें स्वयं नष्ट होने के लिए मजबूर कर देता है। दैनिक जागरण की एक और सुर्खी है नौपता खत्म, अब ज्यादा नहीं तपाएगी गर्मी। नौपता

0: जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: कार्यक्रम में अब चलते हैं फिल्मी सफर की ओर। आज हम बात करेंगे इस फिल्मी सफर में नूतन की। नूतन समर्थ बहल भारतीय सिनेमा की दिग्गज और भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक थी। उन्होंने अपनी शालीनता, मजबूत किरदारों और दमदार अभिनय से हिंदी फिल्मों में एक अमिट छाप छोड़ी। नूतन के सौंदर्य को मिस इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह इस पुरस्कार को पाने वाली पहली महिला थी। नूतन ने 50 से भी अधिक फिल्मों में काम किया और उन्हें बहुत से अन्य पुरस्कारों के अलावा 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। नूतन का जन्म 4 जून 1936 को एक पढ़े लिखे और परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम शोभना समर्थ और पिता का नाम कुमार सेन समर्थ था। नूतन ने अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत 1950 में की थी, जब वह स्कूल में ही पढ़ती थी। 11 अक्टूबर 1959 को नूतन ने लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी कर ली। नूतन के पुत्र मोहनीश बहल भी हिंदी फिल्मों में अभिनय करते हैं। नूतन की बहन तनुजा और भतीजी काजोल भी हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में शामिल हैं। नूतन के अभिनय को हिंदी फिल्म उद्योग के सभी बड़े नामों ने सराहा है और वह आज भी बहुत से किरदारों का आदर्श बनी हुई हैं। नूतन का देहांत 1 फरवरी 1991 को कर्क रोग के कारण हुआ था। 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। और इसी के साथ सूरज के साथ साथ कार्यक्रम आज यहीं पर संपन्न होता है। ज्योति गौड़ को दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार।
2: सूरज के साथ साथ
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर।

0: मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शाह।
0: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
2: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000

0: से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया, जिससे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई, जिससे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
1: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
0: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
2: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक प्रदान करता है।
0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
4: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जांच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
5: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
3: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह

0: बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिंदुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है। तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋतव्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में 7 सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोक सत्य ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार पत्र प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला डेल्सी रोड्रिगेज इन न्यू दिल्ली टुडे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू चेयर 73rd प्लीनरी सेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इन शिलोंग। U.S. Secretary of State Marco Rubio says United States and India are only weeks away from concluding a long-awaited trade agreement. IMD issues orange alert for heavy rain in Keralam and Mahe today. First World Yogasan Sports Championship to begin today in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi to join the event virtually in the evening. And in football, India advanced to the final of SAF Women's Championship, beating Bhutan 1-0 in Goa.

लता मंगेशकर का गाया गीत अभी आपने सुना फिल्म द ट्रेन से। गीत को संगीत दिया था आर डी बर्मन ने और गीत लिखा था आनंद बख्शी ने।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: किशोर कुमार की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना फिल्म सत्ते पे सत्ता से। इस गीत को संगीत दिया था आर डी बर्मन ने और गीत लिखा था गुलशन बावरा ने।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सच्चा झूठा से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। गीत को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने और गीत लिखा है इंदिवर ने।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

0: सारे चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
1: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज़्ज़ा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
1: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
1: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

लता मंगेशकर का गाया ये गीत अभी आपने सुना फिल्म अनाड़ी से। संगीत शंकर जयकिशन का था और गीत लिखा था शैलेंद्र ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में फिल्म समाधि से। इस गीत को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने और गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने।

लता मंगेशकर की आवाज में भी आपने ये गीत सुना फिल्म राजा जानी से। इस गीत को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखा था आनंद बख्शी ने। कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में फिल्म समाधि से। संगीत आर डी बर्मन का है और गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने।

आशा भोसले के गाए फिल्म समाधि के इसी गीत के साथ कार्यक्रम गोल्डन हिट्स अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होने को हैं, थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला प्रसारण सुनेंगे।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए प्रयागराज और बलिया जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं प्रयागराज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है प्रवीण कुमार मिश्रा का।
1: मई महीने के प्रथम सप्ताह में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षा मित्रों का सम्मान समारोह प्रयागराज जिला पंचायत सभागार में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शिक्षा मित्रों के वेतन में हुई बढ़ोतरी के लिए उन्हें शुभकामना व बधाई देते हुए कहा कि बढ़े हुए मानदेय के साथ कैशलेस चिकित्सा की सुविधा भी आप लोगों को प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि सभी के जीवन में खुशहाली आए यह हमारी सरकार का संकल्प है। उन्होंने शिक्षा मित्रों के कार्यों की प्रशंसा एवं सराहना करते हुए कहा कि बच्चों का भविष्य बनाने में आप सभी की महती भूमिका है। उन्होंने कहा कि 2017 के पूर्व लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहते थे, परंतु मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऑपरेशन कायाकल्प योजना के तहत स्कूलों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। स्कूलों में अब बच्चों के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे अब अभिभावक अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों के बजाय सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने जन प्रतिनिधिगणों के साथ कार्यक्रम स्थल पर बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों के बच्चों द्वारा बनाई गई चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मई के प्रथम सप्ताह में ही भारतीय सेना की ओर से 3 दिवसीय नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का शुभारंभ किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यू कैंट के कोबरा ऑडिटोरियम में दीप प्रज्वलित कर नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का उद्घाटन किया। यह संगोष्ठी भारतीय सेना की उत्तरी कमान व मध्य कमान और सोसाइटी ऑफ इंडियन

0: डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की ओर से 4 से 6 मई तक आयोजित की गई। उद्घाटन अवसर पर चीफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, आर्मी कमांडर मध्य कमान लेफ्टिनेंट जनरल अनिध सेन गुप्ता, आर्मी कमांडर उत्तरी कमान लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा मौजूद रहे। नॉर्थ टेक सिंपोजियम का उद्घाटन करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे ज्ञान और शक्ति का महाकुंभ बताया। उन्होंने कहा कि यह वास्तव में रक्षा त्रिवेणी संगम है। रक्षा मंत्री ने कहा, हर कालखंड में वार फेयर का चेहरा बदला है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नई तकनीक का समावेश होते हुए दुनिया ने देखा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय रक्षा बलों के अद्वितीय साहस और दृढ़ संकल्प को दिया, जिसे स्वदेशी रूप से विकसित प्रभावशाली अत्याधुनिक हथियारों और प्रणालियों में और भी मजबूत बनाया। इस आयोजन का समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के विजन को रक्षा त्रिवेणी संगम में इस पवित्र संगम की धारा में साकार होते देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर 9 मई को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज के तत्वाधान में जनपद न्यायालय प्रयागराज एवं समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज सत्य प्रकाश त्रिपाठी द्वारा दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय लोक सेवा अदालत में कुल 2,30,121 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें फौजदारी के कुल 1,817 वादों का निस्तारण किया गया। पारिवारिक न्यायालय द्वारा कुल 80 वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया गया। जनपद न्यायाधीश प्रयागराज के निर्देशन में 9 जोड़ों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर एक साथ रहने के लिए समझौता किया गया और एक दूसरे को माला पहनाकर मिठाई खिलाई गई। इसी माह के दूसरे सप्ताह त्रिवेणी संगम तट पर नाविकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए आयोजित कार्यक्रम में प्रयागराज शहर उत्तरी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के द्वारा जनपद के नाविकों को 300 लाइफ जैकेट वितरित किए गए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नदी क्षेत्र में कार्य करने वाले नाविकों एवं संगम आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा लाइफ जैकेट दुर्घटनाओं की स्थिति में जीवन रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संबोधन के दौरान नाविकों से अपील की कि वे नाव संचालन के दौरान अनिवार्य रूप से लाइफ जैकेट का प्रयोग स्वयं करें तथा श्रद्धालुओं से भी करवाएं। यात्रियों को भी सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करें और नाव में सवार सभी लोगों के द्वारा जब तक लाइफ जैकेट नहीं पहन लिया जाए तब तक नाव का संचालन नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन एवं प्रशासन द्वारा नाविकों और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
1: प्रयागराज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बलिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विनय कुमार का।
2: बलिया जनपद में पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में विकास भवन सभागार में मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह तथा मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा ने की। समारोह में जनपद स्तर पर हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 11-11 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनकी शैक्षिक उपलब्धियों के लिए प्रोत्साहित करना तथा अन्य छात्रों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना रहा। इस अवसर पर चयनित विद्यार्थियों को मंच पर आमंत्रित कर 21,000 रूपए की प्रोत्साहन धनराशि की प्रतीकात्मक चेक पदक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित राज्य स्तरीय मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन को सुना और प्रदेश स्तर पर सम्मानित मेधावी छात्रों के समारोह का अवलोकन किया गया। बलिया के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला वृक्षारोपण समिति, जिला गंगा समिति एवं जिला पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्ष 2026 के वृक्षारोपण अभियान को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई तथा विभिन्न थीम आधारित वनों की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने सदस्य सचिव जिला वृक्षारोपण समिति एवं प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बलिया पृथ्वीराज KSB ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2026 में अलग अलग उद्देश्यों के अनुरूप विशेष प्रकार के वन विकसित किए जाएंगे। शासनादेश के अनुसार मिशन छाया, वंदे मातरम वाटिका, महर्षि चरक, औषधि वन, समरस वन, समृद्धि वन, कपि वन, ऊर्जा वन, अविरल धारा वृक्षारोपण और ग्रीन चौपाल जैसे कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने बताया कि मिशन छाया के तहत हीट वेव से राहत दिलाने के लिए पीपल, बरगद, पाकड़, नीम, आम और कलम जैसे छायादार वृक्षों का रोपण सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों पर कराया जाएगा। वहीं वंदे मातरम वाटिका के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस पर 150 पौधों का रोपण कर विशेष वाटिका स्थापित की जाएगी। बलिया जिला स्वास्थ्य समिति एवं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य रिपीट जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जिले में 15 मई 2026 से 14 अगस्त 2026 तक विशेष अभियान चलाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। इस संबंध में विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गांव-गांव अभियान चलाकर पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि जिले में करीब 32,000 गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं। जिलाधिकारी ने ब्लॉक वार समीक्षा के दौरान लापरवाही पाए जाने पर संबंधित AMIOS को कड़ी फटकार लगाई और निर्देश दिया कि हर हाल में 14 अगस्त तक 100% आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। उन्होंने प्रत्येक ब्लॉक और गांव के लिए साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित करने तथा उसकी नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी AMIOS को ANM एवं आशा कार्यकर्ताओं के साथ नियमित बैठक करने को कहा। साथ ही जनपद के शेष 6,53,615 पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों कर्मचारियों और जन प्रतिनिधियों से अभियान में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। जनपद बलिया में जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 22 मई से प्रारंभ हुआ। जनपद में 8,050 प्रगणक एवं सुपरवाइजर कुल 7,005 हाउस लिस्टिंग ब्लॉकों में तैनात किए गए हैं जो घर घर जाकर जनगणना 2027 में। अपर जिला अधिकारी जिला जनगणना अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि जनगणना अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के स्व जनगणना नोडल अधिकारी एवं राजनीति विज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर छवि लाल ने बताया कि
3: समस्त श्रोतागणों से निवेदन करता हूं कि वह भी जनगणना में सहभागिता सुनिश्चित करें और भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को 100% सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
4: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। इस कार्यक्रम में श्रोताओं लीजिए सुनिए अनीता द्विवेदी के गाए रुहेल खंडी लोकगीत।

0: जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: आकाशवाणी नजीबाबाद से इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अनिता द्विवेदी के गाए रुहेल खंडी लोकगीत। और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अगला लोकगीत।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

आकाशवाणी नजीबाबाद से इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अनीता द्विवेदी के गाए रुहेलखंडी लोकगीत। और श्रोताओं, लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अगला लोकगीत।

इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है अब यहीं पर संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अनिता द्विवेदी के गाए रुहेलखंडी लोकगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अपने श्रोताओं को एक बार फिर बता दें, अब से कुछ ही देर में यानी 10 बजे आप सुनेंगे भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम सुहाना सफर। पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे सुनिएगा सुबह 10:30 पर। महिला जगत कार्यक्रम में दोपहर 1:15 पर क्रम होगा आधी आबादी से। साथ ही सुनेगा श्रीमती अंजलि वर्मा, पर्यावरण विद एवं शांति शिक्षिका से भावना अरोड़ा की बातचीत। विषय होगा पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बात आसपास की। वाचन स्वर और संकलन है दिव्यम कर्णवाल का।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम बात आसपास की में आपका स्वागत। मैं हूं दिव्यम कंडवाल
1: और मैं इशिका कौशिक।
0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि बात आसपास की हमारा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम अपने आसपास हो रही घटनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं और साथ ही स्थानीय समस्याओं और मुद्दों पर भी आपका ध्यान केंद्रित करते हैं।
1: श्रोताओं, एक दौर था जब गांव में कोई बीमार होता था तो अस्पताल पहुंचने में ही आधा दिन गुजर जाता था, लेकिन आज बदलते भारत और डिजिटल उत्तर प्रदेश ने स्वास्थ्य सेवाओं को आपके मोबाइल फोन तक पहुंचा दिया है।
0: जी हाँ, केंद्र और राज्य सरकार की ई संजीवनी योजना अर्थात नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस के तहत अब आपका स्मार्टफोन आपका सबसे बड़ा अस्पताल बन गया है और जो हमारे सुदूर इलाके हैं वहाँ स्वास्थ्य विभाग की MMU मोबाइल मेडिकल यूनिट यानी पहियों पर चलता फिरता अस्पताल खुद मरीजों तक पहुँच रहा है।
1: आज बात आसपास की में हम इन सुविधाओं का पूरा लेखा जोखा लेकर आए हैं, तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिजनौर से हुई हमारी खास बातचीत। सर, सबसे पहले आप ई संजीवनी के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए।
2: ई संजीवनी या टेलीमेडिसिन एक ऐसा प्रयास है सरकार का कि एक लक्ष्य रखा गया था कि हेल्थ फॉर ऑल, जितने भी हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं उन सभी को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल पाएं। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारा रिमोट के एरियाज हैं, दूर दूर दराज में फैले हुए एरिया।

0: हैं जहाँ पर की पहुंचना या लोगों का आना जाना इतना आसान नहीं होता है। अगर मान लीजिए दूर दराज में कोई व्यक्ति रह रहा है तो आज मोबाइल फोन सबके पास है, फोन की सुविधा सभी के पास है, तो उनको ये सुविधा दी गई है हेल्थ फॉर ऑल का लक्ष्य पूरा करने के लिए कि वो आदमी जो रिमोट में बैठा है, गांव में बैठा है, कहीं दूर दराज की जगह में कहीं भी बैठा हुआ है, अब उसको स्वास्थ्य संबंधित कोई जानकारी चाहिए या कोई दवाई चाहिए, तो उसके लिए वो या तो आसपास के जो हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर है उस पर जाकर के, जो उसमें सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बैठा हुआ है या CHO बैठा हुआ है, तो उससे जाकर के वो संपर्क करे और वो CHO उसको फोन पे ई संजीवनी पे सीधे बात कराएगा। बात कराने से क्या होगा, वो डॉक्टर उसके लक्षण देख करके या उसकी बीमारी के बारे में जान करके, उसके बारे में, मरीज के बारे में सारी, उसके बाद में उसको बताएगा कि आपको किस किस दवाई की जरूरत या फिर आपको किस किस जाँच की जरूरत है। तो ये अगर संभव होगा तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे ही जाँच हो जाएगी और जरूरत होगी तो उसको रेफर कर दिया जाएगा, आप CHC में चले जाइए या जिला अस्पताल में चले जाइए, वहां पर जाकर जांच।
1: ई संजीवनी के लिए कोई भी हेल्पलाइन,
0: कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल फोन से 1075 नंबर डायल करके सीधा ई संजीवनी से जुड़ सकता है, वहां से सीधा टेलीकंसल्टेशन करके अपने लक्षण बता करके उनसे दवाई की जानकारी ले सकता है, बीमारी की जानकारी ले सकता है।
2: सर, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स द्वारा क्या कोई स्वास्थ्य कैंप भी लगाए जा रहे हैं?
0: जनपद बिजनौर के अंदर 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स काम कर रही हैं, जो कि पूरे 30 दिन का रोस्टर बना करके जो दूर दराज के गाँव है, बॉर्डर के गाँव है, उनमें लगातार ये कार्य कर रही है। तो 30 दिन का उनका रोस्टर बना हुआ है, 2 मोबाइल यूनिट्स लगातार चल रही हैं, उसमें डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध है, उसमें जांचों की सुविधा उपलब्ध है, उसमें दवाइयों की सुविधा उपलब्ध है और उसमें जो रोगों के प्रति जानकारी देने की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर, इसके अतिरिक्त जो हमारे स्कूली संस्थान है उनमें हम जागरूकता हेतु क्या प्रयास ला रहे हैं?
0: RBSK की टीम जो है हमारी, वो लगातार सभी स्कूलों में जाती है, जितने भी बच्चे हैं आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ रहे हैं या फिर वो प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर जाकर के सभी का स्वास्थ्य चेकअप होता है, जिससे कि अगर किसी बच्चे में कोई रोग है तो उसको जल्दी से जल्दी पहचान की जा सके और उसका समय से इलाज कराया जा सके। तो ये लगातार हर बच्चे की जाँच का लक्ष्य है। पिछले वर्ष में करीब करीब हमारे जनपद के अंदर 4.5 लाख बच्चों की जाँच हुई है।
1: श्रोताओं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिजनौर ने हमें समझाया कि कैसे ई संजीवनी के जरिए जिले के ही नहीं बल्कि मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ डॉक्टर भी सीधे वीडियो कॉल पर परामर्श दे रहे हैं, और जहां नेटवर्क या कनेक्टिविटी की दिक्कत है वहां MMU वैन दवाइयों और लैब टेस्ट के साथ खुद खड़ी है।
2: श्रोताओं, प्रशासन के दावे तो अपनी जगह हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या वाकई हमारे लोगों को इसका लाभ मिल रहा है? इसी को जानने के लिए हम पहुंचे कुछ स्थानीय उपभोक्ताओं के पास जिन्होंने हाल ही में ई संजीवनी का लाभ लिया है।
1: श्रोताओं, इसी क्रम में हमारे साथ हैं एक लाभार्थी, आइए उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम?
3: शांता।
1: शांता जी, आपको क्या समस्या थी?
3: मुझे माइग्रेन की बहुत ज्यादा परेशानी थी, बहुत ज्यादा मैं परेशान रहती थी, जब सिर में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता था, उल्टियां तक भी होने लग जाती थी।
1: तो जब आपको यह समस्या थी तो ई संजीवनी पोर्टल पर डॉक्टरों से विचार विमर्श करने से पहले आप क्या करती थी, इसका इलाज किस तरह से?
3: पहले जब भी सिर में दर्द होता था तो मैं दर्द की दवाई ले लेती थी और थोड़ी देर आराम मिलने के बाद फिर 2-4 दिनों में फिर दर्द दोबारा होने लग जाता था। कभी कभी तो दिन में 2-3 बार भी दर्द की गोलियां लेने की जरूरत पड़ जाती थी।
1: जब आपने ई संजीवनी पोर्टल पर डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने आपको इस विषय में क्या बोला?
3: डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि बिल्कुल भी अपने आप से कोई दवाई नहीं खानी, कोई पेन किलर नहीं खाने, इससे आपके लीवर और गुर्दों में परेशानी हो सकती है। जब भी आपको सिर में दर्द हो तो आप डॉक्टरों से सलाह लें और तभी जाके कोई दवाई खाएं।
1: शांति जी, जैसे हमने देखा है कि बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में जब हम जाते हैं तो वहाँ अक्सर हमें लंबी लाइनों का सामना करना पड़ता है, इसके बजाय आपने जब ई संजीवनी पोर्टल पर अपना चेकअप कराया तो उससे आपको क्या लाभ मिला?
3: इस ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करने के बाद मुझे बहुत बड़ा आराम मिला। जब से ई संजीवनी ऐप डाउनलोड करा तो बहुत ज्यादा मुझे मदद मिली है। एक तो सबसे पहले हमें सरकारी अस्पताल आने जाने की कोई जरूरत नहीं होती है और लाइन में पूरे दिन खड़ा नहीं रहना पड़ता, अपने घर के काम नहीं छूटते हैं, घर के काम होते रहते हैं, पैसे भी नहीं लगते, कोई पैसे नहीं है बिल्कुल, हम लोगों ने अपना इलाज फ्री में करवाना है। तो मेरे हिसाब से तो इस ऐप को डाउनलोड करने से बहुत ज्यादा फायदा है, मैं सबको यही राय दूंगी कि आप सब लोग भी करो।
1: इस ऐप पर डॉक्टर से कनेक्ट होने में आपको कितना समय लगा?
3: डॉक्टर से कनेक्ट होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, 10-15 मिनट के भीतर ही डॉक्टर साहब से हमारी बात हो जाती है और वो भी सीधे वीडियो कॉल पे बात होती है, वो सारी बातें पूछते हैं कि आपकी परेशानी क्या है, हर चीज बहुत आराम से पूछते हैं, जो भी परेशानी है, जो भी लक्षण आपको होते हैं, सब एक एक चीज पूछते हैं और उसके बाद वो आपको सही ट्रीटमेंट देते हैं।
1: लाखों माताएं बहनें इस समय आपसे हमारी इस वार्ता को सुन रही हैं, आप उन सभी को क्या संदेश देना चाहेंगी?
3: मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग अपने शरीर को बिल्कुल भी लापरवाही मत करो, शरीर के साथ में घर परिवार संभालने के साथ साथ आप लोगों को अपने शरीर का ध्यान भी रखना पड़ेगा और ई संजीवनी ऐप पे जरूर डॉक्टर से संपर्क करें, अपनी परेशानी बताएं, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा।
2: आपका नाम?
4: इशिता।
2: इस चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी में

0: मोबाइल की मदद से बिना पैसा खर्च किए कुछ ही मिनटों में सीधे डॉक्टर से बात हो जाती है और इससे हमारा समय और मेहनत दोनों ही बचते हैं।
1: फोन पर डॉक्टर को दिखाने के बाद दवाइयाँ लेने के लिए पर्चा कैसे मिलता है? क्या उससे आसानी से दवाइयाँ मिल जाती हैं?
0: हाँ, डॉक्टर से बात पूरी होते ही हमारे मोबाइल पर एक डिजिटल पर्चा आ जाता है। इस पर्चे को हम अपने फोन में दिखाकर किसी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या फिर किसी भी मेडिकल स्टोर से बहुत आसानी से दवाइयाँ ले सकते हैं और यह पूरी तरीके से सुरक्षित और मान्य तरीका है।
2: श्रोताओं, साथ ही हम पहुंचे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नजीबाबाद, जहां मेडिकल सहायक कुलदीप से हमने जाना। कुलदीप जी, आप हमें बताइए कि ई संजीवनी पोर्टल क्या है?
3: सरकार द्वारा एक पहल चलाई गई है कि ई संजीवनी के द्वारा पेशेंट डायरेक्ट डॉक्टर द्वारा मेडिसिन का लाभ उठा सकता है, वह उनसे बात सीधे बातचीत कर सकते हैं।
2: ई संजीवनी पोर्टल पर कोई भी लाभार्थी किस तरह से पंजीकरण करा सकता है? सेवा का लाभ कैसे उठाएं?
3: इस सेवा का लाभ अपने आधार कार्ड या आभा आईडी कार्ड बना होगा आपका, उसके द्वारा ई संजीवनी पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना नाम, एज, अपना जो भी गांव वगैरह ब्लॉक वगैरह है वो एंटर करके आप लॉग इन करेंगे। उसमें आप जिसको भी आपको दिखाना है, जनरल फिजिशियन, त्वचा रोग, चर्बी रोग, बाल रोग, जिसको भी दिखाना है।
2: ई संजीवनी पोर्टल से जो हमें पर्चा स्लिप मिलती है, उसको हम क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी दिखा सकते हैं?
3: हाँ जी, ये दो तरीके से काम करता है ई संजीवनी पोर्टल। एक तो मरीज सीधे अपने मोबाइल से डॉक्टर से बात कर सकता है, दूसरा डॉक्टर के थ्रू डॉक्टर बात करा सकता है आपकी ई संजीवनी से। आपसे जो डॉक्यूमेंट मिले उसको डाउनलोड कीजिए, अपने नियरेस्ट किसी सीएससी सेंटर या ईएससी सेंटर में जाइए, वहां पर आप उनको अपने डॉक्टर को दिखाइए और उनसे बातचीत कर सकते हैं।
2: तो दोस्तों, तकनीक का सही इस्तेमाल ही हमारे जीवन को आसान बनाता है। अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग है या आप अस्पताल की लाइनों से बचना चाहते हैं, तो आज ही ई संजीवनी ऐप जरूर डाउनलोड करें और इसमें उपलब्ध सभी स्वास्थ्य सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाएं।
1: और अपने आसपास के लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें। श्रोताओं, आशा है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए मुझे अर्थात इशिका कौशिक
2: और दिव्यम कंडवाल को दीजिए अनुमति। सुनते
1: सुनते रहिए
2: रहिए
1: आकाशवाणी
2: नजीबाबाद।
1: नजीबाबाद। नमस्कार।
2: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बात आसपास की। वाचन स्वर और संकलन था दिव्यम कर्णवाल का। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम सुहाना सफर।

0: नमस्कार श्रोताओ, सुहाना सफर में आप सभी का स्वागत है। आज के सफर में आपके साथ मैं हूँ रेणु कोटनाला,
1: और आज के इस सफर में मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी साथी ज्योति गौड़।
0: ज्योति, अक्सर कहा जाता है ना कि समय बीत जाता है लेकिन उसकी यादें और उससे जुड़ी घटनाएं हमारे साथ हमेशा बनी रहती हैं, और जब उन यादों को सहेजने की बात आती है तो रेडियो की भूमिका बेहद खास हो जाती है ना?
1: जी बिल्कुल सही कहा रेणु जी आपने। वर्षों से रेडियो ने देश दुनिया की कई घटनाओं को अपनी आवाज दी है, लोगों को जानकारी दी है और समाज को जोड़ने का काम किया है। और आज हम भी इस पहिए को थोड़ा सा पीछे घुमाने वाले हैं और रुक करेंगे आज साल 2023 की ओर। तो कहिए, तैयार हैं आप?
0: हाँ हाँ बिल्कुल ज्योति। श्रोताओ, आज सुहाना सफर में साल 2023 की कुछ खास घटनाओं को हम याद करेंगे और जानेंगे कि कैसे रेडियो ने उन्हें जन जन तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन क्यों ना ज्योति, आगे बढ़ने से पहले गीत अपने श्रोताओं को सुना दें।
1: हाँ बिल्कुल, और कार्यक्रम शुरू हो चुका है और कार्यक्रम का पहला गीत मैं बताऊं आपको? नहीं, श्रोताओं को ही बताते हैं कि कौन सा गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। 2023 में आई फिल्म गदर 2, और हमारे सभी श्रोताओं को इस फिल्म के गाने बहुत ज्यादा पसंद हैं। और कार्यक्रम में पहला गाना फिल्म गदर 2 से है, आवाज अरिजीत सिंह और मिथुन की है, संगीत भी मिथुन का है और गीत लिखा है सईद कादरी ने।

0: गीत के बाद फिर स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहाना सफर। तो आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साल 2023 की। रेनू जी, साल 2023 में रेडियो की भूमिका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रही। आधुनिक तकनीक और इंटरनेट के दौर में भी रेडियो लोगों तक सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाने का सस्ता और आसान माध्यम बना रहा।
1: जी हाँ, श्रोताओं, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सरकारी योजनाओं की जानकारी रेडियो द्वारा गांव-गांव तक पहुंचाई गई और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों ने स्थानीय भावनाओं में लोगों को जोड़कर रखा और जागरूक किया।
0: रेडियो ने विद्यार्थियों और स्थानीय क्षेत्रों के लोगों तक शैक्षिक कार्यक्रम पहुंचाए। कई कार्यक्रम खेती, विज्ञान

0: पर्यावरण और सामान्य ज्ञान पर आधारित रहे। मन की बात जैसे कार्यक्रमों ने जनता और सरकार के बीच संवाद को और अधिक मजबूत किया।
1: आकाशवाणी ने श्रोताओं को मौसम, खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और दूर दराज इलाकों में आकाशवाणी संचार का महत्वपूर्ण साधन भी बना रहा।
0: तो आइए फिर इस संचार का सदुपयोग करते हुए अब अपने श्रोताओं का मनोरंजन करवाते हैं और सुनवाते हैं उनको ये गीत जो हमने लिया है फिल्म एनिमल से। स्वर है अरिजीत सिंह का और लीजिए पेश है आप सभी के लिए।

0: रोनू जी, गीत आपने सुना, कैसा लगा?
1: बहुत अच्छा लगा। और ज्योति, मुझे लगता है कि साल 2023 में जितनी भी फिल्में आई और गीत आए, एक से बढ़कर एक रहे सब, है ना?
0: एक से बढ़कर एक गीत रहे और सुपरहिट फिल्में जो है वो 2023 ने हमें दी।
1: बिल्कुल।
0: और गाने भी सारे सुपरहिट ही रहे और साल

0: 2023 में हम चल रहे हैं, साल 2023 की बात कर रहे हैं, तो श्रोताओं बता दें साल 2023 में रेडियो से कई ऐतिहासिक गतिविधियों का प्रसारण किया गया। इन गतिविधियों ने देश और दुनिया की प्रमुख घटनाओं को लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: चंद्रयान 3 मून लैंडिंग की सफल लैंडिंग और वैज्ञानिक उपलब्धियों का विशेष प्रसारण आकाशवाणी ने ही किया।
0: G20 समिट 2023 में विश्व नेताओं की बैठकों और भारत की मेजबानी से जुड़ी खबरें भी रेडियो से खूब प्रसारित हुईं।
1: नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण।
0: इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल 2023 सहित विश्व कप क्रिकेट मैचों का प्रसारण।
1: रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे समारोह की परेड और भाषण का प्रसारण।
0: आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कार्यक्रम।
1: इंटरनेशनल योगा डे पर आधारित योग कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण रहा हो।
0: बाढ़, भूकंप और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित समाचार और राहत गतिविधियों की बात हो।
1: विज्ञान, अंतरिक्ष और डिजिटल तकनीक से जुड़े विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण भी आकाशवाणी ने ही किया।
0: देशभक्ति गीत, ऐतिहासिक नाटक, कवि सम्मेलन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का प्रसारण, जिससे लोगों को भारत के इतिहास और संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया गया, ये काम भी रेडियो ने किया।
1: और इन सभी खबरों को आकाशवाणी ने लोगों तक बखूबी पहुँचाया। ज्योति,
0: हाँ बिल्कुल, और कार्यक्रम में एक और विराम आपको देते हैं। हम समझ रहे हैं आप एक और गीत सुनना चाहते हो,
1: और हम चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं तक जो है आप 2023 का कोई सुपरहिट गीत पहुंचा दें जल्दी से।
0: और हम लेके आए हैं जुबिन नौटियाल की आवाज में फिल्म मिशन मजनू से ये गीत, जो 2023 में काफी हिट रहा और लोगों ने पसंद भी किया।

0: जुबिन नौटियाल की आवाज में भी अपनी गीत सुना फिल्म मिशन मजनू से, और आशा करते हैं सभी श्रोताओं को पसंद आया होगा। साल 2023 के सफर की हम बात कर रहे हैं श्रोताओं, आपको बता दें रेडियो ने मनोरंजन के साथ साथ नए कलाकारों और भारतीय संगीत संस्कृति को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाई।
1: जी हाँ श्रोताओं, रेडियो चैनल्स ने नए और स्वतंत्र कलाकारों के गानों को ऑन एयर जगह दी। फोक, इंडी रॉक, हिप हॉप और इलेक्ट्रॉनिक संगीत जैसे विभिन्न संगीत रूपों को सुनाया गया।
0: 2023 में पुराने और नए बॉलीवुड गीतों के विशेष कार्यक्रम प्रसारित हुए। श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित कार्यक्रमों ने काफी लोकप्रियता पाई है। रेणु जी,
1: बिल्कुल। और ज्योति, आकाशवाणी और एफएम चैनल्स ने भारतीय लोक संगीत, भजन, सूफी संगीत और क्षेत्रीय गीतों का प्रसारण भी किया, जिससे भारतीय संस्कृति को काफी बढ़ावा मिला।
0: बिल्कुल, और नए कई प्रसिद्ध गायकों और संगीतकारों जैसे जुबिन नौटियाल, रफ्तार और किंग के इंटरव्यू भी रेडियो पर खूब सुनाए गए।
1: जी हाँ, साल 2023 में श्रोताओं रेडियो पर कई बॉलीवुड फिल्मों के सुपरहिट गीत जैसे पठान फिल्म का झूमे जो पठान, व्हाट झुमका, तेरे वास्ते, जवान फिल्म का गाना चलेया, फिर और क्या चाहिए, प्यार होता कई बार है, सतरंगा, ओ माही, जमाल, कुडून, ये गाने ज्योति काफी खूब प्रसारित किए गए।
0: और कुछ गाने तो रेणु जी हम सुनवा भी चुके हैं जैसे और कुछ गाने हमारी अभी भी लिस्ट में लगा भी रखे हैं हमने। तो रेणु जी, इन गीतों ने 2023 में रेडियो श्रोताओं के बीच मनोरंजन, रोमांस और उत्साह का माहौल बनाया। खासकर अरिजीत सिंह, विशाल शेखर और अनिरुद्ध रविचंद्र के गाने सबसे अधिक लोकप्रिय रहे।
1: बिल्कुल ज्योति, अगर बात करें फिल्मों की तो साल 2023 में कई बॉलीवुड फिल्में सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिनमें थी शाहरुख खान की एक्शन फिल्म जवान, जो साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में रही और फिल्म ने विश्व भर में शानदार कमाई भी की।
0: और रेणु जी, शाहरुख खान की एक और फिल्म पठान एक्शन और देशभक्ति से भरपूर रही और इस फिल्म ने भी कई रिकॉर्ड बनाए। इसी साल एनिमल, गदर 2, टाइगर 3, डंकी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ओएमजी 2, द केरला स्टोरी, तू झूठी में मक्कार जैसी कई फिल्में आई जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया और इन फिल्मों के गानों का भी बखूबी रेडियो से प्रसारण हुआ।
1: तो भाई ज्योति, इतनी सारी फिल्में और उनके गानों की आपने बात की है, तो क्यों ना अपने श्रोताओं को एक और गीत सुना दिया।
0: बिल्कुल, और हमने अभी बात की फिल्म तू झूठी में मक्कार की, तो इसी फिल्म का गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, क्यों नहीं।
0: तो अरिजीत सिंह की आवाज में श्रोताओं ये गीत है, लीजिए सुनिए।

0: तो श्रोता आइए अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की तरफ चलते हैं और बात करते हैं खेल जगत की। तो श्रोता, रेडियो चैनल्स और एफएम स्टेशंस पर आईपीएल मैचों की लाइव कमेंट्री, मैच अपडेट, खिलाड़ियों की चर्चा और फैंस शो प्रसारित किए गए आकाशवाणी के द्वारा ही।
1: भारत में आयोजित आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के दौरान रेडियो पर मैच विश्लेषण, स्कोर अपडेट और विशेष कार्यक्रम भी रेडियो ने प्रसारित किए।
0: खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 से जुड़ी प्रतियोगिताओं, खिलाड़ियों की उपलब्धियों और उद्घाटन समारोह का प्रसारण आकाशवाणी और दूसरे माध्यमों से किया गया।
1: इंडियन ऑयल ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इंडिया के दौरान कई रेडियो चैनलों ने विशेष स्पोर्ट्स शो, रेस अपडेट और मनोरंजन कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
0: जी हाँ, 2023 नेशनल्स गेम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं की जानकारी और खिलाड़ियों के प्रदर्शन का प्रसारण भी किया गया।
1: प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम मन की बात को हम सभी जानते हैं। मन की बात में खिलाड़ियों की उपलब्धियों, फिटनेस और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने पर विशेष चर्चा हुई।
0: सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन हॉकी टूर्नामेंट और दूसरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की जानकारी रेडियो खेल बुलेटिन में दी गई।
1: और अब कार्यक्रम के क्योंकि हम अंतिम पड़ाव की ओर हैं, हाँ, तो एक गीत और सुनवा देते हैं जो हमारे कार्यक्रम का भी अंतिम गीत रहेगा, क्योंकि कार्यक्रम का समय भी थोड़ा थोड़ा पूरा हो ही रहा है और हमें लगता है जैसे जैसे गीत सुनना जाएगा और टाइम भी हमारा ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। सुनवा दे
0: बिल्कुल। और ज्योति, जिस तरह से हमारे श्रोताओं को बाकी गीत पसंद आए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं
1: जी बिल्कुल, क्योंकि 2023 का ये गीत है जो वाकई सुपर डुपर हिट रहा और श्रोता हमारे बिल्कुल पसंद करेंगे।

0: मैं सारे काम काज करूँ, तेरे हुस्न के ईगो का मसाज करूँ, तेरा झूम का जो खोया गलती है तेरी।
1: और रेणु जी, गाने भी हमने सुपर हिट सुनवा दिए आपको, प्रोग्राम भी मुझे लगता है हमारे श्रोताओं को पसंद आया होगा आज का,
2: पसंद आया होगा।
1: और ये गाना भी पूरा हिप हॉप और पूरा पार्टी वाला गाना हमने सुनवाया, बिल्कुल मिक्स गाना। और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि प्रोग्राम को अब यहीं पर समाप्त कर दें।
2: बिल्कुल, जाएंगे तभी तो फिर आएंगे।
1: बिल्कुल, तो श्रोताओं कल फिर उपस्थित होंगे इसी समय एक और प्रोग्राम लेकर। तब तक के लिए मुझे यानी ज्योति गौड़ और
2: रेणु कोटनाला को इजाजत दीजिए।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम सुहाना सफर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को ज्योति गौड़
1: और रेणु कोटनाला का
0: प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। और श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में, जो हमने लिया है फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से।

0: दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, संगीत जतिन ललित का था और गीत लिखा था आनंद बख्शी ने। सुनने की फरमाइश की थी हमारे इन सभी श्रोताओं ने। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे और परी खर्चे ने इसी गीत को सुनना चाहते थे। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोध। ये अगला मैसेज हमें मिला था महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से, भेजने वाले थे रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी, मिथिला नाचानी और प्रगति नाचानी। इसी गीत को सुनना चाहते थे सनावत से शेख मूसा मोहसिन। और ये मैसेज हमें मिला था ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से, भेजने वाले थे लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अब्रार हुसैन अंसारी, अल्ताफ हुसैन अंसारी, आशिक हुसैन अंसारी और मुन्ना अंसारी। इसी गीत को सुनने के लिए ये मैसेज हमें आया था मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से, मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टो भैया, साजदा रानी और हिना कौसर का।
1: और ये फरमाइश हमें लिखकर भेजी है पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना भगत ने। अजय सोनवड़े, करिश्मा सोनवड़े, अविका सोनवड़े, सईशा सोनवड़े ने फरमाइश लिखकर भेजी कोयते बस्ती पुनावले से। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हिमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से हमारे श्रोता हैं भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिदा मंसूरी, असद, फिरोजा मुस्कान, अफसर अली और नगमा नाज मंसूरी। और ये एक और फरमाइश शामिल कर लेते हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जी एस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार के सभी सदस्य। हमारे श्रोता ने लिखा है मैसेज रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से।
0: कार्यक्रम का अगला गीत सुनने से पहले ये संदेश।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: कार्यक्रम हमारा चल रहा है गीत तुम्हारे, और गीत तुम्हारे कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत कर लेते हैं आप सभी श्रोताओं का। रेनू जी, वैसे तो हमारे सभी श्रोताओं को हमारा नंबर पता है, लेकिन कुछ नए श्रोता हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपने मैसेज करना चाहते हैं, अपने फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, उनको आप नंबर बता दें।
2: बिल्कुल ज्योति, हमारे बहुत सारे श्रोता ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अभी अभी ट्यून किया होता है आकाशवाणी नजीबाबाद को, और वो चाहते हैं कि हम कैसे हमारे नाम भी इसमें शामिल हो जाए। तो बिल्कुल आसान है श्रोताओं, हमसे जुड़ने के लिए आपको टाइप करना है 9457078288 पर अपनी पसंद का गीत, और लिख भेजिए अपने नाम, लिख भेजिए पता कि आप कहाँ से मैसेज कर रहे हैं। आपका संदेश कार्यक्रम में जरूर शामिल किया जाएगा। जी हाँ, संदेश भेजने के लिए नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा, हमारा नंबर है 9457078288।
1: और ये कार्यक्रम चल रहा है गीत तुम्हारे, अभी हम आपसे जुड़े हैं 11 बजे तक, तो जो भी श्रोता जुड़ना चाहते हैं फटाफट से हमें अपनी पसंद लिखकर भेजिए अपने नाम और पते के साथ। और कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण की आवाज में फिल्म डर से, संगीत शिव हरि का है और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, सुनने की फरमाइश आप सभी की।
2: बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नाटा, दीक्षा और कुश मूड़त।
1: और ये मैसेज हमें किया है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से, भेजने वाले हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा।
2: परिमहल कासगंज से आबाद खान, अबील खान, आरफा अफरीन, इल्मा खान, मोहम्मद असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरा सराय, बदायूं से आफरीन खान, जमीर खान और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: और ये कार्यक्रम में अगला मैसेज हम पढ़ रहे हैं जो आया है रेलवे रोड गंज डुंडवारा से, भेजने वाले हैं मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन बेगम, शबनम अनवर, नाजमा बेगम नाज और सरिता गौतम।
2: इसी गीत के लिए फरमाइश लिखकर भेजी है सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमा, असद, आराम और मोहम्मद आलम हाशमी ने, नाज पैलेस अजमेर शरीफ से।
1: और इसी गीत को सुनना चाहते हैं लाल माता सुदामा नगर रतलाई जिला झाड़वा राजस्थान से, हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर मीनाक्षी, श्रीमती मनोहर बाई बागरी और प्रभु लाल बागरी। इसी गीत के लिए हमें ये फरमाइश भेजी है उत्तम नगर उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीशु, ताशु, अर्णव, आनंद, सत्य आनंद ने, पाकुड़ झारखंड से।
2: शास्त्री नगर बीर शहर से श्रोता है किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया, साईराज और विशाल। शाही मार्केट सिहारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, रफात अदीब और कादिर चौधरी।
1: और ये मैसेज हमें किया है वाइट फील्ड बेंगलुरु से, भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष ने। लीजिए पेश है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म डर से।

0: कार्यक्रम चल रहा है गीत तुम्हारे, और बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत सारे श्रोताओं के हमने मैसेज पढ़ भी चुके हैं और बहुत सारे मैसेज हमें दिखाई भी दे रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, जिनको हम अब पढ़ेंगे। तो कार्यक्रम के अगले गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है सब्जी मंडी झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया ने, और जिला मुरादाबाद, ग्राम दूलापुर, उत्तर प्रदेश से ये फरमाइश भेजी है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून ने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं।
1: दादरी केट भिवानी से श्रोता है हमारे कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा और इनके साथी। और ये अगला मैसेज हमें मिला है करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान का, सिंधौली, मीरगंज, बरेली से श्रोता है जीशान वारसी। और ये अगला मैसेज हमें आया है तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रही मुन्ना, दानिश आसिफ शेख और मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी ने लिखा है ये मैसेज ऊपर कोट मोहल्ला चौकुंडी बुलंदशहर से। एक और मैसेज हमें मिला है अहमदपुर खैगांव खंडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर फूलमाली और वेदिका फूलमाली का। ये संदेश हम तक पहुंचा है सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान का। मोहम्मद सईद अब्बासी और इनका शामिल कर चुके हैं हम मैसेज। एक और मैसेज हमें मिला है सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और कल्पित चौहान के साथ हैं बेबी गर्वी।
0: और एक बात हम अपने सभी श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि जिन भी श्रोता का मैसेज शामिल हो जाता है वो फिर से हमें मैसेज ना करें, क्योंकि कई भी श्रोता हमारे रह जाते हैं।
1: बिल्कुल। और ज्योति मुझे ऐसा लगता है श्रोताओं की भी गलती नहीं है, वो हमें प्यार ही इतना करते हैं, वो
0: बिल्कुल
1: चाहते हैं कि बार बार उनके नाम शामिल हो भाई।
0: शामिल हो, लेकिन ये तो गलत बात है ना कि अगर हम एक प्रोग्राम में एक ही श्रोता के नाम शामिल करते रहेंगे और बाकी हमारे श्रोता रह जाएंगे तो वो हमसे नाराज भी तो हो
1: श्रोताओं,
0: जाएंगे।
1: आपका आपका प्रेम, आपका प्यार हमें कबूल है, लेकिन बस दूसरे श्रोताओं का भी ख्याल रखें। तो प्लीज एक श्रोता एक ही बार मैसेज करें।
0: बिल्कुल। और ये इसी गीत के लिए हमारे पास मैसेज आया है मालवा रोड श्रोता संग्राम हीगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी से भेजने वाले हैं जगदीश धाकड़, नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ का। और ये मैसेज हमें किया है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सरावत से मोहम्मद शादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं सहेली रेडियो श्रोता संघ आजाद रोड सनावत से बेगम सलमा खत्री, बेबी सुयमा, सुमैया, आयशा बी खत्री, सादिया बी खत्री, नवासी जिकरा और सगड़ खत्री का। आप सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है कुमार शानू और अलका याग्निक के गाए इस गीत की, जिसको संगीत दिया है निखिल विनय ने और गीत लिखा है योगेश ने। फिल्म का नाम है इंग्लिश बाबू देसी मेम।

और इसी गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई थी, सहारनपुर चंदर नगर से सोनाली, सुरेश नारंग, आशु नारंग, शेख अल्लाह बख्श, अरविंद कुमार और संदीप मक्कड़ की। इसी गीत के लिए हमें ये फरमाइश भेजी थी कबीर रेडियो श्रोता संघ डोडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देव शंकर तामूरिया, जयदेव तामूरिया, तुषार देव।

0: फरमाइश भेजी थी उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश ने। इसी गीत को सुनना चाहते थे। निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई, मतीन भाई, अब्दुल रहमान, सैयद खलील, मुनीब भाई, एमडी यासीन, शेख चांद फारूक, फूलवाले और मूसा करीम।
1: ये फरमाइश लिखकर भेजी है बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, सूरज कुशल वर्मा ने, ग्राम पंचायत बठेना पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। और मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी ने संदेश भेजा है नई बस्ती गंजद्वारा से। जसपुर उत्तराखंड से हमारे श्रोता हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत रुखसार, रानी तबस्सुम और इनके परिवार के सभी सदस्य। गांव कैरो, जिला तारन तारन, पंजाब से गुरदर्शन, लाल चलोत्रा, सुनीता, शमीर, रजनी, आकाशदीप, अनहद और पोत्रा के साथ हैं गुरशबद।
0: और ये कार्यक्रम का अंतिम मैसेज हम पढ़ रहे हैं जो आया है लाल कुर्ती रुड़की कैंट से। भेजने वाले हैं रमी, राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत तुम्हारे अब यहीं पर संपन्न करने की ज्योति गौड़ को दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार, कार्यक्रम में आगे आपके साथ बनी रहेंगी रेणु कोटनाला जी।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत तुम्हारे, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। 11 बजे हैं, आप पेश है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में।

आग और शोला। आपने सुना इस फिल्म का गीत। आवाज थी मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर की, शब्द रचना थी आनंद बख्शी की, और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: ए आर रहमान का संगीतबद्ध किया हुआ समीर का लिखा गीत आपने सुना। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में फिल्म थी द लीजेंड ऑफ भगत सिंह।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का नजीब आबाद केंद्र। कार्यक्रम है चित्रपट संगीत।

टॉयलेट एक प्रेम कथा। आपने सुना इस फिल्म का गीत, आवाज थी सोनू निगम और श्रेया घोषाल की, शब्द रचना थी गरिमा बहल की और संगीत था विकी प्रसाद का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं फिल्म रॉक स्टार से, स्वर मोहित चौहान और सुजैन का है। गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं फिल्म रिफ्यूजी से। आवाज सोनू निगम की है, गीतकार जावेद अख्तर और संगीतकार अनु मलिक।

सोनू निगम और अलका याग्निक के गाये फिल्म रिफ्यूजी के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, आज का चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: तरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी का।
1: और अगला संदेश मिला है महाराष्ट्र से प्रथमेश हेड़के जी का। उन्होंने लिखा है, मुझे NCERT का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद है, हर दिन, हर बार, हर रोज सुनता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
1: इलाहाबाद से रेशमा नाज डोम और बेबी अंसारी डोम।
0: आप सबको हमारा आभार संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, संदेश जरूर भेजिए क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। साथियों, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थलों की। कल हमारी चर्चा का विषय था गोभी का शीत मरुस्थल।
1: इन कड़ियों में हमने विशेष रूप से ये जाना था कि मरुस्थल या मरुभूम कहलाने के लिए किसी क्षेत्र में रेत ही रेत हो या बहुत गर्मी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
0: जी हाँ श्रोताओं, मरुभूमि या मरुस्थल की परिभाषा उस क्षेत्र की निर्जलता या अति अल्प वृष्टि पर निर्भर करती है।
1: जी
0: तो विमलेश जी, आज हम किस शीत मरुस्थल की चर्चा करने जा रहे हैं? मेरे विचार से क्यों ना भारत के शीत मरुस्थलों की चर्चा की जाए।
1: अजीत जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सोच रही थी कि आज हम भारत के शीत मरुस्थल की चर्चा करते हैं जो लद्दाख में है। आपको याद है, NCERT की ओर से मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम भी वहां जा चुके हैं।
0: जी हाँ, हमने उस इलाके को देखा भी है।
1: जी बिल्कुल, मुझे भी याद है। तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे लद्दाख के शीत मरुस्थल की। इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। जैसा कि हमने सुना था, मरुस्थल का अर्थ सिर्फ रेत नहीं होता, बल्कि वो जगह मरुस्थल कहलाती है जहां वर्षा बहुत कम होती है। तो श्रोताओ, आपको बता दें कि लद्दाख में सालाना वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50 से 100 मिलीमीटर के लगभग।
0: लेकिन विमलेश जी, ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है कि वहां यानी लद्दाख में इतनी कम वर्षा क्यों होती है?
1: अजीत जी, इसका कारण यह है कि लद्दाख का क्षेत्र हिमालय पर्वत की रेन शेडो यानी वर्षा छाया में स्थित है। हिमालय पर्वत यहाँ आने वाली वर्षा को रोकता है। अजीत जी, मुझे तो ये भी याद है कि वहां जाने पर हमें शुरू में सांस लेने में भी थोड़ी कठिनाई हुई थी।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहां की हवा अधिक ऊंचाई के कारण बहुत पतली होती है
1: जी
0: और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए पहली बार जाने वालों को कुछ विशेष सलाह दी जाती है। बताइए क्या सलाह दी जाती है?
1: जी वहां पहली बार जाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि तेज न चलें, ज्यादा ऊंची चढ़ाई न चढ़ें और भारी शारीरिक काम जैसे ट्रैकिंग वगैरह एकदम से उत्साह में आकर न करें।
0: जी
1: पहले वहां के वातावरण में अपने शरीर को अनुकूलित करें और फिर धीरे धीरे सामान्य गति में आएं।
0: जी बिल्कुल सही। श्रोताओं, यहाँ का तापमान सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे जा सकता है,
1: जी
0: लेकिन गर्मियों के दिनों में धूप तेज लगती है।
1: जी
0: लद्दाख का अर्थ ही है ऊंचे दर्रों वाली भूमि। श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि यह दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल मार्गों में गिना जाता है।
1: अब बात करते हैं यहाँ पाए जाने वाले जीवों की, खास तौर से यहाँ याक, स्नो लेपर्ड, हिमालयी भेड़िया और नीली भेड़ पाई जाती है। और हाँ, लद्दाख की झीलें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे पेंगोंग झील। श्रोताओ, और अब जानते हैं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: तो विमलेश जी, यहाँ के मुख्य भोजन हैं स्कू और थुकपा।
1: जी
0: ये गेहूं के आटे से बना होता है। पावा भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है, जो जौ के सत्तू से बनाया जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई खुबानी से बनती है।
1: जी
0: यहाँ लोग अपने घर मोटी मिट्टी और पत्थरों से बनाते हैं ताकि घरों में गर्मी बनी रहे।
1: जी
0: जहां तक खेती की बात है, यहाँ विशेष रूप से जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं।
1: अजीत जी, एक और रोचक बात श्रोताओं से साझा करना चाहती हूँ।
0: हाँ, जरूर कीजिए।
1: वो ये कि लद्दाख में एक पेड़ बहुत अधिक पाया जाता है, जिसे विलो कहा जाता है।
0: जी
1: इनकी लकड़ी हल्की, मजबूत और लचीली होती है। इसी लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। दुनिया भर में इस लकड़ी की बहुत मांग है, इसलिए लद्दाख में इसकी खेती भी की जाती है।
0: जी, ये तो आपने बड़ी रोचक जानकारी हमें दी। विमलेश जी, आपको याद है जब हम वहां गए थे मैग्नेटिक हिल,
1: बिल्कुल याद है।
0: जहां यदि वाहनों को बंद भी कर दिया जाए या न्यूट्रल गियर में भी रखा जाए तो
1: जी
0: वो खिसकने लगते हैं?
1: बिल्कुल
0: क्या रहस्य है इसका, जरा श्रोताओं को बताइए।
1: अजीत जी, ये जगह लेह कारगिल मार्ग पर स्थित है। हमने भी तो इसका अनुभव किया था।
0: हाँ,
1: लोग अक्सर सोचते हैं कि वहां पहाड़ियों में कोई चुंबकीय शक्ति है जो वाहनों को खींचती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार वास्तव में वाहन वहां अपने आप नहीं चलते। ये एक दृष्टि भ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन है।
0: जी श्रोताओ, दरअसल बात यह है कि वहाँ की सड़क की बनावट ही ऐसी है कि जो सड़क हल्की ढलान पर नीचे जा रही होती है वो आंखों को ऊपर ऊपर जाती दिखाई पड़ती है। इसी दृष्टि भ्रम से ऐसा लगता है कि वाहन अपने आप सरक रहे हैं। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुरुद्वारा पत्थर साहिब है, जो एक दर्शनीय स्थान है।
1: श्रोताओ, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ बौद्ध संस्कृति, मठ, प्रार्थना चक्र और रंग बिरंगे खूबसूरत झंडे देखे जा सकते हैं। और तो और, सिंधु घाटी की सभ्यता को पालने वाली सिंधु नदी लद्दाख से ही गुजरती है। श्रोताओ, इस नदी को देखना भी हमारे लिए कभी न भूलने वाला अनुभव था।
0: जी, सुंदर नीला आकाश, रात में असंख्य चमकते हुए तारे,
1: जी
0: रेत, बर्फ, सूखे पहाड़, झीलें और वहां की आध्यात्मिक संस्कृति। जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें क्या लगता है विमलेश जी?
1: कि भारत के शीत मरुस्थल लद्दाख में हमें एक साथ मिलते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के प्रसिद्ध शीत मरुस्थल लद्दाख की।
1: जी,
0: आशा है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है,
1: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और आप हमारे ईमेल पर भी अपने संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर यानी ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो इन्हें आप NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल या दीक्षा पर सुन सकते हैं। दीक्षा पोर्टल पर आप पढ़ पाएंगे ढेर सारी शैक्षिक सामग्री और सुन व देख पाएंगे हमारे ऑडियो वीडियो कार्यक्रम भी।
1: जी, और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
0: भारत अर्थात इंडिया।
1: कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से भारत देश के विभिन्न नामों के बारे में बताया गया है और उन नामों के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी सप्रसंग विवरण किया गया है।
2: भारत अर्थात इंडिया।
3: दोस्तों, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम, जहां हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच। अनुष्का भीड़ की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचने लगी,
4: हमारे देश के इतने सारे नाम, कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, तो कोई हिंदुस्तान भी कहता है।
3: दोस्तों, अनुष्का का कौतूहल स्वाभाविक था। क्या आपने भी कभी इस प्रकार से सोचा? अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोचा तो चलिए आज इस मनोरंजक और रोचक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। अनुष्का अपने स्कूल गई, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं गई थी। उसने ये बात अपनी सहेली जिशा से साझा की। तय ये हुआ कि वो अपने हिस्ट्री के अध्यापक से बात करेंगे। वो बात ध्यान से सुनते हैं और बोलने का मौका भी देते हैं।
5: सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं?
6: कौन? ओ, अनुष्का, जिशा,
5: सर।
6: तुम दोनों आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ शाबाश।
5: क्या अभी आपके पास समय होगा?
6: तुम लोग बिल्कुल ठीक समय पर आए हो।
5: सर, उस दिन हम क्रिकेट मैच देखने गए थे।
6: हाँ, वो बांग्लादेश और भारत का?
5: जी वही। सर, उस दिन लोग वहाँ कुछ बातें कर रहे थे।
6: अच्छा
5: सर,
7: कोई कहता था कि इंडिया जीतेगा तो कोई कहता कि भारत ने मैच जीता।
6: और
7: कोई कहता था कि हिंदुस्तान की टीम ने कमाल कर दिया। और
6: हाँ बोलो बोलो
7: सर, हमारी पुस्तक में देश का नाम भारतवर्ष भी तो है।
6: बिल्कुल,
7: लेकिन सर दूसरे देशों के इतने सारे नाम तो नहीं होते। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के नाम तो एक ही है। फिर हमारे देश के इतने ढेर सारे नाम क्यों हैं?
6: बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन ये आज से 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था।
7: 5000 वर्ष पहले?
6: हाँ, इसके लिए हमें हजारों वर्ष पहले के इतिहास में जाना होगा।
7: जी, लेकिन हमें हजारों वर्ष पहले की जानकारी कैसे मिलेगी?
6: अच्छा ये बताओ, तुमने ऋग्वेद का नाम सुना है?
7: जी सर, सुना तो है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है।
6: प्राचीन ही नहीं, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
7: अच्छा।
6: इस ग्रंथ से हमें अपने देश के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं।
7: जैसे?
6: जैसे इस ग्रंथ के अनुसार हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में एक वैदिक समूह निवास करता था।
7: वैदिक समूह?
6: हाँ, वैदिक समूह। इस समूह के ऋषियों और मुनियों द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। इस वैदिक समूह का नाम भरत था।
7: भरत? भरत नाम तो हमने सुना है।
6: अच्छा भाई, भरत नाम से बाद में बहुत से राजाओं को भी जाना गया।
7: ओह भरत, अच्छा तो ये बात है।
6: हाँ।
7: तो क्या इसी भरत नाम से देश का नाम भारत पड़ा?
6: बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुष्का, इसी नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जिसे बाद में भारतवर्ष भी कहा जाने लगा। ये वैदिक समूह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी सिंधु घाटी क्षेत्र में निवास करता था। ऋग्वेद में इस भाग को सप्त सैंधव अर्थात सात नदियों की भूमि कहा गया है।
7: अच्छा।
6: हाँ, सैंधव शब्द सिंधु शब्द से आया है।
7: मैंने पढ़ा था कि सिंधु का मतलब होता है नदी।
6: बिल्कुल सही, इसका तात्पर्य सिंधु नदी से ही है। अच्छा ये तो बात हुई ऋग्वेद की। अब सिंधु के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात।
7: वो क्या सर?
6: वो ये कि छठी शताब्दी पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैनिक अभियान किया और सिंधु नदी के इलाके पर नियंत्रण कर लिया। अपने लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत के सिंधु इलाके को हिद, हिदू या हिंदू कहा है।
7: फारसियों ने सिंधु को हिद, हिदू या हिंदू कहा है, भला ऐसा क्यों?
6: ऐसा इसलिए क्योंकि फारसी भाषा में सिंधु शब्द का रूपांतरण हिंदू होता है।
7: अच्छा।
6: हाँ, क्योंकि स अक्षर उनकी भाषा में है ही नहीं।
7: है ही नहीं?
6: हाँ।
7: ऐसा कैसे?
6: ऐसा है, स की जगह उन्होंने ह का प्रयोग किया।
7: ओ।
6: हाँ, हिंदू। तो सिंधु रूपांतरित होकर बन गया
7: हिंदू।
6: शाबाश। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदू शब्द से उनका तात्पर्य हिंदू धर्म से नहीं था।
7: तो फिर?
6: हिंदू शब्द एक भौगोलिक शब्द था जो सिंधु नदी या सिंधु की घाटी क्षेत्र को संदर्भित करता था।
7: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। सर, ऋग्वेद के अलावा क्या कुछ और भी ग्रंथ है जिनसे हमें और अधिक जानकारी मिल सकती है?
6: बिल्कुल जिशा, कुछ और हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे विष्णु पुराण और महाभारत। अच्छा जरा ये बताओ, मैंने अब तक कितने ग्रंथों के नाम तुम्हें बताए?
7: आपने अब तक 3 ग्रंथों के नाम बताए।
6: अच्छा, तो कौन कौन से हैं वो 3 ग्रंथ?
7: सर, ऋग्वेद, महाभारत, विष्णु पुराण।
6: अरे वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छे। विष्णु पुराण में बच्चों हम पढ़ते हैं वो देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं।
7: अच्छा।
6: हाँ।
7: सर, आपने प्राचीन ग्रंथ महाभारत का भी नाम लिया था।
6: बिल्कुल।
7: क्या उससे भी हमारे देश की जानकारी मिलती है?
6: देखो, पहली बात तो ये है कि महाभारत ग्रंथ के नाम में ही भारत का नाम है।
7: अच्छा।
6: हाँ, महाभारत में पहली बार भारत को भारतवर्ष भी कहा गया है।
7: अच्छा।
6: हाँ, और साथ साथ इस ग्रंथ में एक और नाम है भारत का।
8: वो क्या?
6: बताता हूँ बच्चों, वो है जम्बूद्वीप।
8: जम्बूद्वीप?
6: हाँ,

0: जम्बू द्वीप। महाभारत में भारतवर्ष को जम्बू द्वीप भी कहा गया है।
1: जम्बू द्वीप?
0: हाँ,
1: ये नाम भला क्यों?
0: देखो, जम्बू का अर्थ होता है जामुन। इसे जम्बुल भी कहते हैं। जामुन का पेड़ उन दिनों इस भूभाग पर बहुत अधिक पाया जाता था, इसलिए भारत को जम्बू द्वीप भी कहा गया।
1: अच्छा।
0: हाँ, सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों में संपूर्ण भारत का वर्णन जम्बू द्वीप के नाम से भी किया है।
1: सर, मैंने सुना है कि उन दिनों हमारा देश बहुत बड़ा था।
0: बिल्कुल ठीक तुमने सुना है। उन दिनों भारत में आज के बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी सम्मिलित थे।
1: इतने सारे देश?
0: हाँ, और शायद इसी कारण से भारत को महाभारत भी कहा गया है।
1: अच्छा। सर, अभी तक हमने जाना कि हमारे देश को भारत, भारतवर्ष और जम्बूद्वीप कहा जाता था। सर, इंडिया और हिंदुस्तान भी तो हमारे देश को कहा जाता है।
0: बिल्कुल।
1: ये नाम कैसे आए?
0: लगता है सब कुछ जानकारी मानोगे। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडिया नाम कैसे आया। देखो बच्चों, इंडिया नाम इंडस से आया है। तुम्हें याद है ना कि सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं?
1: जी सर।
0: हाँ, तो अभी अभी मैंने बताया था कि भारत में फारसी लोग आए, लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानियों का भी हमारे देश में आगमन हुआ।
1: अच्छा।
0: हाँ, यूनानी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया।
1: ओ।
0: और सिंधु नदी को इंडोई या इंडिके कहा।
1: ऐसा क्यों कहा उन्होंने?
0: उनके साथ भी भाषा की समस्या थी। हाँ।
1: तो इसका मतलब है कि यूनानियों के लिए सिंधु कहना मुश्किल था और इंडो या इंडिके कहना ज्यादा आसान था।
0: हाँ। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा, तुम्हें एक बात और बता दूं। और वो ये कि प्राचीन यूनानी लोग भारत में रहने वालों को इंडोई कहते थे।
1: अच्छा। इंडोई यानी इंडिया के रहने वाले इंडोई कहे जाते थे।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह से नाम पड़ा इंडिया।
0: हाँ?
1: और हिंदुस्तान?
0: देखो, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तुर्क और मुगलों ने किया। वो जिन इलाकों से आए थे उन इलाकों के नाम के आगे प्रायः स्थान शब्द हुआ करता था, जैसे
1: अफगानिस्तान।
0: बिल्कुल सही।
1: बलूचिस्तान।
0: सही।
1: तुर्किस्तान।
0: बिल्कुल। और उज़्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। और बच्चों, शायद स्थान का अर्थ स्थान से रहा हो।
1: सर, अब हमें हमारे सवालों का हल मिल गया।
0: अच्छा?
1: हाँ, बिल्कुल।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: सर, आपने हमें बड़ी मजेदार जानकारी दी। हमारे देश के इतने सारे नाम हैं, लेकिन हमें किस नाम का प्रयोग करना चाहिए?
0: बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो, हमारे संविधान की अंग्रेजी प्रति के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहा गया है इंडिया जो कि भारत है।
1: अच्छा।
0: हाँ। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें संविधान की प्रस्तावना याद है?
1: जी, प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
0: बहुत अच्छे। तो हमारे देश का नाम हुआ भारत, जिसे इंडिया भी कहते हैं। समझ में आया?
1: जी सर।
0: शाबाश। अच्छा, आज जो भी तुमने जाना है, समझा है, उस जानकारी को तुम कल क्लास में सबके साथ बांटोगे।
1: सबके साथ?
0: हाँ, सबके साथ।
2: तो साथियों, कैसे लगी आपको अपने प्यारे देश भारत अर्थात इंडिया के विषय में ये जानकारी? अच्छी लगी ना? इतने सारे नाम शायद ही किसी और देश के रहे होंगे। आज हमने जाना कि हमारे देश का नाम है भारत अर्थात इंडिया।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत अर्थात इंडिया, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पहली उड़ान।
4: इस कार्यक्रम में विश्व इतिहास में मनुष्य की पहली उड़ान के बारे में रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि कैसे गर्म गैस के गुब्बारे पर मनुष्य ने पहली बार उड़ान भरी। इस घटना ने भविष्य में आधुनिक वायुयानों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया।
5: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है। और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
6: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
7: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
8: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
7: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
8: हाँ पूछो बेटा।
7: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
8: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
7: लेकिन माँ,
8: ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा, जोसेफ
7: जी
8: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
7: अच्छा माँ, ये लो माँ।
8: ला।
6: ओ, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
7: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल गया मुझे।
8: क्या मिल गया
7: मुझे? माँ माँ ओ माँ,
8: क्या मिल गया? क्या मिल गया?
7: मुझे मिल गया।
6: क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया?
8: सब क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही, क्या हो गया है?
7: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
6: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
7: स्टीफन स्टीफन, माँ माँ माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो। हाँ इस कमरे के धुएं को देखो। इसमें इसमें क्या उड़ रहा है बताओ, बताओ उसमें क्या उड़ रहा है?
8: कुछ भी तो नहीं,
6: कुछ भी तो नहीं है।
7: ओ नहीं स्टीफन नहीं, ध्यान से देखो। हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है? उड़ रही है ना?
6: वो तो है मगर
7: इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
6: हाँ हाँ हाँ हाँ, कहते तो तुम ठीक हो।
7: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें, हैं?
6: हाँ।
7: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
6: हाँ हाँ हाँ हाँ, ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ, चलो देखते हैं।
7: ठीक है, आओ मेरे साथ।
8: अरे सुनो, अरे खाना तो खाते जाओ। स्टीफन जोसेफ सुनो तो।
5: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
9: अरे गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
10: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
11: हाँ भाई भीड़ तो है,
10: लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार, भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
11: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
10: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
11: हाँ, आओ, आओ, यही ठीक रहेगा। आओ चलो।
10: अरे भाई साहब जरा रास्ता दीजिए, आगे जाने दीजिए।
12: भाई साहब हट जाइए।
11: अरे आ गए, आ गए। यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं।
7: अरे अरे वो देखो, वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
11: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। वो देखो टोकरे में। हाँ,
7: अरे अरे, अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो, एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
11: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
7: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे, अरे वो देखो, स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है।
11: और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
7: अरे अरे अरे, वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर जा रहा है। ये क्या हो रहा है? कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो, वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
11: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
7: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया।
11: बहुत अच्छा।

0: टूटा। शेष यात्री यानी भेड़ और बतख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया, जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ऑलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहली उड़ान, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार, नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: श्रोताओं, भी आपने सुना एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। श्रोताओं, एक नजर डालते हैं हमारे आज के प्रमुख कार्यक्रमों पर।

आज शाम 4 बजे संदेश टू सोल्जर्स और प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

रात्रि 9:30 पर नाटक प्यासे पत्थर हमारे श्रोता सुनेंगे। लेखक होंगे कविंद्र रविंद्रनाथ ठाकुर और निर्देशक दीनानाथ। समय याद रखिएगा आज रात्रि 9:30 पर।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में संध्या 7:32 पर सुनिएगा गुलाम हुसैन साबरी और साथियों से गाई कव्वाली। रेडियो प्रसारण के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष भेंटवार्ता पराग से निधि भारद्वाज की बातचीत हमारे श्रोता सुनेंगे 6:45 पर कार्यक्रम 90 साल बेमिसाल के अंतर्गत।

कृषि जगत कार्यक्रम में संध्या 6:05 पर डॉक्टर सतनाम सिंह नागर विषय वस्तु विशेषज्ञ से जितेंद्र कुमार की बातचीत हमारे श्रोता सुनेंगे। बातचीत का विषय होगा श्री अन्न और मानव स्वास्थ्य। समय याद रखिएगा संध्या 6:05 पर और कार्यक्रम होगा कृषि जगत।

बूझो तो जाने, कुछ खास है आज। नॉन फिल्मी चार्ट बस्टर कहानी के उस पार में सुनिएगा घर जमाई का एपिसोड 4 और आनंदी जी का फिल्म संगीत का।

संध्या 5 बजे रिश्ता ये खास है आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में, जहां आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित ये कार्यक्रम होगा। समय आपको फिर बता देते हैं, आज शाम 5 बजे।

महिला जगत में दिन में 1:15 पर क्रम रहेगा आधी आबादी से। साथ ही श्रीमती अंजलि वर्मा पर्यावरणविद एवं शांति शिक्षिका से भावना अरोड़ा की बातचीत हमारे श्रोता सुनेंगे। बातचीत का विषय होगा पर्यावरण संरक्षण, महिलाओं की भूमिका। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:05 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

मोहम्मद रफ़ी मनाडे और साथियों की आवाज़ में आपने सुना फिल्म शहीद का गीत। गीत और संगीत था प्रेम धमन का। सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।

आनंद मिलन का संगीत बद्ध किया हुआ समीर का लिखा गीत आपने सुना। अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज़ में फिल्म थी आई मिलन की रात।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में आपने सुना फिल्म राम बलराम का गीत। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। लीजिए अब सुनिए दोस्ताना फिल्म से गीत, स्वर है लता मंगेशकर का, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज के गाए फिल्म खलनायक के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, आज का सैनिकों के लिए कार्यक्रम अब संपन्न होता है। सैनिक भाइयों, आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम मिट्टी मेलोडी। स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम मिट्टी मेलोडी में। श्रोताओं, इस दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे जब हम पहली बार मिलते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम उनसे पहली बार मिले हैं, है ना? जी हाँ, मन के अंदर एक बहुत ही मजबूत सा जुड़ाव महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत पुराना नाता है, कोई पुराना रिश्ता है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपका और हमारा रिश्ता है, है ना? लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत, साहिल लुधियानवी का लिखा हुआ, आरडी बर्मन का संगीत है, आवाज़ किशोर कुमार की है और फिल्म का नाम है आ गले लग जा।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र। कार्यक्रम है मिट्टे मेलोडी। श्रोताओ, मन की खिड़की से जब देखा तो तुम बहुत दूर नजर आए। जी हाँ, मन की खिड़की से जब देखा तो तुम बहुत दूर नजर आए, मगर जब मन की आंखें बंद की, तुम्हें सोचा तो मन खुद ही मुस्कुराने लगा तुम्हारे ख्याल से। श्रोताओं, ये गाना जो आप कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं, ये गाना रविंद्र जैन ने लिखा है, कंपोज भी उन्हीं का किया हुआ है और इस मीठे से एहसास को अपनी आवाज में बयां किया है हेमलता ने। फिल्म का नाम है अखियों के झरोके से।

यादों की बारात फिल्म का गीत श्रोताओं आपने सुना। मजरू सुल्तानपुरी की खूबसूरत शब्द रचना को अपना शानदार संगीत दिया आरडी बर्मन साहब ने और आवाज़ थी किशोर कुमार की। श्रोताओं, प्रेम जिसे यूं तो बयां करना बड़ा ही मुश्किल होता है, मगर फिर भी हर शायर ने इसे अपने अंदाज में अलग अलग तरह से बयां किया है। लीजिए अब आप भी सुनिए लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ललकार फिल्म का गीत, शब्द रचना हसरत जयपुरी की, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। श्रोताओं, प्रेम की कोई उम्र नहीं होती, ना ही दौर होता है। जी हाँ, प्रेम तो प्रेम है, ये जब होता है तो बेहिसाब होता है।

महेंद्र कपूर की आवाज़ में आपने सुना फिल्म ये रात फिर नाएगी का गीत। गीत लिखा था एसएच बिहारी ने और संगीत दिया था ओपी नैयर ने। और अब चलते चलते एक गीत उस रिश्ते के लिए जो बहुत ही प्यारा है। जी हाँ, दोस्ती पर अब जो गीत आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म नमक हराम से, आवाज़ किशोर कुमार की है। श्रोताओं, दोस्ती पर आज तक जितने भी गाने बने हैं ना, सब बड़े प्यारे हैं, क्योंकि दोस्ती अपने आप में बड़ा ही प्यारा रिश्ता है। मगर जो गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं, सच में वो बहुत बहुत बहुत प्यारा है। और आनंद बख्शी ने दोस्ती के इस रिश्ते को बहुत ही सुंदर शब्दों में बयां भी किया है, और आरडी बर्मन साहब का बेहतरीन संगीत इस गीत में है। तो लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म नमक हराम का गीत।

0: किशोर कुमार की गाए इस गीत के साथ ही श्रोताओं आज का मिड डे मेलोडी कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का एक बजा है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। इस बातचीत में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल्स क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिश्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री सुकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक की जानकारी दी है।
2: ये हमारा 23rd प्लेनरी मीटिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट होने जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
1: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों तक निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराएगी। सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जानी है। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। भारत सैफ महिला फुटबॉल

चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। शेयर बाजार दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 35 अंक गिरकर 74,311 पर, जबकि निफ्टी 5 अंक फिसलकर 23,401 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is holding talks with Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The discussions involve the full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in areas of energy, security, trade and investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation and renewable energy. Earlier, External Affairs Minister S. Jaishankar called on Ms. Rodriguez. In a social media post, Dr. Jaishankar said India values her long-standing commitment to the India-Venezuela relationship. Ms. Rodriguez arrived in New Delhi yesterday on a five-day visit to India. She is accompanied by a delegation comprising the Ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance, Science and Technology and Transportation. President Draupadi Murmu has said India and Lao People's Democratic Republic share close civilizational ties reflected in the common heritage of Buddhism and the Ramayana. She added that this year both nations are celebrating the 70th anniversary of the establishment of diplomatic relations, which is a significant milestone in the bilateral relationship. Welcoming Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Lao PDR Thongsawan Pombihane yesterday at Rashtrapati Bhavan, President Murmu noted that in October 2024, Prime Minister Narendra Modi visited Lao PDR to participate in the ASEAN-related summits. Yesterday, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar co-chaired the 10th India-Lao PDR Joint Commission meeting with Mr. Pombihane in New Delhi. The 73rd plenary session of the Northeastern Council NEC is underway in Shillong, Meghalaya. Union Home Minister Amit Shah is chairing this session. Union Minister of Development of Northeastern Region Donor Jyotiraditya Sindhya, Meghalaya Governor C.H. Vijay Shankar, Chief Minister Conrad K. Sangma, Union Minister of State for Donor Shukanto Mojumdar, Union Home Secretary Govind Mohan and Secretary of the Ministry of Donor Sanjay Jaju are present in the meeting. Governors and chief ministers of other northeastern states are also present in the meeting along with several other dignitaries. The Northeastern Council, established under the Northeastern Council Act 1971, serves as the apex regional planning body for the northeastern region. It plays a pivotal role in fostering coordinated development and strengthening cooperative federalism in the region. Delhi Chief Minister Rekha Gupta today visited Max Hospital in Saket to meet those injured in the Malviya Nagar fire incident yesterday. She interacted with the injured and their family members and also reviewed the ongoing treatment with the attending doctors and directed officials to extend all necessary assistance. An ex-gratia of 10 lakh rupees has been announced to the next of kin of each deceased. The seriously injured will receive 5 lakh rupees. A total of 21 people lost their lives after a fire broke out at a guest house in the Malviya Nagar area of New Delhi yesterday. The Uttar Pradesh government has decided to provide free bus ride to aspirants of state police constable exams to their examination centres. Chief Minister Yogi Adityanath gave instructions to the concerned officials regarding this in a review meeting. The recruitment examination for civil police constable and equivalent posts would be conducted on June 8th, 9th and 10th in two shifts each day. Mera Yuva Bharat, My Bharat has been officially recognized by Guinness World Records for achieving the title of most users to take an online quiz in 1 week, with over 3,90,000 participants who completed the entire length of the quiz. Union Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia received the certificate in a ceremony held in New Delhi today. The record was achieved through the Vikasit Bharat Young Leaders Dialogue 2026 quiz from the 25th to the 31st of October last year. The inaugural edition of the World Yogasan Sports Championship is set to kick off this evening at Trans Stadia in Ahmedabad, Gujarat, marking a historic milestone on the global sporting roadmap. Prime Minister Modi will virtually join the mega event in the evening to share his best wishes as yoga enthusiasts and athletes from across the globe gather for the competition. Benchmark domestic equity indices were trading marginally down in afternoon trade today. The Sensex lost 35 points to 74,311 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। वक्त हुआ है दोपहर के 1:10:15 और ये वो वक्त है जिस प्रोग्राम
2: ने प्रोग्रामों का जायजा लिया। इस दौरान वजीर आला ने कहा कि नरेंद्र मोदी की कयादत में मरकजी हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने के मौके पर 5 जून आलमी योम माहौलियात से 21 जून बैनुल अक्वामी योम योग तक मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम सिर्फ रस्मी इनेकाद न होकर अवामी शराकतदारी और अवामी बेदारी की मुहिम बने। मीटिंग में वजीर आला ने 8, 9 और 10 जून को 2 मीटिंगों में मुनक़िद होने वाले कांस्टेबल सिविल पुलिस भर्ती इम्तिहान की इफ्फत और राजदारी को बनाए रखने के अहकाम दिए। उन्होंने कहा कि नज़्म व नसक से खिलवाड़ करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में कल हुई काबीना की मीटिंग में मफादे आम्मा की 24 तजावीज मंजूर की गईं। शहरी तरक्की के वजीर ए के शर्मा ने बताया कि काबीना ने शहरी ट्रांसपोर्ट खिदमात को बेहतर बनाने के लिए 1725 नए इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की मंजूरी दी है। ई बसें नोएडा समेत शहरी इलाकों के 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों और 18 बड़े शहरों में चलाई जाएंगी। काबीना ने सरकारी वकला के अलाउंस में इजाफे की तजवीज को भी मंजूरी दी। हमारे नामा निगान ने इतला दी है कि काबीना ने खरीफ मार्केटिंग साल 2025-26 के लिए हिमायती कीमत स्कीम के तहत मक्का की खरीदारी की पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने कल दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रकों और बसों को तब्दील करने के लिए नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड को मदद फराहम करने की स्कीम को मंजूरी दे दी। मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत में ये जानकारी दी। मरकजी वजीर जनाब वैष्णव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम रियासतों उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के साथ मिलकर नाफिज किया जाएगा। बनारस में आज ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग का इफ्तिताह हुआ। मीटिंग से कबल मुख्तलिफ ममालिक से आए नुमाइंदों का रवायती तरीके से इस्तकबाल किया गया। मीटिंग की शुरुआत हिंदुस्तान हुकूमत के वजारत सकाफत के सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल के खिताब से हुई। वाज़ह रहे कि हिंदुस्तान इस बार ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग की मेजबानी कर रहा है जो 2 रोज तक मुनक़िद होगी। मीटिंग में हिंदुस्तान के अलावा चीन, जनूबी अफ्रीका, इंडोनेशिया, यूनाइटेड अरब इमीरेट्स, ब्राजील और ईरान के नुमाइंदे बराए रास्त शामिल हुए हैं। दरियसना रूस, इथोपिया और मिस्र के नुमाइंदे हाइब्रिड मोड के तवस्सुत से मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। वाज़ह रहे कि इस दौरान अराकीन ममालिक के दरमियान सकाफती तआवुन, विरासत, तहफ्फुज़ और सकाफती तबादले को मजबूत करने से जुड़े मुख्तलिफ मौजू पर बहस होगी। इस दौरान मरकजी सकाफती सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल ने बताया,
3: ये लिविंग हेरिटेज है न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व की, और यहाँ का जो सांस्कृतिक परिवेश है, यहाँ की जो गंगा जी की जो सुंदरता है, जो हमारी युगे युगीन पुरानी सभ्यता है, उस सभ्यता का ये प्रतीक है। इसलिए इससे अच्छा स्थान ब्रिक्स के कल्चरल ट्रैक की डिस्कशंस के लिए नहीं हो सकता, और इसीलिए स्थान को चुना गया।
2: उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल इम्तिहान के उम्मीदवारों को एक बड़ी राहत में रियासती हुकूमत ने इम्तिहानी मराकज को रियायती कीमतों पर बस सर्विस फराहम करने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एक जायजा मीटिंग के दौरान इस सिलसिले में मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत जारी की। मीटिंग में पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड के डायरेक्टर जनरल ने बताया कि सिविल पुलिस कांस्टेबल और इसके मसावी अहदों के लिए भर्ती का इम्तिहान 2 शिफ्टों में 8, 9 और 10 जून को होगा। इस इम्तिहान में तकरीबन 2.9 मिलियन उम्मीदवारों के शिरकत की तवक्को है। वजीर आला ने वाज़ह हिदायत दी कि किसी उम्मीदवार को धूप में खड़ा ना होना पड़े और इम्तिहानी मराकज में तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। उम्मीदवारों की सहूलत के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट रियायती किरायों पर खसूसी बैनज़ली बसें चलाएगा। गुज़िश्ता 12 सालों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में हिंदुस्तान ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर मबनी गैरमामूली तरक्की की है। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ गुज़िश्ता 12 सालों में मुख्तलिफ शोबों में हुकूमत की कोशिशों पर एक खसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज हम कारोबार करने में आसानी के शोबे में हुकूमत की कोशिशों पर बात करेंगे।
4: सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया, जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई, जिससे कारोबार करना आसान हो गया। वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की।
2: इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नष्ट किया जाएगा।
5: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

नमस्कार बहनों, आप सुन रही हैं आपका अपना लोकप्रिय कार्यक्रम महिला जगत। और आज कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं, आपकी सहेली, आपकी दोस्त मीनाक्षी अग्रवाल। बहनों, आज हमारी कार्यक्रम में चर्चा का विषय है एक ऐसी समस्या जो केवल मौसम का नहीं बल्कि हमारे आने वाले भविष्य का सवाल बन चुका है, जो है जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। बहनों, आज हम सभी महसूस कर रहे हैं कि मौसम पहले जैसा नहीं रहा। कभी तेज गर्मी, कभी अचानक बारिश, कभी सूखा तो कभी बाढ़, ये सब जलवायु परिवर्तन के संकेत हैं। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि धरती का लगातार गर्म होना आज पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। बहनों, पेड़ों की कटाई, बढ़ता प्रदूषण, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों का गलत इस्तेमाल इसके बड़े कारण हैं। लेकिन बहनों, इस बदलाव को रोकने में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक महिला ही घर, परिवार और अपनी आने वाली पीढ़ियों की पहली शिक्षक होती है। घर के जिम्मेदारियों के बीच हम महिलाएं सबसे पहले अपने परिवार और बच्चों के भविष्य की चिंता करती हैं, और जब बात आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की हो तो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का विषय हम सबसे जुड़ जाता है। इसीलिए आज इसी विषय पर हम लेकर आए हैं एक भेंट वार्ता जिसका शीर्षक है पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका, जिसमें श्रीमती अंजलि वर्मा से बातचीत कर रही हैं भावना अरोड़ा। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता एक छोटे से ब्रेक के बाद।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: की गिनती देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: बहनों, पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। भारतीय महिलाएं सदैव इस दिशा में कार्यशील रही और हमारे भारतीय संस्कृति को अगर हम देखें तो यहाँ के रीति रिवाज और परंपराओं में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता दिखाई देती है। और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हम मना रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस, इसी विषय पर आज पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं श्रीमती अंजलि वर्मा जी, जो एक विश्वविख्यात पर्यावरणविद एवं चिपको आंदोलन के प्रणेता पद्म विभूषित श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी और उनकी सहधर्माणी भूदान एवं चिपको आंदोलन की अग्रणी गांधीवादी लोक सेविका श्रीमती विमला बहुगुणा जी की स्नेहिल सानिध्य में रही हैं। श्रीमती अंजलि वर्मा को भारत रत्न गौरव सम्मान तथा राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भागीदारी विषय पर चर्चा में आपकी उपस्थिति हमारे लिए गौरव का विषय है। वर्तमान में आप प्राथमिक विद्यालय हाफिजाबाद द्वितीय में प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं और NCERT न्यू दिल्ली की पीस पार्टिसिपेंट और UP की स्टेट कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो अंजलि जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद भावना जी, मुझे भी आज यहाँ स्टूडियो में आकर पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपनी बात रखने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ।
2: अंजलि जी, जैसा कि आप जानती हैं कि हमारा आज का जो विषय है वो है पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भागीदारी। जैसा कि अभी हमें आपके परिचय से ज्ञात हुआ कि आपने भी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है
3: जी।
2: तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में आने के लिए आपको किस बात ने प्रेरित किया?
3: भावना जी, ये बात तब की है जब मैं स्टूडेंट थी, मैं BA सेकेंड ईयर में थी, तो मेरे स्कूल में एक बार श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी का आना हुआ था
2: जी।
3: और उन्होंने वहाँ स्टॉल लगाई थी। बस उस दिन मैंने उनको पहली बार सामने देखा था
2: जी।
3: अब तक किताबों में पढ़ा था और एक उस दिन के बाद से मेरे जीवन की जो दशा और दिशा है वो दोनों मैंने तय कर ली कि हाँ, मुझे अब इसी क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना है और इसी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिए ही कार्य करना है।
2: तो यानी अगर कहें कि आपके प्रेरणा स्रोत जो थे वो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे
3: जी,
2: जिनसे प्रेरित होकर आपने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने का सोचा
3: जी, बिल्कुल।
2: अंजलि जी, आपको क्या लगता है कि पर्यावरण और महिलाओं का आपस में क्या संबंध है, किस तरह से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं?
3: देखिए, पर्यावरण जो है उसमें तो सभी चीज है, लेकिन महिलाओं से जो जुड़ाव है पर्यावरण का, जो हमारी प्राकृतिक संसाधन है उसके जो प्राथमिक उपभोक्ताएं हैं वो महिलाएं हैं और खासकर ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं जो सीधे ही तौर पर ही प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। अपने घर के रसोई के चूल्हे से लेकर खेतों में काम करने तक वो पूरे दिन पर्यावरण से जुड़ी रहती हैं और उसके संरक्षण संवर्धन के लिए लगातार कार्य करती रहती हैं और वही जो इस तरह के गुण हैं वो अपने बच्चों को भी देती हैं और समाज में भी यही संदेश फैलाती हैं कि लोगों को प्रकृति का उपभोग करने के साथ साथ उसके संरक्षण और संवर्धन पर भी ध्यान अवश्य देना चाहिए।
2: बिल्कुल, क्योंकि हम प्रकृति से बहुत कुछ ले रहे हैं लेकिन बदले में हम क्या दे रहे हैं?
3: इसी बात को मैं भावना जी एक छोटी सी कविता के माध्यम से बताना चाहूंगी।
2: जी बिल्कुल,
3: ठीक है। सुनो धरती की पुकार, अब तो जागो इंसान, कटते जंगल सूखती नदियां, रोता है आसमान, हवा में घुला है जहर, सांस लेना हुआ दुश्वार, आओ मिलकर करें प्रतिज्ञा, बचाएं अपना संसार, पेड़ लगाओ छांव बढ़ाओ, हरियाली का मान करो, प्लास्टिक का मोह त्यागो, धरती का सम्मान करो, नदी नाले पर्वत घाटी सबका अपना रूप रहे, आने वाली पीढ़ी को भी शुद्ध जीवन धूप मिले, बूंद बूंद से सागर भरता, कदम कदम से बनती रहा, तुम भी एक पौधा रोपो, यही प्रकृति की चाह, कचरा नहीं संस्कार बांटो, स्वच्छ रखो अपना द्वार, यही सच्ची पूजा होगी, यही सच्चा उपकार, उठो चलो समय ना खो, संकल्प का दीप जलाएं, धरती माँ की गोद सजाएं, नया सवेरा लाएं, प्रकृति बचेगी तो हम बचेंगे, ये रिश्ता पहचानो, आओ सब मिलकर आज ही पर्यावरण को मान दो।
2: बहुत सुंदर, मतलब वास्तव में आपके इन शब्दों ने पूरे पर्यावरण को समेट लिया। अंजलि जी, जैसा कि अभी हमने आपसे जाना कि आपने चिपको आंदोलन की अग्रणी गांधीवादी लोक सेविका श्रीमती विमला बहुगुणा जी के साथ भी काम किया है, तो कुछ आपके अनुभव जरूर जानना चाहेंगे कि किस तरह से चिपको आंदोलन में एक ऐतिहासिक आंदोलन साबित हुआ था और महिलाओं की क्या भूमिका रही थी इसमें।
3: कोई भी आंदोलन हो बिना महिलाओं की भागीदारी के वो कभी सफल हुआ ही नहीं है। सबसे पहले अगर हम लिया जाए तो 1730 में जो खेजड़ली राजस्थान वाला आंदोलन हुआ था उसमें जो मेन उसकी कार्यकर्ता थी वो थी अमृता देवी
2: जी।
3: राजस्थान मारवाड़ जो जगह है वहां के राजा को अपना भवन बनाने के लिए लकड़ी चाहिए थी
2: जी।
3: तो वो गांव में गए, वहां खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ थे और उन्होंने पेड़ को काटना शुरू कर दिया
2: जी।
3: तो वहां की जो महिला थी अमृता देवी उन्होंने इस चीज का विरोध किया
2: जी।
3: अब विरोध के बाद उनकी तीनों लड़कियां भी इस चीज का विरोध करने वहां पर आई और वो पेड़ों से चिपट गई और उनसे कहा जो भी सैनिक थे कि भाई पहले हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे, पहले आप हमें काटो। तो सैनिकों ने उन चारों का ही गला काट दिया।
2: अच्छा,
3: जब ये वाली बात वहां आसपास के गांव में फैली तो गांव वाले आए, इस तरह करके वहां 363 लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन ये आंदोलन इतना विस्तार ले चुका था कि उसके बाद सैनिकों को वो काम रोकना पड़ा और वो खेजड़ी के पूरे जंगल
2: बच गए।
3: दूसरा था चिपको आंदोलन
2: जी।
3: ये आंदोलन शुरू तो 1973 में हुआ था और श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी इसके अग्रणी थे, लेकिन इसमें जो गौरा देवी का स्थान था वो सर्वोपरि है। उन्होंने पेड़ों से लिपट गई और कहा कि ये हमारी माताएं हैं और ये जो पूरा वन और जंगल है ये हमारे मायका है और हम अपने मायका को किसी भी कीमत पे समाप्त नहीं होने देंगे
2: जी। बहुत गौरा देवी जी का नाम तो सभी जगह सुना जाता है और उनके योगदान को भी बहुत सराहा जाता है। भी आपने बात की चिपको आंदोलन की, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये तो एक बहुत बड़े बड़े आंदोलन की बात हुई है जिसमें सभी महिलाएं नहीं भागीदारी दे सकती, पर अगर हम स्थानीय स्तर पर बात करें तो महिलाएं किस तरह से पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकती हैं?
3: हाँ, पर्यावरण संरक्षण में स्थानीय स्तर पर महिलाओं का योगदान वो भी बहुत मायने रखता है। पृथ्वी को स्वस्थ बनाने के लिए सबसे पहले हमें जल की बचत करनी होगी
2: जी।
3: आजकल हम देख रहे हैं कि जो हमारा भूगर्भ स्तर है वो इतना कम हो गया है कि सब लोगों ने समरसेबिल लगा रखे, लेकिन अभी मई जून तक आते आते
2: जी
3: समरसेबिल में पानी नहीं आता है। और चेन्नई तो ऐसा है कि वहां पे तो भूगर्भ जल बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। और बहुत पहले बहुगुणा जी थे, उन्होंने कह दिया था कि जो अगला युद्ध होगा वो जल के लिए होगा। तो जल संरक्षण सबसे पहले हमारा है। उसके बाद है हमें प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए, वायु को साफ रखने का प्रयास करना चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक का हमें यूज नहीं करना चाहिए और जितना भी हो हमें वो चीज लेनी चाहिए जिसको कि हम रिफिल कर सकें
2: जी।
3: जैसे शैम्पू की बोतल है, आपका सॉस की बोतल है या और भी चीजें हैं, हम उनको रिफिल वाला पैक जरूर लें उनके लिए
2: जी।
3: और जानवरों और पक्षियों का संरक्षण करें वो हम कर सकते हैं पौधारोपण करके। पर्यावरण संरक्षण का सबसे पवित्र उपाय है पौधारोपण करना, क्योंकि पौधारोपण करने से हम अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं करते, प्रकृति की जितनी भी और जीव जंतु हैं हम उनके लिए भी उनके घर का, उनके खाने का और अपने रसोई के लिए ईंधन का भी।
2: और सबसे बड़ी बात कि प्रकृति में ऑक्सीजन का स्तर मेंटेन रखने के लिए पेड़ों का होना बहुत जरूरी
3: जी,
2: है।
3: जी जी,
2: बहुत अच्छी जानकारी आपके द्वारा हमारी बहनों को मिल
3: रही है। और ग्रामीण परिवेश की महिलाएं तो ये और भी कर सकती हैं। वो जो खेतों की मेड़ है, अपनी खेतों की मेड़ों पर नीम के पौधे, सहजन के पौधे लगा सकती हैं।
2: बिल्कुल,
3: इससे हमारा जल तो संरक्षित हो गई होगा, साथ में हमारी जो मिट्टी का क्षरण है वो भी रुक जाएगा।
2: जी जी बिल्कुल। अंजलि जी, अभी आपने बात की जल संरक्षण की, इसके अतिरिक्त एक और बदलाव है जिसके द्वारा भी पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है, वो है कचरा प्रबंधन।
3: जी बिल्कुल बिल्कुल,
2: है ना। तो इस विषय में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?
3: हाँ, 2012 या 13 की बात है
2: जी,
3: जब ये कचरा प्रबंधन के लिए एक मीटिंग दिल्ली में हुई थी तो वहां पे उन्होंने कचरे को वर्गीकरण करके दो वर्गों में विभक्त किया, एक तो सूखा कचरा और गीला कचरा
2: जी।
3: तो सूखा कचरा तो हम उसको रीयूज कर सकते हैं, लेकिन गीले कचरे को का प्रयोग करके हम बहुत उपयोगी खाद बना सकते हैं।
2: बिल्कुल।
3: तो इससे क्या होगा कि हमारी जो रासायनिक खाद हमारे खेत में पड़ती हैं और हमारी मिट्टी को, जैसे हमारे गुरुजी आदरणीय बहुगुणा जी कहा करते थे कि लोगों ने तो मिट्टी को भी नशेबाज बना दिया है, इतना उस पे खाद यूज करते हैं या इतने रासायनिक उर्वरक वगैरह डाल रहे हैं, तो हमारी मिट्टी में जो उर्वरक क्षमता है वो उसकी खत्म होती जा रही है। लेकिन हम अपने गीले कचरे का प्रबंधन करके जब जैविक खाद बनाएंगे तो वो हमारे धरती को भी समृद्ध बनाएगी और हमें फसल भी अच्छी देगी।
2: और एक बात और सोचिए ना कि जिस धरती में या मिट्टी में इतने ज्यादा केमिकल और ये उर्वरक मिलाए जाते हैं, उससे उत्पन्न जो सब्जियां हैं वो हमारे लिए कितनी हानिकारक
3: है, हमारे स्वास्थ्य पर एकदम प्रतिकूल असर डालती हैं।
2: जी,
3: यहाँ मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। हम लोग अभी कोटा राजस्थान में थे
2: जी,
3: तो वहाँ अस्पताल के पास में एक वेस्ट वाला एक गड्ढा सा बना हुआ था। तो हम लोग जब वहाँ जा रहे थे तो हमने देखा कि एक आदमी उस गड्ढे में टमाटर की सब्जी धो के लेके जा रहा है। अब बताइए, वेस्ट वो हॉस्पिटल का वेस्ट आ रहा है, उसमें आपकी सब्जी धुल के आ रही है, आपको तो लगेगा कि हाँ साफ सुथरी सब्जी आप घर ले जाएंगे खा लेंगे उसे, लेकिन वो आपको कितना नुकसान करेगी।
2: जी, पर्यावरण संरक्षण में सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि मिट्टी, जल, कचरा प्रबंधन, जलवायु सभी कुछ शामिल है।
3: जी बिल्कुल।
2: तो अगर हमें पर्यावरण संरक्षण करना है तो हमें इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इन सभी का संरक्षण करना है।
3: और इसके साथ साथ हम अपने वेस्ट में से भी बेस्ट मटेरियल बना सकते हैं।
2: जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि महिलाएं घरेलू स्तर पर क्या बदलाव ला सकती हैं, किस तरह से वो अपने घर, परिवार और बच्चों को बता सकती हैं कि हमें किस तरह से पर्यावरण का संरक्षण करना है।
3: हाँ, घरेलू स्तर पर सबसे पहले तो है कचरा प्रबंधन।
2: जी,
3: ठीक है कि वो कचरे को इधर उधर ना डालें, एक उसकी निश्चित जगह कर लें और वहीं पे डालें। दूसरा है कि कचरे से कंपोस्ट खाद बनाना।
2: जी,
3: महिलाएं जो हैं शहरों में वो अपनी बालकनी में या टेरेस पे गार्डनिंग कर सकती हैं और वहाँ एलोवेरा हुआ या छोटे छोटे पौधे, जिनसे हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा और जो हमारा तापमान है वो भी 2-3 डिग्री कम हो जाएगा। तो वो इस तरह के छोटे छोटे पौधे अपनी बालकनी में रख सकते हैं।
2: तो गमलों में भी सब्जियां उगाई जा सकती हैं, टमाटर है या
3: टमाटर है, बैंगन है,
2: बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जो गमलों में भी उगाई जा सकती हैं,
3: उगाई जा सकती हैं।
2: जी,
3: और तुलसा जी का पौधा है, वो तो हमारी संस्कृति में बहुत पहले से हम लोग तुलसा की पूजा है, वट वृक्ष की पूजा है, करते ही आ रहे हैं।
2: जी,
3: लेकिन भाई वट वृक्ष में बहुत सारी जगह चाहिए होती, शहरों में नहीं लग सकता, लेकिन केले का पौधा है वो लोग अपने घर में लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं। और बच्चों को जो है वो सिंगल यूज प्लास्टिक को ना बोलें, और जब भी बच्चे बाजार जाएं तो उनको प्लास्टिक के थैला देने की बजाय हाथ से सिला हुआ कपड़े का थैला दें, और जो बच्चों के पुराने कपड़े हो जाते हैं उनको फेंके ना, उनसे भी वो बहुत अच्छी अच्छी सामग्री बना करके बच्चों को दे सकती हैं और उनको सिखा सकते हैं कि इससे जो पन्नी पे हमारी निर्भरता बढ़ती चली जा रही है वो कम होगी। ऊर्जा बचानी चाहिए, जैसे बच्चे कमरे में बैठे हैं, पता चला कि पंखे भी चल रहे हैं, एसी भी चल रहे हैं, लाइट भी चल रहे हैं, अब पता चला उन्हें बाहर जाना हुआ तो वो सब कुछ
2: खुले
3: छोड़ के चले गए। तो हमें उनमें ये आदत डेवलप करनी चाहिए, उनको टोका टाकी करनी पड़ेगी।
2: बिल्कुल।
3: तो अगर टोका टाकी एक दो बार करेंगे तो तीसरी बार बच्चे जो हैं वो खुद लाइट पंखा बंद करके जाएंगे और औरों को भी इस चीज के लिए मना करेंगे, क्योंकि बच्चे किसी की बात माने ना माने अपने टीचर की बात जरूर मानते हैं। तो मैं सभी टीचर्स का आह्वान करना चाहती हूँ कि वो बच्चों को बिजली से संबंधित, पानी से संबंधित जितनी भी हैं उनके बारे में उनको जागरूक करती रहें और उन्हें ये बताएं, ऊर्जा का कोई सा भी रूप हो आपको उससे बचत करनी है और आपको जो पानी है वो भी बचाना है।
2: बच्चों में ये आदतें अभी से ही विकसित करनी बहुत जरूरी है।
3: गांव में हाँ एक चीज और कर सकती है, महिला स्वयं सहायता समूह से पेपर बैग बना सकती है।
2: जी,
3: ठीक है ना, और उसका वितरण स्कूलों में या अपने सोसाइटी में कर सकती हैं। गांव में आजकल बहुत सारे सखी समूह या स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहे हैं और वो इस तरह के वेस्ट मटेरियल से बेस्ट आइटम बना करके समाज में वितरित कर सकते हैं।
2: अंजलि जी, घरेलू स्तर पर आपने हमारी महिलाओं को बहुत जागरूक किया, अब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मदद आप चाहती हैं कि आपको सरकार और समाज से मिले।
3: जी बिल्कुल, सरकार तो देखिए अपना काम कर रही है, हर साल हम लोग वन महोत्सव मनाते हैं।
2: जी,
3: और 1973 से लगातार मनाते ही चले आ रहे हैं।
2: जी,
3: लेकिन जो सामाजिक लोगों का उसमें जुड़ाव होता है।
2: जी,
3: तभी कोई भी आंदोलन हो या कोई भी कार्य तभी सफल होगा जब सामाजिक लोग उससे जुड़ेंगे और उसके लिए कार्य करेंगे। सरकार ने तो ठीक है एक दिन की प्लांटेशन ड्राइव हुई, हमने पेड़ लगा दिए, लेकिन उनका संरक्षण तो हमें ही करना है।
2: बिल्कुल।
3: पौधों को पानी भी देना है, उनकी जिम्मेदारी भी है, कहीं पौधा सूख ना जाए, कहीं कोई जानवर ना खा ले, तो उसको संरक्षित और संवर्धन तो हम ही लोग करेंगे ना।
2: बिल्कुल।
3: तो हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए।
2: जी बिल्कुल, देखा जाए तो प्रतिवर्ष लाखों पेड़ वन महोत्सव के दौरान लगाए जाते हैं, लेकिन कितने ही पेड़ उसमें जीवित रहते हैं, इसका कोई आंकड़ा अभी तक प्राप्त नहीं है।
3: हाँ, करोड़ों पौधे लगते हैं, अभी तक जो आंकड़े थे उसमें 20% या मुश्किल से 15% पौधे ही जीवित रहते हैं, बाकी सब पौधे जो है वो मर जाते थे क्योंकि उनकी प्रॉपर देखभाल नहीं होती। तो इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने प्लांटेशन का एक इतना अच्छा आंदोलन हमारे सामने रखा है, एक पेड़ माँ के नाम
2: जी।
3: तो उसमें आप ये नहीं कि 5 जून आ गया हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं तो हमें उसी दिन पौधा लगाना है, या अभी हमारा वन महोत्सव आएगा

0: से 7 जुलाई तक हमें उसी के मध्य में पौधे लगाने हैं। 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह मनाएंगे, तभी हमें पर्यावरण संरक्षण करना है? नहीं, उनका है कि आप अपनी माँ की याद में या जिसको भी आप माँ समान मानते हो उनकी याद में आप कहीं भी
1: एक पौधा
0: जरूर लगाइए और उस पौधे की देखभाल करिए।
1: देखभाल कीजिए। बहुत ही अच्छा संदेश हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारी जनता को प्राप्त हुआ है।
0: आपको एक और बताना चाहती हूँ कि पर्यावरण बचाओ की भावना के साथ राजस्थान के राजसमंद जिले में पिपलंत्री गांव में बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाने का जो उन लोगों ने नियम बनाया है वो वाकई में बहुत तारीफ के लायक है
1: जी।
0: क्योंकि 111 पौधे जब लगाएंगे तो ऐसे करते वहां पौधों की संख्या लाखों से ऊपर पहुंच गई।
1: आप पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं महिलाओं को बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि ग्रामीण परिवेश की महिलाएं तो पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे ही रही हैं
1: जी,
0: ठीक है, और वो बच्चों को भी ये सब बचपन से ही सिखाती हैं कैसे बीजों का संरक्षण करना है, कैसे पेड़ पौधों का संरक्षण करना है और कैसे पेड़ पौधों का संरक्षण करके हम जीव जंतुओं का संरक्षण कर सकते हैं। अपने जल का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर जी का आंदोलन है, वो भी एक महिलाएं हैं लेकिन उन्होंने इतने बड़े आंदोलन की सफलता तभी उनको मिल पाई जब उन्होंने महिलाओं को जोड़ा और अपने नदी को पुनर्जीवित किया। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें जल भी बचाना है, हमें पेड़ पौधे भी लगाने हैं, हमें ऊर्जा भी बचानी है और यही संदेश हमें अपने बच्चों को भी देना है ताकि वो पर्यावरण संरक्षण में बचपन से ही योगदान दें और इस धरती को हरा भरा बनाएं।
1: बहुत सुंदर संदेश आपके माध्यम से हमारी बहनों को मिला और हम यही आशा करते हैं कि आज के इस वार्तालाप से हमारी बहनें जरूर लाभान्वित हुई होंगी और निश्चित तौर पर अपने जीवन में पर्यावरण संरक्षण के विषय में अपना योगदान जरूर देंगी। अंजलि जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद भावना जी।
2: हमने सुनी अभी भेंट वार्ता जिसमें श्रीमती अंजलि वर्मा से बातचीत कर रही थी भावना अरोड़ा और बहनों विषय था पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका। और आइए बहनों अब लेते हैं कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे कुछ ही क्षणों में।
3: Hey girls, hi, congratulations. आज तो पार्टी चाहिए,
4: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
5: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
3: पिज़्ज़ा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
6: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन OTP CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर

0: आज तो पार्टी चाहिए,
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर।

0: महिला समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। उन्होंने केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं की बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए भी निरंतर संघर्ष किया। सुनीता नारायण भारत की प्रसिद्ध पर्यावरणविद, लेखिका और सामाजिक चिंतक हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन पर्यावरण संरक्षण, जल बचाव, स्वच्छ हवा और टिकाऊ विकास के लिए समर्पित किया है। वे उन महिलाओं में से हैं जिन्होंने ये साबित किया कि समाज की बड़ी समस्याओं को हल करने में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण के बारे में सुनीता जी कहती हैं,
1: आज 50 साल बाद एक चीज तो बदली, वो है कि हमारे यहाँ जो समझ, और हम आज जानते हैं कि पर्यावरण, हमारा परिवेश अगर नहीं होगा, अगर उसके अंदर हमने उसको बचा के नहीं रखा, तो हमारी जिंदगी ही तबाह हो जाएगी।
0: बात करें सुनीता जी के जीवन परिचय की, तो सुनीता जी का जन्म वर्ष 1961 में हुआ था। बचपन से ही उन्हें समाज और प्रकृति के मुद्दों में रुचि थी। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट में काम करना शुरू किया और बाद में वे इस संस्था की महानिदेशक बनी। इस संस्था का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, पानी और जंगलों की रक्षा करना और प्रदूषण कम करने के उपाय बताना है। उन्होंने भारत में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को लोकप्रिय बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। उनका मानना है कि भविष्य में सबसे बड़ा संकट जल संकट होगा।
1: भारत के लिए मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चुनौती होगी पानी का सवाल। जलवायु परिवर्तन के कारण आज हम जानते हैं कि हमारे मॉनसून के ऊपर काफी चेंजेस आ रहे हैं। वर्षा नहीं आती, उसके साथ बाढ़ आ जाती है। आप देख रही हैं कि असम में पहले ही बाढ़ है आज। तो पानी की जो चुनौती है कि पानी की किल्लत भी बढ़ेगी, दूसरी तरफ से बाढ़ की स्थिति होगी। इसके अंदर हमारी जो सारी समझ है कि हम पानी कैसे रोकें, हम पानी का किस तरह से ध्यान से इस्तेमाल करें, ये बहुत बड़ी हमारी ताकत है।
0: जल संकट से बचने के लिए उन्होंने गांवों में पारंपरिक तालाब, कुएं और वर्षा जल संचयन की तकनीकों को फिर से अपनाने पर जोर दिया। जैव विविधता हमारे पर्यावरण के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में सुनीता जी बताती हैं।
1: बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में आज भी हम लोग पेपर पे बहुत बात करते हैं और हमने संस्थाएं बहुत बड़ी बना दी हैं, मगर जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनकी क्या रोल होना चाहिए उसके अंदर, उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए उसके अंदर, वो हम नहीं कर पा रहे।
0: बड़े शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण के खिलाफ भी उन्होंने लगातार आवाज उठाई। उन्होंने स्वच्छ ईंधन और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की मांग की। उनकी कोशिशों से पर्यावरण से जुड़े कई मुद्दे राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बने। उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। वे दुनिया की प्रभावशाली पर्यावरण कार्यकर्ताओं में गिनी जाती है। आगामी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर लोगों के लिए उनका संदेश है,
1: हर दिन मनाते रहें विश्व पर्यावरण दिवस की तरह, क्योंकि ये दिवस एक दिन का नहीं है, ये दिवस हर दिन का है।
0: आज हर महिला अपने घर से ही पर्यावरण की रक्षा की शुरुआत कर सकती है, पानी बचाकर, पेड़ लगाकर और प्लास्टिक का उपयोग कम करके। तो आइए हम सब सुनीता नारायण जी से प्रेरणा लें और अपने सपनों के साथ साथ अपने पर्यावरण की भी रक्षा करें। अभी हमने सुना आधी आबादी में। बहनों, हम अक्सर सोचते हैं कि पर्यावरण बचाने के लिए बड़े बड़े कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन ये सच है कि इसकी शुरुआत हमारे घर से ही होती है। एक महिला यदि ठान ले तो पूरा परिवार और आने वाली पीढ़ियां पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सकती हैं। हम अपने दैनिक जीवन में कुछ छोटे छोटे बदलाव करके बड़ा योगदान दे सकते हैं, जैसे कि पानी और बिजली की बचत करना, प्लास्टिक की जगह कपड़े के थैले अपनाना, घर के आसपास हम पौधे लगा सकते हैं, बाजार जाते समय प्लास्टिक की जगह कपड़े या जूट का बैग भी हम साथ रख सकते हैं, गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखें और जैविक कचरे से खाद बनाने का प्रयास कर सकते हैं। जरूरत न होने पर पंखे और लाइट और अन्य उपकरण हमें बंद कर देने चाहिए। उन्हें मोबाइल के साथ साथ पेड़ पौधे, बागीचों और खुले मैदानों

महत्व भी हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। मैनो पर्यावरण की रक्षा केवल प्रकृति की रक्षा नहीं है, बल्कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने का संकल्प है। याद रखिए, जब एक महिला पर्यावरण के प्रति जागरूक होती है तो पूरा परिवार और समाज हरित भविष्य की ओर बढ़ता है। तो बहनों, आज के लिए बस इतना ही, और आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है हमें जरूर बताइए, और उसके लिए आप हमें मैसेज भेज सकती हैं। बहनों, मैसेज भेजने के लिए हमारा फोन नंबर है 9457078288। तो बहनों, हमें जरूर मैसेज करिए, आपके मैसेज का हमें इंतजार रहेगा। और आज के लिए बस इतना ही, अपने सखी मीनाक्षी अग्रवाल को कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। लोकधारा लोक संगीत के इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं सीताराम चौहान के गाए जौनसारी लोकगीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: लोकधारा कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं, इस समय आप आनंद ले रहे हैं सीताराम चौहान के गाए जौनसारी लोकगीतों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद NEC का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए. इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है. और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है.
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है. ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है. श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही. उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ संपन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की. भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है. गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है. इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है. ये अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था. गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.
2: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है. इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं. साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है. गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी.
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं. ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई. गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है. मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है.
3: ICU 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है. शॉर्ट सर्किट से कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है. बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए. तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जांच कर रहे हैं.
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची. मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए. श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी. मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई. दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं. वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया. वे 76 वर्ष के थे. 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की. उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है. जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया. अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो

0: कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
1: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
2: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 30,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

314 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। आप पेश है कार्यक्रम एक ही संगीतकार। नमस्कार श्रोताओं, एक ही संगीतकार क्रम में स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। आज के संगीत में सफर में आपके साथ मैं हूँ रेणु कोटनाला। श्रोताओं, भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपने संगीत से केवल फिल्मों को ही नहीं बल्कि पीढ़ियों को भी प्रभावित किया है। ऐसे ही महान संगीतकार थे बसंत देसाई। शास्त्रीय संगीत की गहरी समझ, भारतीय संस्कृति से जुड़ाव और भावनाओं को सुरों में ढालने की अद्भुत कला ने बसंत देसाई को संगीत जगत में एक विशिष्ट पहचान दिलाई। उनके संगीत सफर की कुछ यादगार यादों से आज कार्यक्रम में हम रूबरू होंगे, लेकिन आइए आगे बढ़ने से पहले आपको सुनवाते हैं वाणी जयराम के स्वर में फिल्म गुड्डी का गीत, गीतकार गुलजार और संगीतकार बसंत देसाई।

एक ही संगीतकार कार्यक्रम श्रोता इस समय सुन रहे हैं और हमारे आज के फनकार हैं संगीतकार वसंत देसाई। श्रोता, 9 जून 1912 को महाराष्ट्र के सोनबड़े गांव में जन्मे वसंत देसाई ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था। कठिन परिस्थितियों के बावजूद

श्रोताओं, वसंत देसाई ने अपनी धुनों से फिल्मों की भावनाओं को जीवंत बनाया। वर्ष 1957 की फिल्म दो आंखें बारह हाथ का गीत ए मालिक तेरे बंदे हम आज भी लोकप्रिय प्रार्थना के रूप में मनाया जाता है और उनकी संगीत प्रतिभा का बेहतरीन उदाहरण है। तो लीजिए, आप भी सुनिए ये गीत, आवाज लता मंगेशकर और साथियों की।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत और नृत्य पर आधारित फिल्म झनक झनक पायल बाजे के संगीत ने वसंत देसाई को नई पहचान दी। गीत नैन से नैन ना मिलाओ आज भी शास्त्रीय संगीत प्रेमियों की पसंद बना हुआ है, तो आइए आपको भी सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

एक ही संगीतकार क्रम में श्रोताओं, आज आप सुन रहे हैं संगीतकार वसंत देसाई के संगीतबद्ध किए हुए कुछ गीत। श्रोताओं, फिल्म गूंज उठी शहनाई वसंत देसाई के संगीत सफर का महत्वपूर्ण पड़ाव रही है। इसका गीत जीवन में पिया तेरा साथ रहे मधुर प्रेम गीतों में आज भी विशेष स्थान रखता है। तो लीजिए, आप भी सुनिए ये गीत फिल्म गूंज उठी शहनाई से, आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम, DTH पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही संगीतकार, और हमारे आज के फनकार हैं संगीतकार वसंत देसाई। श्रोताओं, वसंत देसाई की बहुमुखी प्रतिभा का एक और सुंदर उदाहरण फिल्म आशीर्वाद का गीत रेलगाड़ी रेलगाड़ी है। बच्चों के बीच लोकप्रिय ये गीत आज भी उतना ही प्रिय है। तो लीजिए, आप भी सुनिए आशीर्वाद फिल्म का गीत, आवाज़ अशोक कुमार की।
7: आओ बच्चों, खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे लाइन से, लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाएं, सुनो रे बच्चों, टिकट कटाओ तुम।

0: भप भप भप।
1: आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्ने तुम्हारा इंजन, डब्बू तुम्हारा कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर सब पैसेंजर। रेडी एक

रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक

मंगल की हार, गांव में मेला, भीड़ झमेला, टूटी दीवार, टट्टू सवार, रेलगाड़ी रेलगाड़ी, बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक, धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर, मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर, मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा, रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर, तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव, नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर, सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर, कुक्कल डिंडिगल डिंडिगल कुक्कल, पतलीपट्टनम दिल्लीपट्टनम दिल्लीपट्टनम पतलीपट्टनम, ओंगोल निर्दिगोल निर्दिगोल ओंगोल, कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव, अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद, सोतनूर कोतनूर सोतनूर कोतनूर, चुक चुक चुक चुक चुक चुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: अश्रोताओं, आइए सुनवाते हैं अब आपको कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म मस्ताना से आवाज मोहम्मद रफी और लक्ष्मी शंकर की है, शब्द रचना है भरत व्यास की और संगीत वसंत देसाई का।

तो श्रोताओं, ये था संगीतकार वसंत देसाई का संक्षिप्त संगीतमय सफर। उनकी अमर धुनें आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेंगी। अब आज के संगीत सफर को यही विराम देते हैं, फिर मुलाकात होगी संगीत जगत की किसी और महान शख्सियत के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। रेणु कोटनाला को नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही संगीतकार, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजे हैं। हमारी आज की यह सभा अब यहीं संपन्न होती है। अपनी संध्याकालीन सभा में संध्या 4 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: शुभ संध्या श्रोताओं, हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 4 बजने को है हमारी संध्याकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: जंगल, पहाड़, नदी और आकाश की भी हिफाजत में जुटे हैं। प्रोटेक्टिंग द नेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग नेचर, यानी देश की रक्षा प्रकृति की रक्षा। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ से कैंटोनमेंट बन रहे हैं जीरो वेस्ट जोन, सोलर पावर से चल रहे हैं कैंप और प्लांटेशन ड्राइव से हर सोल्जर बन रहा है एक इको वॉरियर। ये है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन्ड मिशन जिसके लिए हमारी सेना जानी जाती है। और इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को ये इनिशिएटिव और भी सशक्त और भी स्पेशल बन रहा है। भारत की धरती सलाम कर रही है अपने सपूतों को, अपने सैनिकों को। 102.6 देश के नंबर 1 रेडियो आपके अपने आकाशवाणी रेनबो पर आज का विशेष संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित है, जिसे बड़े दिल से बनाया है टीम रेनबो ने। और आज का ये स्पेशल एपिसोड आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ, और हमारे ओबी टीम मेंबर हैं वैभव श्रीवास्तव। और हमारी रेनबो टीम पहुंची हुई है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी कैंप दिल्ली में। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कमांडेंट गौरांग जैन के संदेश से।
1: तो आज मौजूद है आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में और हम बात करने वाले हैं यहाँ के कमांडेंट कर्नल गौरांग जैन से। सर, वेलकम टू द शो।
2: थैंक यू, और आपका यहाँ कैंप में आने के लिए और एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद।
1: सर, जब लोग आर्मी के बारे में सोचते हैं, हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की खासकर, तो हमारे जहन में आता है डिसिप्लिन, ड्रिल्स, मिलिट्री ऑपरेशंस, कोवर्ट ऑपरेशंस और ये सब चीजें। तो सर, बॉर्डर्स को सिक्योर करने से लेकर पर्यावरण को सिक्योर करने तक ये बदलाव की शुरुआत कैसे हुई, प्लीज हमें बताइए।
2: देखिए, जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये सिर्फ बॉर्डर की हिफाजत के बारे में नहीं है, इसमें हमारी मिट्टी, जल, वायु सभी इस सुरक्षा के उसमें आते हैं। ये पर्यावरण संरक्षक आज सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक ये हमारे आवश्यकता बन चुकी है, और ये सिर्फ हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। फौज का और पर्यावरण का हमेशा से एक अटूट रिश्ता रहा है। आप जानते हैं कि कैंटोनमेंट हमेशा से ही हरे भरे मिलेंगे आपको, और जो हमारे सैनिक हैं इनमें साफ सफाई रखना, पेड़ पौधे लगाना, ये उनके DNA में है। लेकिन आज सिर्फ साफ सफाई से या पेड़ पौधे लगाने से नहीं होगा, हमें एक पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनानी पड़ेगी और हमें कल्चरली अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमने मिशन ग्रीन के तहत हमारा डीकार्बनाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अपक्षत मुक्त सैन्य भारत अभियान, जैसे कि जीरो वेस्ट इकोसिस्टम्स को हम बोलते हैं, वो चलाया जा रहा है, और ताकि हम आने वाली पीढ़ी को इसको सुरक्षित कर सके।
1: सर, क्या जीरो वेस्ट मॉडल एक्चुअल में मुमकिन है, क्या इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से हमें बता सकते हैं प्लीज?
2: जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है, और इसके लिए बस हमें थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत होती है। जीरो वेस्ट मॉडल के लिए कुछ मापदंड होते हैं, जैसे कि कोई भी वेस्ट हमारा लैंडफिल में ना जाए, वेस्ट को सोर्स पे ही 100% हम सेग्रीगेट करें, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको 100% हम इन हाउस कंपोस्ट कर सकें, कोई भी वेस्ट हम ओपन बर्निंग में ना करें या इंसिनरेशन ना करा जाए इत्यादि। जैसे मैंने बताया कि अगर ये अपनाना है तो हमें सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, वेस्ट को वेस्ट ना समझे बल्कि उसको हम रिसोर्स समझे। जिस दिन हमने वेस्ट को रिसोर्स समझ लिया, हम उसको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि रिसोर्स को हम रखते हैं और वेस्ट को हम फेंकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी सामान आप देखेंगे कि उसको हमने रिसोर्स की तरह समझ के रखा है, तो या तो वो खुद ही हम यूज कर सकते हैं या कोई और, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो रिसाइकल होके कहीं ना कहीं किसी के इस्तेमाल में आ ही जाएगा।
1: सर, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स कैंप किस प्रकार से जीरो वेस्ट में तब्दील किया गया, क्या इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आप हमें समझा सकते हैं प्लीज?
2: जी बिल्कुल, आज जैसा आप जानते हैं पहले जितना भी वेस्ट होता था ये इकट्ठा होकर म्यूनिसिपैलिटी लैंडफिल्स में जाया जाता था, जो फिर कूड़े का पहाड़ बन गया। सो इसके लिए हमने जीरो वेस्ट के लिए सिस्टम तैयार किया। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार वेस्ट को सोर्स पे ही 4 तरीके से हम सेग्रीगेट करते हैं, जैसे ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, स्पेशल केयर वेस्ट और सैनिटरी वेस्ट। इसके अलावा हमने कोलैबोरेट किया है कई NGO से या संस्थाओं से, जो कि रिसाइकल हमें इन साइंटिफिक तरीके से इसको कर सके। इसके अलावा कई उपकरण भी लगाए गए हैं। तो सब करने से इसका नतीजा ये हो रहा है कि जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो अब 100% हम इन हाउस यानी कि कैंप में ही कंपोस्ट कर रहे हैं, या फिर उसको हम बायोगैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपका किचन का वेस्ट हो गया या हॉर्टिकल्चर वेस्ट। जो ड्राई वेस्ट है जैसे पेपर वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, उनको हम इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद इन संस्थाओं को देते हैं जो वहां पे इनको रिसाइकिल करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स में तब्दील करते हैं, और इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का करते हैं। इसके अलावा अवेयरनेस के लिए हमने कुछ रैक्स लगाए गए जिसको हम वॉल ऑफ काइंडनेस कहते हैं, ताकि जो सामान काम का है लेकिन शायद मेरे काम का नहीं है उसको रीयूज करने के लिए लोग अपना वहां पे उसको डोनेट करते हैं, जैसे किताब, बुक्स, शूज, बच्चों के खिलौने, बर्तन, वो डोनेट करते हैं, और जिसको जरूरत है वो उसको वहां से ले लेता है। सो इन

0: सब छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जो हमने चीजें शुरू करी हैं यहाँ पे, इससे पिछले कुछ ही महीने में सिर्फ कैंप ने करीब 50 टन से भी ज्यादा वेस्ट को रिसाइकिल कर दिया गया है और लैंडफिल जाने से बचाया गया है। और इसी तरीके से बाकी कई यूनिट और हमारे स्टेशन अब जीरो वेस्ट में इस तरीके से तब्दील हो रहे हैं।
1: कहना होगा कि इनिशिएटिव्स वाकई कमाल के हैं और आई होप कि आर्मी से इंस्पिरेशन लेके बाकी लोग भी इनिशिएटिव्स करें। सर, क्या ये अभियान कैंप को साफ रखने और कचरे को लैंडफिल में जाने से रोकने के लिए है या इसको और आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या सोचा है या क्या कदम उठाए हैं?
0: देखिए, साफ सफाई रखना और लैंडफिल में कचरा ना जाने के लिए ये एक छोटा सा पार्ट है ओवरऑल जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो, क्योंकि इसमें और भी कई चीज शामिल हो जाती है जैसे कि हमारे नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना। आपको पता है नेचुरल रिसोर्स एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, चाहे हम पानी की बात करें चाहे हम फ्यूल की बात करें, तो उनको कंजर्व करना। इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन करना, वृक्ष लगाना, ये भी सारा हमारे पूरे पर्यावरण की तरफ आता है और इन सब चीजों पर भी हम काफी काम कर रहे हैं। अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन पे आऊं, सबसे पहले फ्यूल कंजर्वेशन, तो उसमें ईवाइजेशन यानी कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैंप में ही आज की डेट में 25 से ज्यादा व्हीकल हमारी इलेक्ट्रिक हो रखी हैं जिसमें हमारे सैनिक यहाँ पे ऑफिस में जा रहे हैं। सोलराइजेशन का काफी काम चल रहा है जिससे कि बिजली की खपत कम हो रही है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो हमारा थल सेना

0: प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, सेंसर लाइट्स लगाई जा रही हैं, और वाटर कंजर्व करने के लिए वहां पे इंटीग्रेटेड एसटीपी प्लांट, अनेकों वाटर रिसाइकलिंग पिट्स लगा रहे हैं, और यही पानी इस्तेमाल किया जाएगा वहां के एबोरिकल्चर को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा वहां पे मेगा कंपोस्ट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं जो कि करीब 1500 केजी तक का कंपोस्ट एक दिन में वहां पे कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षक की, तो वो सिर्फ एक पहलू वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच आती है जो कि एज एन आर्मी और एज अ कैंप हम इसको अपना रहे हैं।
1: आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, होलिस्टिक अप्रोच। मैं पूछूंगा कि इन सभी इनिशिएटिव्स का अल्टीमेट गोल क्या है आपके हिसाब से?
0: देखिए, अल्टीमेट गोल तो यही है कि हम पर्यावरण को किस तरीके से सुरक्षित कर सके, लेकिन साथ में कैसे हम एक डीप रूटेड कल्चरल चेंज यानी कि सांस्कृतिक बदलाव ला सके। हमारे जो जवान हैं, हमारे सैनिक हैं, ये देश के हर प्रांत से आते हैं और यहाँ से उसके बाद वो देश के हर जगह यानी कि बॉर्डर एरिया से लेकर बड़े शहर तक तैनात होते हैं। अगर हम यहाँ पे एक ग्रीन सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं तो ये हमारे एक ग्रीन एम्बेसडर्स का काम करेंगे। यहाँ पे एक जीरो वेस्ट इकोसिस्टम में है, डेली उठ के ये अपने वेस्ट को सोर्स पे ही सेग्रीगेट कर रहे हैं, प्लांटेशन ड्राइव में हिस्सा ले रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम के जैसे अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। तो जब ये वो यहाँ पे इस चीज को हिस्सा ले रहे हैं तो ये अब एक इनकी जीवन शैली और एक इनकी आदत बन चुकी है। जब यहाँ से ये पोस्टिंग जाएंगे कहीं पे भी तो ये अपना माइंडसेट लेके जाएंगे और वहां पे ये सोसाइटी में इस चीज को रेप्लिकेट करेंगे और एक कल्चरल चेंज डेवलप करेंगे।
1: सर, पूछना चाहूंगा कि वाकई एक अद्भुत विजन है और हमें पूरी उम्मीद है कि पर्यावरण संरक्षण में इसमें काफी मदद मिलेगी। एंड आई होप कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये रंग लाएं और जैसा आपने कहा कि एक माइंडसेट चेंज हो, ना सिर्फ फौजियों का, सोल्जर्स का, बल्कि पूरे देश का इसके थ्रू।
0: जी, यही हमारा इसके ऊपर कोशिश है, चाहे वो आर्मी हेडक्वार्टर कैंप है और या फिर पूरे इंडियन आर्मी इसके ऊपर लगी हुई है, और मुझे यकीन है कि हमें इसमें और आगे बढ़ावा मिलेगा और सोसाइटी में चेंज आएगा। और मैं चाहूंगा कि आप जो हमने यहाँ पे ये चेंजेस ला रहे हैं, जो जीरो वेस्ट कैंप है, जैसे कि इंडियन आर्मी का ये पहला जीरो वेस्ट यूनिट है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको जाके देखें और ग्राउंड पे, और हमारे मेजर अजीत मोरे हैं जो इसके प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, तो ये आपको एक बार ग्राउंड पे पूरा इसको दिखाएंगे।
1: साहब, हमसे बात करने के लिए, ग्रीन इनिशिएटिव्स के बारे में बताने के लिए और हमेशा की तरह एक सोल्जर होने के नाते हमें प्रेरणा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू होस्ट यू।
2: जय हिंद। तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: देश की मिट्टी को देश के सैनिकों का सलाम है दिल से। इस गीत के बाद अब हम आज के हमारे संदेश टू सोल्जर के स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स आर्मी कैंप के प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे से।
1: हम मौजूद हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स एमओडी आर्मी कैंप के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जोन में और हमारे साथ फिलहाल हैं प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे। सर, स्वागत है शो में। हमें इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बताइए कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं।
2: धन्यवाद, मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। तो मैं बहुत ही गर्व के साथ आपको कहना चाहूंगा, ये हमारे पूरे भारतीय सेना का पहला जीरो वेस्ट कैंप है। भारतीय सेना की हर एक यूनिट, हर एक इकाई जहाँ भी मौजूद है वो इसी तरीके से इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रही है। जब गवर्नमेंट के गाइडलाइंस मिले थे तो उसी के अनुसार हम यहाँ पे वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट, इसको हम यहाँ पे सेग्रीगेट करते हैं। मतलब मुद्दा यह है कि वेस्ट को उसके सोर्स पे ही 100% रिसाइकल किया जाए। साथ ही साथ में जब ऑर्गेनिक वेस्ट या वेट वेस्ट की हम बात करते हैं तो इसमें हम एरोबिक्स लगाए हैं, जिसको एरोबिक से हम खाद बनाते हैं और साथ में बायोगैस लगाया गया है। बायोगैस कंपोस्टिंग सिस्टम से हम इसको कुकिंग हाउस में इस्तेमाल करते हैं। ड्राई वेस्ट में प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, ई वेस्ट और टेक्सटाइल वेस्ट लगाया गया है, तो इसके द्वारा भी हम इसको रिसाइकल्स को आगे देते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, वेस्ट इज नॉट अ वेस्ट, इट इंडिफिनिट रिसोर्सेस। इसको मैं एग्जांपल के तरीके से आपको समझाना चाहूंगा। समझ लो मैंने किसी भी दुकान से आज चिप्स का पैकेट खरीद लिया, चिप्स मैंने खा लिया, रैपर फेंक दिया, तो रैपर मेरे लिए तो वेस्ट है। साथ ही साथ में मैंने केला खरीद लिया, केला खा लिया और उसका छिलका फेंक दिया, दोनों चीजें मेरे लिए वेस्ट है। अगर मेरे जैसे किसी समझदार इंसान ने उसको दोनों को इकट्ठा करके फेंक दिया, वो प्लास्टिक कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा, वो धरती की हानि पहुंचाएगा। वो केला भी मैंने कहीं और फेंक दिया, कोई उस पे फिसलेगा, गिरेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई समझदार इंसान है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, प्लास्टिक को मैंने प्लास्टिक वेस्ट में डाल दिया और उसको रिसाइकल कर दिया और उसको ब्यूटीफुल इक्विपमेंट्स में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वही केले के छिलकों को हमने खाद के एरोबिक्स में डाल दिया और उससे हमने खाद बनाई जो नेचर को आगे प्रोटेक्ट करती है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, वेस्ट इज द ओनली वेस्ट इफ यू वेस्ट इट।
1: थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए।
2: धन्यवाद।
0: हमने सुना कैसे पूरी डिटेल में मेजर अजीत मोरे ने ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ के बारे में बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके जानते हैं पूरे मिशन के बारे में। तो सबसे पहले बात एरोबिन कंपोस्टिंग की, जिसके बारे में बता

0: जो कि 2 से 3 दिन सूखने के बाद इसको हम एक अच्छी क्वालिटी में खाद दर्शाई गई है। पूरी तरह से खाद तैयार होने के बाद इस तरह से खाद निकलती है, इसको आप पैकिंग भी कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से पर्यावरण फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें ना ही बिजली और ना ही किसी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। कैंप में अब तक सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर इससे हमने 750 kg खाद को तैयार किया है।
1: हवलदार राजकुमार जी, इसकी कैपेसिटी कितनी है और कितने दिन में खाद बन जाती है?
0: इसकी कैपेसिटी 400 kg की होती है। इसे हर दिन 20 से 25 kg वेस्ट डाला जाता है, जो कि 20 से 25 दिन के अंदर कंपोस्ट यानी कि खाद तैयार हो जाती है।
1: साहब, एक और बात बताएं हमें, ये जो एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम है, इसको इस्तेमाल में लाने के लिए और क्या मिलाया जाता है?
0: इसको ड्राई रखने के लिए इसके अंदर सूखी पत्ती डाली जाती है। इसके अंदर किसी भी केमिकल की जरूरत नहीं है, ये बायोलॉजिकल काम करता है।
1: सर, आपने हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में इतनी जानकारी दी, हमें बताया कि किस तरीके से खाद बनती है और बिना केमिकल्स को यूज किए बनती है। ये ग्रीन इनिशिएटिव है, मेड इन इंडिया इनिशिएटिव है। साथ ही साथ आप देखिए कि अगर इस तरीके के सिस्टम्स पूरे देश में इंस्टॉल किए जाएं, आर्मी से सीख ली जाए किस तरीके से हम वेट वेस्ट को, जैसा कि हमें प्रोजेक्ट ऑफिसर ने बताया था कि हम किस तरीके से वेस्ट को वेस्ट ना रखकर उसको एक एसेट में तब्दील कर सकते हैं, इसे कहते हैं वाकई वेस्ट से एक एसेट बनाना। थैंक यू सो मच।
2: अभी हमने जाना एरोबिन कंपोस्टिंग के बारे में। श्रोताओं, हम आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे हम कि कैसे बायोगैस प्लांट लगा करके हमारी आर्मी कैंप में किचन मेंटेन किया जा रहा है, और इस बारे में डिटेल में बता रहे हैं हमें हवलदार राजकुमार।
1: भारत में नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो दशकों और न जाने कितने वर्षों से होता आया है, लेकिन जिस तरीके से आर्मी इसे इस्तेमाल करती है और जिस तरीके से इसके नए प्रोसेसेस को सबके सामने रखा जाता है, ये वाकई अद्भुत है, अद्वितीय है। अभी फिलहाल हम आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की एक और बात करते हैं, जहां पर हम फिलहाल बायोगैस मशीन और बायोमेथनाइजेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। इसके बारे में हमें और बताएंगे हवलदार राजकुमार जी। सर प्लीज।
0: एलपीजी की खपत को कम करने के लिए हमने कुक हाउस में बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल कर रखा है। इसके अंदर हम मेस में बचा हुआ खाना जैसे कि पानी गर्म, दूध उबालना, अंडे उबालना इत्यादि कामों में इस्तेमाल करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, बायोगैस को अपनाना बल्कि आत्मनिर्भरता बनना ही नहीं बल्कि अपनी धरती को हरा भरा रखने में भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए वेस्टेज को फेंके ना, उससे ऊर्जा बनाए।
1: तो बायोगैस इनिशिएटिव एक और ग्रीन इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से कचरा यानी वेस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस तरीके के इनिशिएटिव से आप क्या कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं या हमारा देश क्या कर सकता है, वो ये है कि हम इस तरीके के इनिशिएटिव से वेस्ट को कम करके उन सभी एसेट्स को अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सभी रिसोर्सेस की बाहरी खपत को कम करके अपने ही आसपास की चीजों को इस्तेमाल करके रिसोर्सफुल बनकर हम वो सभी एसेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो रिसोर्सेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। हवलदार राजकुमार जी, हमें प्लीज बताइए कि इसमें एक दिन में कितना वेट वेस्ट डाला जाता है और इससे कितनी गैस उत्पन्न होती है?
0: जी हाँ, ये प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे पास जो प्लांट लगे हुए हैं, इसमें एक दिन में 20 से 22 केजी वेस्ट डाला जाता है, जो कि 3 से 4 kg गैस को प्रोड्यूस करके इसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं।
1: इसको इस्तेमाल करने से कितने एलपीजी की बचत होती है, कितने सिलेंडर्स की बचत होती है, अगर आप हमें बता पाएं?
0: ये भी प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे कुक हाउस में जो प्लांट लगे हैं, इसमें हर एक प्लांट से एक महीने में 4 से 5 एलपीजी सिलेंडर की बचत होती है।
1: और सर, इसको कितनी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, इसमें क्या क्या चीजें लगती हैं, अगर आप हमें बताएं?
0: जी, सबसे इसकी खासियत यही है कि प्लांट को मेंटेनेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास प्लांट लगा हुआ है तकरीबन 6 महीने से लगा हुआ, अभी तक इसकी कोई भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ी।
1: बायोगैस प्लांट है इंडियन आर्मी का एक और ग्रीन इनिशिएटिव, जिसमें हम वेस्ट से बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। एलपीजी सिलेंडर्स, 4 से 5 सिलेंडर्स की खपत जितनी होती है, उतना हमें प्रोड्यूस यहां से इस मशीन से मिलता है।
2: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: देश पर जान निछावर करने वाले हमारे जवान सरहद और देश के भीतर ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं यूज्ड कुकिंग ऑयल को कैसे फिर से इस्तेमाल में लाया जा रहा है और इस बारे में जानकारी दे रहे हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार।
1: यूज्ड कुकिंग ऑयल के बारे में हम सब जानते हैं, इस ऑयल को अगर बार बार इस्तेमाल किया जाए तो ये सीरियस इंजरी सीरियस हार्म दे सकता है ह्यूमन बॉडी को। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है किस तरीके से यूज्ड कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल किया जाए, घर घर से इकट्ठा किया जाए। इसके लिए हमारे साथ हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार जी। सर हमें प्लीज इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में प्लीज बताइए।
2: सर जैसे कि FSA की गाइडलाइन के अनुसार जो भी हमारा कुकिंग ऑयल है उसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे काफी सेहत के ऊपर भी असर डालता है, इसे कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसी को देखते हुए हमने इसको अलग करके जो भी हमारा कुकिंग ऑयल जो था इसको यूज्ड है उसको हम अलग करके किसी रिकॉग्नाइज संस्था को देते हैं ताकि उसकी रिसाइकल करके उसका बायोडीजल या सोप बनाया जा सके। इसको कलेक्शन करने के लिए हमने अलग अलग इसके लिए ड्रम्स जो कैंस रखे हुए हैं ताकि उसको सही तरीके से उसको डिस्पोज कर सके और इसको हम आगे डिस्पोज ऑफ कर सके। सर
1: थैंक यू सर हमें यूज कुकिंग ऑयल के बारे में बताने के लिए धन्यवाद।
0: अभी तक हम जान रहे थे वेट वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि कैसे गीला कचरा रिसाइकल किया जा रहा है या अगर यूं कहें कि ये कचरा अपसाइकल किया जा रहा है। अब बहुत अहम और हमारी जिंदगी पर असर डालने वाला प्लास्टिक वेस्ट, इसे कैसे अपसाइकल करके फिर से यूजेबल बनाया जा सके जबकि प्लास्टिक के बारे में आम धारणा है कि ये कभी खत्म नहीं होता, इसकी जानकारी दे रहे हैं हवलदार अब्बास।
1: इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव को हम आगे ले जा रहे हैं। फिलहाल हमने वेट वेस्ट की बात की, हमने यूज कुकिंग ऑयल की बात की, अब हम बात करेंगे प्लास्टिक वेस्ट की, अब हम बात करेंगे ड्राई वेस्ट की। हमारे साथ हैं हवलदार अब्बास जी। सर हमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में प्लीज बताइए कैसे ये कचरा इकट्ठा किया जाता है, किस किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, कैसे आप इसको यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद क्या होता है प्लीज।
3: सभी को मेरा जय हिंद। प्लास्टिक आज के गंभीर विषय बन चुका है, हमारी कोशिश यही है कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। फिर भी जो प्लास्टिक जनरेट होकर हमारे पास आता है उसको सही से डिस्पोज कैसे करें, इसके लिए हमारे कैंप की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसके दौरान हमारे ब्लॉक्स लिविंग एरियाज कैंटीन एरियाज में हमने प्लास्टिक कलेक्शन पॉइंट्स को इंस्टॉल किया गया है, वहां से ये प्लास्टिक सेग्रीगेट होके हमारे इस मेन कलेक्शन पॉइंट पे लाया जाता है। इसमें प्लास्टिक के बोटल्स, पैकिंग मटेरियल, दूध की पन्नियां, नमकीन पैकेट्स, यहां से ये सारा मटेरियल वेस्टेज मटेरियल मान्यता प्राप्त एजेंसीज में भेजा जाता है रिसाइकलिंग के लिए। इससे वहां पे फर्नीचर बनाया जाता है जैसे टेबल चेयर बेंच कबर्ड, इसमें डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और इनका इस्तेमाल हम पब्लिक प्लेस पे किया जाता है ताकि लोगों को मोटिवेशन और अवेयरनेस मिले। जैकेट ग्लेशियर्स में डिप्लॉय हमारे सोल्जर्स द्वारा इकट्ठे किए गए हुए प्लास्टिक मटेरियल के वेस्टेज से बनाई गई है जो दर्शाती है कि आर्मी ना खाली रेगिस्तानों में बल्कि ग्लेशियर्स में पर्यावरण को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है।
1: हवलदार अब्बास जी मुझे ये भी बताइए कि रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर नॉर्मल फर्नीचर के मुकाबले कैसा होता है, अगर एक नॉर्मल फर्नीचर की बात की जाए और ये जो रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर है इसकी बात की जाए दोनों का कंपैरिजन कैसा है, कितना मजबूत है, हम सभी लिसनर्स को बताइए।
3: ये नॉर्मल फर्नीचर से बहुत ज्यादा अच्छा है, ये मजबूत है, धूप बारिश इस पे कोई असर नहीं पड़ता है और ये देखने में भी अट्रैक्टिव है और साथ में कंफर्टेबल भी है।
1: क्या ये रिसाइकल प्रोडक्ट्स आम लोग भी खरीद सकते हैं, इसके बारे में अगर आप बता पाए।
3: जी हाँ बिल्कुल, ये आप खरीद भी सकते हो और प्लास्टिक के बदले इसको ले भी सकते हो।
1: बस हर आइटम पर कुछ प्लास्टिक नंबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है अगर आप हमें बता पाए।
3: जी ये जो मार्क 80 kg का लिखा है ये दर्शाता है कि 80 kg प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से इस बेंच को बनाया गया है। ये चीज भी दर्शाती है कि 80 kg वेस्ट को फैलने से रोका गया है।
1: Absolutely, 80 kg वेस्ट, आप सोचिए 80 kg वेस्ट कितना ज्यादा होता है, उस वेस्ट को इकट्ठा करना, उसको रिसाइकल करना, उसको प्रोसेस करना और उसके बाद ये मजबूत फर्नीचर, ये मजबूत बेंच, ये सब चीजें बनाना, कितनी अहम चीज है ये, कितना मजबूत इनिशिएटिव है, कितना फ्यूचर ओरिएंटेड है और कितना ज्यादा सस्टेनेबल है। सर पब्लिक वेस्ट या प्लास्टिक वेस्ट की अगर बात की जाए किस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, कितनी चीजें हैं
3: इसमें, डिफरेंट तकरीबन 28 आइटम्स बनाए जाते हैं जिसमें टेबल कबर्ड तो बहुत सारी चीजें बनाई जाती है।
1: हमें प्लास्टिक वेस्ट के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
3: थैंक यू सो मच सर।

0: तो इसी तरह कंधों से कंधे मिलाकर हम अपनी धरती को स्वच्छ और बेहतर बना सकते हैं और प्लास्टिक जैसे खतरनाक वेस्ट को भी अपसाइकल कर रहे हैं। अब बात करते हैं पेपर वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में और इस बारे में बता रहे हैं हमें नायब सूबेदार कुलदीप राज।
1: ड्राई वेस्ट में ही हमने पहले प्लास्टिक वेस्ट की बात की, अब हम बात करेंगे पेपर वेस्ट की। किस तरीके से पेपर्स को इकट्ठा किया जाता है, कैसे वेस्ट पेपर्स को यहाँ पर लाया जाता है और उसके बाद उसको श्रेड किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस के बारे में हमें बताएंगे कुलदीप राज जी। सर प्लीज हमें इस पूरे प्रोसेस के बारे में समझाएं।
2: जय हिंद। पेपर का इस्तेमाल पूरे कैंप में कम से कम किया जाता है, जिससे पेपर और समय दोनों की बचत होती है और एनवायरमेंट में भी फायदा मिलता है, जिससे पेपर का इस्तेमाल कम होता है और पेड़ पौधे कटने से बचते हैं। जो भी पेपर वेस्ट होता है, जैसे कि शटल पेपर, गत्ता, किताबें, रजिस्टर इत्यादि, प्लास्टिक वेस्ट की तरह मान्यता प्राप्त एजेंसी को दिया जाता है और जिससे पेपर, किताबें, डायरी इत्यादि बनाए जाते हैं, जिसे इस्तेमाल में लाया जाता है। रीयूज करने से रिसोर्सेज की कमी और सर्कुलर इकोनॉमी में बढ़ावा मिलता है।
1: तो किस तरीके से डिजिटल इंडिया का एक्चुअल एग्जीक्यूशन यहां पर चल रहा है, तो जैसा कि आपने देखा इंडियन आर्मी की ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक और है प्लास्टिक वेस्ट और वेट वेस्ट के अलावा पेपर वेस्ट को किस तरीके से रिसाइकल और अपसाइकल किया जाता है, कैसे मान्यता प्राप्त एजेंसीज तक ये सारे पेपर्स पहुंचते हैं। डिजिटल इंडिया की प्रॉपर एग्जीक्यूशन तो आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में की जा रही है। डिजिटलाइजेशन के बाद पेपर वेस्टेज या पेपर यूसेज कहें बहुत कम हो चुका है, डिजिटल चीजों का, डिजिटल माध्यम का उपयोग ज्यादा होता है, लेकिन जितने भी पेपर्स इस्तेमाल होते हैं जो जरूरी होते हैं उनको भी रिसाइकल किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
0: एक और वेस्ट जो हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है और वो है ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिससे हमारे मोबाइल, टैबलेट्स, चार्जर्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और भी कितने ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें शामिल हैं। और ये ई वेस्ट भी हमारी धरती के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। और इस ई वेस्ट को कैसे अपसाइकल किया जा रहा है बता रहे हैं हवलदार अशफाक अहमद।
1: ड्राई वेस्ट की ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करते करते अब हम आ चुके हैं एक स्पेशल कैटेगरी वेस्ट की तरफ, जो की है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ई वेस्ट। बेहद जरूरी चीज जो हम सभी के घरों में मिलती है, छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े, वायर्स, प्लग्स, आप सभी ने देखा होगा, क्या वो सब चीजें ई वेस्ट का हिस्सा है? आइए जानते हैं हवलदार अशफाक अहमद जी से। सर स्वागत है शो में। जितनी भी चीजें हमारे घरों में मिलती हैं, क्या वो सब ई वेस्ट में आती हैं?
3: जय हिंद। हाँ बिल्कुल, वो सारी ई वेस्ट में आती हैं। ई वेस्ट एक अत्यंत गंभीर समस्या बन चुकी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ई वेस्ट की समस्या भी बढ़ती जा रही है। इसके लिए कैंटोनमेंट, RWS और ऑफिस एरियाज में ई वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स को एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि स्पेशल केयर वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें न सिर्फ ऑफिस एरिया के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बल्कि जवान अपने घरों से भी

0: बैटरी, चार्जर, बल्ब जैसे इत्यादि लाके इसमें डाल सकते हैं। जो आप ई वेस्ट बॉक्स है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं, ये जवानों ने अपने घरों से लाके इसमें डाला हुआ है। इस ई वेस्ट को मान्यता प्राप्त एजेंसीज के सेग्रीगेशन प्लांट्स में भेजा जाता है, जहां पर उन्हें साइंटिफिक तरीके से रिसाइकल करके उनमें से सिल्वर, कॉपर, अल्मीनियम जैसे एलिमेंट को निकाल के दोबारा से उपयोग में लाए।
1: बिल्कुल, मतलब ग्रीन मेटल्स को हार्वेस्ट किया जाता है। इस सभी ई वेस्ट का उपयोग करके हम इन ग्रीन मेटल्स को निकालते हैं, इनको बनाते हैं और उसके बाद इसका दोबारा से इस्तेमाल होता है। ग्रेट इनिशिएटिव, एक्सलेंट इनिशिएटिव। सोचिए कितना ज्यादा कचरा हम घरों से, बाकी जितनी भी चीजें हैं वहां से इकट्ठा करके यहां पर लाते हैं और उसके बाद इससे कुछ और उपयोगी, कुछ यूजफुल बनाते हैं। एक्सलेंट इनिशिएटिव आई वुड से।

0: ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए हमारी इंडियन आर्मी कन्वेंशनल फ्यूल को नहीं बल्कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रही है। इसके बारे में बता रहे हैं हवलदार आशीष जी।
1: जय हिंद, मैं हवलदार आशीष। एनर्जी कंजर्वेशन वेस्ट मैनेजमेंट की तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ग्रीन इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने के लिए और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और सोलराइजेशन यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय सेना में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ऑलरेडी इनमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हमारे पास आर्मी हेडक्वार्टर कैंप में 25 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का एक फ्लीट है जिनका इस्तेमाल डिपार्टमेंटल ट्रांसपोर्ट और इंटरनल मोमेंट्स के लिए किया जा रहा है। एक इलेक्ट्रिक कार्स का एक फ्लीट है, साथ ही हाइड्रोजन बस और इलेक्ट्रिक बसेस का एक फ्लीट नजर आ रहा होगा, साथ एक इलेक्ट्रिक रिक्शा रखा हुआ है। इनके चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं जहां पे इन व्हीकल्स को चार्ज किया जाता है। एक व्हीकल को फुल्ली चार्ज होने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है और एक फुल्ली चार्ज्ड व्हीकल तकरीबन 300 किलोमीटर की एवरेज देता है। ऐसा करने से हम मंथली तकरीबन 4000 लीटर और ईयरली 48000 लीटर तक तेल की बचत कर रहे हैं। इन इनिशिएटिव्स को और इन व्हीकल्स को यूज करके हम न सिर्फ अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचा रहे हैं बल्कि अपने एनवायरनमेंट को भी साफ सुथरा रख रहे हैं।
0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के हमारे ग्रीन इनिशिएटिव मिशन लाइफ स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और अब बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में जानते हैं जो इमोशनली भी बहुत रिलेवेंट है और वो है वॉल ऑफ काइंडनेस। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें पुराने कपड़े, किताबें और यूनिफॉर्म शामिल हैं। हमारे फौजी भी अपनी यूनिफॉर्म के साथ भी इमोशनली अटैच्ड होते ही हैं। तो कैसे डिग्निफाइड वे में इन्हें डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, बता रहे हैं हवलदार विनोद कुमार और राइफलमैन दिनेश कुमार।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, आर्मी और ह्यूमैनिटी, ये दोनों शब्द हम सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन आर्मी के ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स इतने हैं जिन्हें गिनवाया जाए तो शायद ये दिन ये रात सब कम पड़ जाए। हम ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करने आए थे लेकिन यहाँ पर इनिशिएटिव्स के साथ साथ जो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है उसी के साथ साथ एक ऐसा इनिशिएटिव भी है जो काइंडनेस को और ज्यादा दर्शाता है। कैबिनेट है ये 155 किलो प्लास्टिक को इस्तेमाल करके बना है। सोचिए 155 किलो प्लास्टिक अब सड़कों में या कचरे के डिब्बों के आसपास नहीं बिखरा हुआ है, उसको इस्तेमाल करके ये शेल्फ बनाया गया है। ये अपने आप में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है जिसके बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं और इसके साथ साथ ही दिस इज एक्चुअली अ वॉल ऑफ काइंडनेस व्हिच मींस डोनेट व्हाट यू कैन टेक व्हाट यू नीड, मतलब अपनी मर्जी से आप डोनेट कर सकते हैं और जो भी जरूरत है वो आप यहां से ले जा सकते हैं। अमेजिंग इनिशिएटिव, ऐसा एक काम जो इंडियन आर्मी ही सोच सकती थी, इंडियन आर्मी ही कर सकती थी। आइए इस वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में हम और कुछ जानते हैं। हमारे साथ हैं हवलदार विनोद कुमार जी। सर, स्वागत है शो में, प्लीज हमें वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में कुछ बताइए।
3: जय हिंद, आज मैं आपको वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में परिचित करवाऊंगा। वॉल ऑफ काइंडनेस यानी नेकी की दीवार, ये एक सोशल सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट है जो कि रीयूज के कंसेप्ट को प्रमोट करता है। हमारे यहाँ काफी सारे लोग आते हैं जो कि अपने साथ घर में पड़ा एक्स्ट्रा सामान, जो कपड़े, जूते, किताबें, जहाँ यूनिफॉर्म, वो सब इधर डोनेट करते हैं। बुक्स की शेल्फ है और यूनिफॉर्म की, कपड़ों की, जिस अलमीरा में ये डोनेट करके जाते हैं और जहाँ से जरूरतमंद लोग जहाँ से उठा के बिना किसी हिचकिचाहट के ले जाते हैं। और बेसिकली हमारा उद्देश्य है कि चैरिटी नहीं बल्कि डिग्निटी के साथ जहाँ से सामान ले जा सके। बाकी अभी तक डेटा के अनुसार 10 टन से 12 टन तक कपड़े जहाँ से डोनेट हुए थे और काफी सारा सामान जरूरतमंद लोगों को दिया जा चुका है।
2: सो वॉल ऑफ काइंडनेस के साथ साथ एक और शेल्फ है जिसमें ट्राई सर्विसेज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की यूनिफॉर्म्स हैं, क्या इसके बारे में और बता सकते हैं?
3: देखिए, अभी आपने सारे रैक्स देख लिए, अभी ये लास्ट में मैं बताता हूँ यूनिफॉर्म रैक्स। इसमें हम तीनों सेनाओं के यूनिफॉर्म रखते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। देखिए, फौजी आदमी के लिए सबसे बड़ा प्राइड होता है उसकी यूनिफॉर्म, ये हमारे इमोशन को टच करती है और दूसरा ये हमारा प्राइड है। हम चाहते हैं इसका सही तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए, इसलिए हम इसे रिस्पेक्टफुल तरीके से इनको जहां रखते हैं तीनों सेना की यूनिफॉर्म को।
0: बता रहे हैं राइफलमैन दिनेश कुमार।
3: वॉल ऑफ काइंडनेस में अभी तक कपड़े, यूनिफॉर्म, इसके अलावा जहां पर बुक्स भी हैं। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम खत्म हुए थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक जिन लोगों ने अपने एग्जाम खत्म किए उनके बुक्स जहां पर काफी डोनेट की गई हैं और ये सभी डोनेट सामान जरूरतमंद लोगों के काम आएगा। और इसके अलावा अब जहां और भी बहुत सारी बुक्स हैं जैसे जेई, नीट, सीरियस और SSB, सभी तरह की बुकें आपको देखने को जहां मिल जाएंगी। और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि कि हमारे यहाँ पर जितने भी फोर्सेस हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो अफसर जवान वो अपने बच्चों के खिलौने किताबें ये सब जहाँ पर डोनेट करते हैं।
0: हमारे फौजी भाई कई बार डिफिकल्ट टेरेन्स में पोस्टेड होते हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी इजिली अवेलेबल नहीं होती है। ऐसे में हमारी आर्मी ने सोलर एनर्जी का प्रयोग कर डेवलप किए हैं सोलर हट्स और सोलर सिक्योरिटी चेक पोस्ट जिसमें सोलर पावर से चलने वाले कई तरह के डिवाइसेस प्रयोग में लाए जाते हैं। आइए जानते हैं आर्मी के इस इनिशिएटिव के बारे में।
4: जब हम सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो सबको पता है सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हम नेचुरल सनलाइट को इस्तेमाल करके सोलर हट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जिसको हमने बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस में लगाया जिससे आने वाले कम्प्यूटर्स इसका बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पूरा सोलर पावर्ड है जिसमें चार फैंस की सुविधा दी गई है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, वायरलेस चार्जिंग पॉइंट और साथ ही साथ में अगर हम चाहे तो रिकॉर्डिंग सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की भी इसमें क्षमता है। सोलर हट तो आपने देख लिया, अभी आपके सामने दर्शाई गई है सोलर संतरी पोस्ट। जैसे कि हम सभी जानते हैं आर्मी देश के विभिन्न विभिन्न भागों में डिप्लॉयड है, जैसे जब भी आर्मी रिमोट एरिया में डिप्लॉयज होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होती है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए हमने इस इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी चेक पोस्ट को बनाया गया है। जैसे इसके अंदर एक फैन की सुविधा दी गई है जो गर्म और ठंडी हवा भी देता है, साथ ही साथ में इसमें मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और एक इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट की भी सुविधा दी गई है। ये एक मोबाइल संतरी पोस्ट है जिसको यहाँ से लेकर हम किसी भी जगह पे डिप्लॉय कर सकते हैं।
2: इंडियन आर्मी देश की सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी कर रही है। आज हमने ग्रीन इनिशिएटिव्स देखे जो इंडियन आर्मी ले रही है, किस तरीके से ई वेस्ट, वेट वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, हर तरीके से कैसे इंडियन आर्मी हमारे पर्यावरण को बचा रही है, फ्यूचर को बचा रही है। यहाँ पर हेडक्वार्टर कैंप आर्मी में आके हमने सब जाना किस तरीके से आर्मी ये बेहतरीन इनिशिएटिव्स कर रही है और लगातार हमारे फ्यूचर को सेफगार्ड करके सस्टेनेबल तरीके से बेहतर बना रही है। हम इस वक्त प्रोजेक्ट इंचार्ज मेजर अजीत मोरे के साथ हैं। सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आप क्या कहेंगे, ये ग्रीन इनिशिएटिव्स कितने जरूरी हैं, किस तरीके से आर्मी पूरे देश के सामने इस प्रेरणा को रख रही है?
4: थैंक यू वैभव, मैं आपको एक कहना चाहूंगा, जो हमारी सोच है वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ तक ही सीमित नहीं है बल्कि पर्यावरण सुरक्षा में है, हम इसको कल्चरल चेंजेस लाना चाहते हैं। जिस प्रोडक्ट पे हम अभी बैठे हैं ये अपसाइकल प्रोडक्ट, हमने एक चौथा पहलू भी इसमें जोड़ दिया है। साथ में आपको कहना चाहूंगा, जब वेस्ट मैनेजमेंट या पर्यावरण संरक्षण की बातें आती है तो इसमें तीन बेसिक ह्यूमन टच पॉइंट्स, एक है इंडिविजुअल, एक है कम्युनिटी और तीसरा है अथॉरिटी, जिसमें आप लोकल बॉडीज होगी, आपके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो जब तक ये इंडिविजुअल के अंदर से नहीं आएगा तब तक हमारा एरिया या हमारा पर्यावरण साफ नहीं होगा, ये आपको मैं जोर देकर कहना चाहूंगा।

0: हमारे देश का हर एक सिटीजन, हर एक बंदा एक पर्यावरण योद्धा है और जब तक उसके अंदर से ये आएगा तभी हम हमारे देश के या हमारे गवर्नमेंट के स्वच्छ भारत अभियान को पूरा कर पाएंगे। तो कल हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं, तो ये हमारे गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है स्वच्छ भारत अभियान, मिशन लाइफ अभियान, इसको सफल बनाने के लिए हम सब देशवासी मिलकर इसको योगदान दें। जय हिंद।
1: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

देश की रक्षा और प्रकृति की रक्षा दोनों एक साथ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर सेना का संदेश है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आज का संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित था, जिसमें जीरो वेस्ट जोन से लेकर सोलराइजेशन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से ई वेस्ट मैनेजमेंट, साथ ही ऑर्गेनिक वेस्ट का साइंटिफिक मैनेजमेंट और बायोगैस के अलावा हमने जाना कि एरोबिन कंपोस्टिंग क्या है और कैसे इससे खाद बनाई जाती है, और ये भी कि वॉल ऑफ काइंडनेस के माध्यम से पुराने कपड़े, जूते, किताबें

मैनेजमेंट और बायोगैस के अलावा हमने जाना कि एरोबिन कंपोस्टिंग क्या है और कैसे इससे खाद बनाई जाती है, और ये भी कि वॉल ऑफ काइंडनेस के माध्यम से पुराने कपड़े, जूते, किताबें खाद बनाई जाती है, और ये भी कि वॉल ऑफ काइंडनेस के माध्यम से पुराने कपड़े जूते किताबें

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजने को है। लीजिए प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े हमारे श्रोताओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम मृषता ये खास है।

आवाज की दुनिया का वो सुनहरा अध्याय है आकाशवाणी रेडियो। हर दिल की धड़कन, हर घर की परछाई है आकाशवाणी रेडियो। ज्ञान भी देता है, संस्कार भी सिखाता है, देश को एक सूत्र में बांधने का माध्यम भी कहलाता है आकाशवाणी रेडियो। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आज के कार्यक्रम रिश्ता ये खास है में, जहां आज आपके साथ है आपके रेडियो साथी श्वेता भट्ट। जी हाँ श्रोताओं, तकनीक के तेज दौर में जहां सूचनाओं की बाढ़ है, वहीं रेडियो आज भी विश्वास, सादगी और आत्मीयता का सबसे सशक्त माध्यम है। आकाशवाणी रेडियो समाज को जोड़ने वाली एक ऐसी कड़ी है जो भाषा, क्षेत्र और दूरी की सीमाओं को मिटाकर दिलों को करीब लाती है। तो आइए श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा में हम सब सहभागी बने। रेडियो सुने, उसे समझे, उससे जुड़े और नई पीढ़ी को भी इसकी समृद्ध विरासत से परिचित कराएं। और आज के कार्यक्रम रिश्ता ये खास है में हमारे साथ है बैंक सखी शिखा गुप्ता, जो एक ओर बैंक में अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं और साथ ही समाज में जुड़े कई कार्यों में सक्रिय भी रहती हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके जीवन में आकाशवाणी का क्या स्थान रहा। स्वागत है शिखा।

0: से शुरुआत हुई थी जीवन में रेडियो की। दादाजी और पापा को रेडियो सुनना बहुत पसंद था। वो सुबह सुबह ही रेडियो चला लिया करते थे। हम सब भाई बहन ये रेडियो सुनते सुनते ही स्कूल चले जाया करते। लाइट कमी आती, रेडियो चलाने के लिए लाइट की जरूरत तो होती नहीं थी।
1: जी
0: तो रेडियो पर गाने सुनना, नाटक, कहानी, हेलो नजीबाबाद कार्यक्रम में प्रेम कुमार सदाना जी को सुनना बेहद अच्छा लगता था।
1: जी
0: और फिर यहीं से रेडियो हमारा रूटीन बन गया। उस समय पूरे परिवार की दिनचर्या का हिस्सा रेडियो ही था।
1: जी आकाशवाणी के कौन कौन से कार्यक्रम विशेष रूप से याद आते हैं, या कोई ऐसी याद जो आज भी आपके मन को तरोताजा कर जाती है?
0: आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम उस दौर में बड़े रोचक और तरोताजा कर देने वाले होते थे, जो कि आज भी निरंतर कर रहे हैं।
1: जी
0: लेकिन उस दौर में जो कार्यक्रम, जो प्रेजेंटर हुआ करते थे, वो बेहद एक गोल्डन एरा था।
1: जी
0: हेलो नजीबाबाद, यूथ फोरम, खेल के मैदान से, रोजगार समाचार, कृषि जगत, सुगम संगीत, सैनिकों के लिए और विविध भारती के कार्यक्रम, जयमाला, हवा महल, बिना का, भूले बिस्से गीत, बायस्कोप जैसे कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्रों की जान थे।
1: जी
0: और मुझे याद है एक बार आपका पत्र मिला, कार्यक्रम शाम के समय रेडियो पर चल रहा था, जयावंदर जी और विनय ध्यानी जी की आवाज में।
1: जी
0: उन्होंने मेरा भेजा पत्र उस कार्यक्रम में शामिल किया, जो मैं भेजकर भूल भी गई थी।
1: अच्छा
0: इस पत्र को भेजे 4 से 6 महीने हो चुके थे। उस
1: जी
0: वक्त उस दिन वो पत्र शामिल हुआ, जिसे सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और घर में सभी को बहुत खुशी हुई। इतनी
1: जी
0: खुशी हुई मानो रिजल्ट आया हो और मैं पास हो गई हूँ।
1: वाकई कितना खूबसूरत मोमेंट होगा वो, और आकाशवाणी की यही खूबसूरती अपने श्रोताओं से उन्हें जोड़े रखती है, तभी तो बनता है ये रिश्ता और भी खास। आकाशवाणी में श्रोता केवल श्रोता नहीं, बल्कि इस विशाल परिवार का अभिन्न हिस्सा है। एक संदेश, एक पत्र, एक फरमाइश जब प्रसारण का हिस्सा बनती है, तो श्रोताओं और आकाशवाणी रेडियो के बीच गहरा अपनापन, आत्मीय संवाद जन्म लेता है, और यही भावनात्मक जुड़ाव दशकों से आकाशवाणी को श्रोताओं के दिलों के करीब बनाए हुए है। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और जानना चाहेंगे शिखा जी आपसे कि जब आप बैंक में अपने कार्यों में व्यस्त रहती हैं, क्या तब भी आप रेडियो के लिए समय निकाल पाती हैं? और साथ ही ये भी बताइएगा कि बैंकिंग के क्षेत्र में काम करते हुए आप हजारों लोगों से सुबह से शाम में मिलती हैं और हर उम्र से मिलती हैं, क्या आपको लगता है कि आकाशवाणी रेडियो आज भी लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है?
0: जी हाँ बिल्कुल श्वेता जी, आज तकनीक ने बहुत सुविधा दे दी है। मोबाइल पर हम आकाशवाणी को कहीं भी कभी भी सुन पा रहे हैं। कभी यात्रा करते समय, कभी काम से फ्री होकर मोबाइल पर ही रेडियो ऑन कर लिया करते हैं, तो कभी शाम की चाय के साथ युवाणी कार्यक्रम मन को खुश कर देता है। वहीं
1: ठीक
0: छुट्टी वाले संडे को कामों के साथ साथ जैसे संडे का दिन रेडियो के ही नाम हो, तो जब भी समय मिलता है मेरी पूरी पूरी कोशिश रहती है कि रेडियो और आकाशवाणी से जुड़ी रहूं और सभी कार्यक्रम को सुनूं, क्योंकि समाचार, सूचना, जानकारियों के साथ साथ आकाशवाणी की विश्वसनीयता, भाषा, संस्कृति और सामाजिक जुड़ाव भी इसे विशेष बनाता है।
1: जी
0: और मैं रोज अलग अलग आयु वर्ग के लोगों से मिलती हूँ। कई वरिष्ठ नागरिक आज भी रेडियो सुनते हैं। युवा वर्ग FM और डिजिटल रेडियो के माध्यम से आकाशवाणी से जुड़ा है। जब मैं बैंक में होती हूँ तो कई ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार की तरफ से लागू होती हैं, और इन योजनाओं को लोग रेडियो के द्वारा सुनकर बैंक आते हैं और उन योजनाओं का लाभ ले पाते हैं। और आजकल के युवा वर्ग तो इतना पॉजिटिव है कि बैंक और खाता खुलवाने से संबंधित सभी जानकारियां, सभी दस्तावेज बड़ी ही जागरूकता के साथ बिना किसी सहायता के आसानी से मिनटों में अपना काम आसान बना लेते हैं।
1: बहुत सुंदर विचार शिखा जी आपके। तो आकाशवाणी केवल प्रसारण सेवा नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं, उम्मीदों, यादों, जागरूकता और विश्वास की आवाज है। और शिखा जी, यदि आकाशवाणी को एक वाक्य में परिभाषित करना हो तो आप क्या कहेंगी?
0: भारत की आत्मा, वो आवाज जो पीढ़ियों से दिलों को जोड़ रही है, जिसने छाया, संवारा और हर परिस्थिति में हमारा साथ निभाया।
1: बहुत खूब कहा शिखा जी आपने। तो अब आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस यात्रा पर आप क्या कहना चाहेंगी? साथ ही हमारे श्रोताओं के लिए कोई खास संदेश आप देना चाहें?
0: रेडियो सुनने से भाषा सुधरी, सामान्य ज्ञान बढ़ा, सामाजिक मुद्दों को समझने का अवसर मिला, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि सुनने की संस्कृति विकसित हुई। आज हम बोलना तो सीख जाते हैं लेकिन सुनना कम ही पसंद करते हैं।
1: बिल्कुल
0: आकाशवाणी ने सभी रेडियो प्रेमियों को सुनने का महत्व सिखाया, और मेरी कामना है कि आने वाले वर्षों में भी आकाशवाणी इसी तरह से हर उम्र, हर इंसान के दिलों तक पहुँचती रहे और नई पीढ़ी को अपनी समृद्ध विरासत से जोड़ती रहे।

0: 90 वर्षों की यात्रा वास्तव में भारतीय जनजीवन की यात्रा है। मैं आकाशवाणी परिवार को हार्दिक बधाई देती हूँ और इसकी निरंतर प्रगति की कामना करती हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी आपका। आप आज रिश्ता ये खासे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी और इतने सुंदर विचार, इतने सुंदर अनुभव आपने हमारे श्रोताओं के साथ हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी धन्यवाद।
1: बदल गए हैं दौर, कहीं बदले हैं हालात, लेकिन रेडियो ने कभी नहीं छोड़ा अपनों का साथ। वर्षों से जो दिलों में विश्वास जगा रहा है, आकाशवाणी नजीबाबाद आज भी हर घर को अपना बना रहा है। और श्रोताओं, इसी के साथ ही कार्यक्रम रिश्ता ये खास है संपन्न करने की श्वेता को दीजिए इजाजत। आप जुड़े रहें आकाशवाणी नजीबाबाद के साथ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े हमारे श्रोताओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। समय शाम के 5:10 और आइए श्रोताओं अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से आज रात्रि 10 बजे और अब से कुछ ही देर यानी शाम 5:15 पर युवा श्रोता सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज का क्रम रहेगा बूझो तो जाने। कुछ खास है आज नॉन फिल्मी चार्ट बस्टर, कहानी के उस पार में सुनेगा कहानी घर जमाई का एपिसोड 4 बूस्टर, साथ ही साथ गीत संगीत भी। कृषि जगत कार्यक्रम में आज संध्या 6:05 पर आज किसान भाई सुनेंगे उड़द मूंग की खेती और लखपति

घर जमाई का एपिसोड 4 बूस्टर, साथ ही साथ गीत संगीत भी। कृषि जगत कार्यक्रम में आज संध्या 6:05 पर आज किसान भाई सुनेंगे उड़द मूंग की खेती, और लखपति आज संध्या 6:05 पर आज किसान भाई सुनेंगे उड़द मूंग की खेती और लखपति

सुगम संगीत में आज शाम 7:32 पर गुलाम हुसैन साबरी और साथियों की गायी कव्वालियां पेश की जाएंगी। गीत संध्या कार्यक्रम होगा शाम 8 बजे। साथ ही 8:30 पर श्रोता आनंद लेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से का। और श्रोताओं, आज रात्रि 9:30 पर सुनना ना भूलें रविंद्रनाथ ठाकुर का लिखा नाटक प्यासे पत्थर, जिसके निर्देशक हैं दीनानाथ। बांग्ला रेडियो रूपांतरण SS गुप्ता, हिंदी अनुवादक हैं रघुवीर सहाय, प्रस्तुति सहायक सुदर्शन कुमार और प्रतिभागी कलाकार हैं नीरज शर्मा, कृष्ण कुमार नरूला, गुलशन कपूर, राजेश्वर नाथ और सुमित्रा गुप्ता। तो ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल सुबह 9:15 पर जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से बात आसपास की। सुबह 9:50 पर और सुबह 10 बजे सुनिएगा कार्यक्रम सुहाना सफर। साथ ही कल सुबह 10:30 पर सुनना ना भूलें कार्यक्रम जागरूक श्रोता। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग होगा कल पूर्वाहन 11:30 पर और प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां सुनिएगा कल दिन में 12 बजे।

श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद कल रात्रि 9:30 पर और फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रात के हमसफर सुनिएगा कल रात्रि 10:30 पर। वंदना कार्यक्रम रोज की ही तरह कल सवेरे 6:05 पर। श्री रामचरित मानस कान का आनंद लीजिएगा सवेरे 6:30 पर। 6:40 पर होगा चिंतन और गांधी कथा का प्रसारण समय रहेगा कल सवेरे 6:45 पर। तो श्रोताओं ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के संदर्भ में। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। समय शाम के 5:15 और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और साथ ही स्वस्थ होंगे और सुन रहे होंगे आपके हमारे फेवरेट प्रोग्राम युववाणी को। तो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त और होस्ट सिमरन।
1: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त और होस्ट मोनिका सैनी।
0: दोस्तों, जून आ चुका है यानी समर वेकेशंस मंथ, और आपको पता ही है जून आते ही हम सबके माइंड में कुछ प्लान्स बनने शुरू हो जाते हैं।
1: बिल्कुल सिमरन, और तुम्हें पता है मेरी तो पैकिंग भी शुरू हो चुकी है, मैं तो चली घूमने।
0: अरे अरे अरे मोनिका, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले हमारा आज का प्रोग्राम तो करती जाओ।
1: अरे ये भी कोई बोलने वाली बात है? ये कैसे छोड़ सकती हूँ, ये तो करना ही बनता है।
0: ओ अच्छा, चलो ये बताओ कि वैसे जा कहाँ रही हो तुम?
1: मैं जा रही हूँ जहाँ बहुत सारी गुफाएं हैं, और तुम्हें पता है उन गुफाओं की खास बात क्या है? उन गुफाओं की खास बात है उनकी चित्रकारी।
0: ओ अच्छा जी, ऐसे कौन से गुफाएं हैं जरा हमें भी तो बताओ, और कहाँ पर हैं ये?
1: अरे ये हैं अजंता की गुफाएं, और ये कहाँ पर हैं, कैसे हैं, वो तो सवाल बनता है हमारे दोस्तों के लिए।
0: बिल्कुल, तो फ्रेंड्स ये तो बहुत ज्यादा सस्पेंस क्रिएट कर रही है। अब आप ही हमें बता दीजिए कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं, और जिसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस अपना फोन उठाना है और हमें आंसर लिख भेजना है हमारे FB पेज आकाशवाणी नजीबाबाद पर।
1: हमें रहेगा आपके इन जवाबों का इंतजार, तब तक आइए आपको सुनवाते हैं हमारे सेगमेंट नॉन फिल्मी चार्ट बस्टर का ये पहला प्यारा सा गीत।
2: बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम? क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या

0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
6: हो जाओगे एहसास कर लोट कोट,
5: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
7: और डोज में क्या है?
6: डोज में है मजा।
5: जी हाँ, मजा आ गया।
7: लो पानी, थक गया आज तुम, बड़ा लेट आए हो।
8: हाँ। पापा पापा देखो, मार्क्स
9: ला दिखा।
8: है
9: साइंस में 7, इंग्लिश में 5, हिंदी में 10। अबे नालायक गधे, शर्म नहीं आती तुझे? कैसे मार्क्स आए हैं?
7: अरे आप सुनो तो।
9: तुम चुप बैठो, तुम्हारे लाड प्यार नहीं बिगाड़ा इस नालायक को। ये देखो कैसे नंबर लेकर आया है। एक तेरा बाप है जो पूरा दिन मेहनत करता है, तेरे लिए पैसे कमाता है, और तू ऐसे नंबर लेकर आता है?
7: अरे सुन भी लो, सुन तो लो एक बार।
9: अजी तुम चुप करो, एक शब्द मत बोलो, आज मैं बताता हूँ इसे तो।
7: अरे सुन तो लो मेरी बात।
9: हाँ बताओ, तुम बोलो पहले।
7: अरे भाई मैं सुबह अलमारी साफ कर रही थी, बस ये अलमारी साफ करते हुए मिली थी मार्कशीट, और ये मार्कशीट चिंटू की नहीं, ये आपकी है।
5: जी हाँ, मजा आ गया।
7: सिमरन पता है तुम्हें, आज जब मैं मॉर्निंग में स्टूडियो आ रही थी ना, तब मैंने ऑटो में एक छोटी सी बच्ची को देखा।
10: अच्छा, क्या कुछ कह रही थी वो तुमसे?
7: अरे नहीं, मुझसे नहीं, बस उसके हाथ में ना एक गुड़िया थी, और वो उससे ऐसे बातें कर रही थी मानो जैसे वो ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त है।
10: हाँ, क्योंकि बच्चे ना सच में अपनी छोटी सी दुनिया में ही खुशी ढूंढ लेते हैं।
7: और शायद इसी वजह से तो बचपन को जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर भी कहा जाता है।
10: वही तो, ना कोई जिम्मेदारी, ना फ्यूचर की टेंशन, बस सपने होते हैं, शरारतें होती हैं, और ढेर सारी खुशियाँ।
7: लेकिन सिमरन, हर बच्चे की लाइफ इतनी खूबसूरत नहीं होती। कुछ बच्चों के हिस्से में खेल के मैदान नहीं आते, बस डर आता है।
10: हाँ मोनिका, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, और इसी से जुड़ा है हमारा आज का कुछ खास है आज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है
7: आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
10: नाम सुनने में हाँ शायद आप सभी भी समझ ना पाए हो, पर इसका मकसद बहुत सीधा है।
7: ये दिन है उन बच्चों को याद करने के लिए जो वॉयलेंस, एक्सप्लॉयटेशन, लड़ाई झगड़े या किसी भी तरह की आक्रामकता का शिकार हुए हैं।
10: मनिका तुम बताओ, तुम्हारे अकॉर्डिंग बचपन की सबसे खूबसूरत चीज क्या होती है?
7: मेरे अकॉर्डिंग तो बेखौफ होकर हंस पाना, इतना ही। वैसे तुम्हारे लिए क्या है?
10: मेरे लिए भी यही मिलता जुलता, खुद को सेफ फील कराना, क्योंकि बच्चा खुलकर तभी हंस पाता है जब उसे यकीन होता है कि वो सेफ है।
7: दोस्तों लेकिन दुनिया में लाखों बच्चे ऐसे भी हैं जो डर, इग्नोरेंस या वॉयलेंस के बीच बड़े होते हैं।
10: और हाँ, ये एक बात समझना बहुत जरूरी होता है कि आक्रामकता सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं होती।
7: बिल्कुल, काफी बार लगातार डांटते रहना, इंसल्ट करना, रूड हो जाना या किसी भी बच्चे के इमोशंस को बार बार चोट पहुंचाना भी उसके मन पर काफी बार गहरे घाव छोड़ जाते हैं।
10: और ऐसे घाव जो दिखाई नहीं देते लेकिन लंबे समय तक साथ रहते हैं।
7: दोस्तों साथ तो हम भी रहते हैं, लेकिन कुछ जानकारियां और मुस्कुराहट के साथ।
10: और अब ये सब बरकरार रहेगा इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: तो दोस्तों हम बात कर रहे थे आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। सिमरन, तुमने कभी नोटिस किया है बच्चे कितनी जल्दी विश्वास कर लेते हैं?
1: हाँ, बस आप उन्हें एक प्यार से स्माइल करो और देखो, वो आपको अपना दोस्त ही मान लेते हैं और उनकी यही मासूमियत उन्हें सबसे खास बनाती है।
0: लेकिन यही मासूमियत उन्हें सबसे ज्यादा सेंसिटिव भी तो बनाती है। अक्सर हम सोचते हैं कि बच्चों की सेफ्टी सिर्फ पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है।
1: लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि एक सेफ सोसाइटी बनाने में हम सबकी जरूरत होती है, फिर वो एक टीचर हो, पड़ोसी हो या फिर रिश्तेदार।
0: या फिर एक आम नागरिक ही क्यों ना हो, हर कोई अपना चेंजेस ला सकता है सोसाइटी को सेफ बनाने में। और पर्सनली मुझे लगता है ना, बच्चे पौधे की तरह होते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, बस उन्हें प्यार, केयर और सेफ माहौल मिले तो वो खिल उठते हैं।
0: और वहीं अगर उन्हें डर, हिंसा या इग्नोरेंस मिले तो उनकी ग्रोथ पर काफी गहरा असर भी होता है।
1: दोस्तों काफी बार बच्चे सीधे साधे बातें नहीं करते, ना ही बताते हैं कि वो परेशान हैं, बल्कि उनके चुप्पी, व्यवहार और उदासी बहुत कुछ कह जाती है।
0: इसीलिए जरूरी भी होता है।

0: है कि हम बच्चों को सिर्फ सुने नहीं बल्कि समझे भी,
1: अगर आज हम एक बच्चे को ज्यादा रेस्पेक्ट दें, ज्यादा टाइम दें,
0: और थोड़ा सा पेशेंस रखें, तो शायद उसका पूरा दिन बदल सकता है।
1: कभी-कभी एक दिन नहीं, एक दिन ही उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है।
0: बचपन को डर की छांव नहीं, प्यार की धूप मिलनी चाहिए। नन्हे हाथों में बोझ नहीं, बल्कि सपनों की उड़ान मिलनी चाहिए।
1: तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपके घर में या आसपास कोई बच्चा हो तो वो सेफ, हैप्पी, रेस्पेक्टफुल और एक अच्छे एटमॉस्फेयर में बड़ा हो सके।
0: आज के कुछ खास है आज में बस इतना ही। आप भी मुस्कुराइए और बच्चों की मुस्कुराहट का भी पूरा का पूरा ध्यान रखिए।
1: तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम हमारे कुछ जरूरी संदेश की ओर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे एहसास कर लोट पोट,
1: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
3: अरे सुनते हो, कहाँ गए थे, अब आ रहे हो सुबह से?
4: यही गया था बस।
3: यही कहाँ? वही तो पूछ रही हूँ, कहाँ गए थे?
4: कहा तो है, बाहर तक ही गया था बस।
3: बताकर नहीं जा सकते, मुझे भी सामान मंगाना था, बता देते कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं।
4: अरे डॉक्टर के पास तक गया था बस।
3: डॉक्टर के पास? तुम्हें क्या हुआ है?
4: अरे भाग्यवान, आँख दिखाने गया था।
3: ओह चलो अच्छी बात है, मुझे दिखा भी नहीं सकते।
1: जी हाँ, मजा आ गया।

0: Akashwani at 90.
1: Thank you.

0: दोस्तों चलिए अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कहानी के उस पार, और जिसमें आज आप सुनेंगे कहानी का एपिसोड नंबर 4।
1: हेलो दोस्तों, मैं आपकी अपनी दोस्त उज्मा, और आप सुन रहे हैं कहानी घर जमाई। दोस्तों अब कहानी में तनाव बढ़ रहा है। हरिदन बहार भूखा प्यासा पड़ा था और घर के अंदर उसकी पीठ पीछे साजिशें रची जा रही थी। तो आइए सुनते हैं कि क्या हो रहा था। हरिधन तो उधर भूखा प्यासा चिंता में जल रहा था, इधर घर में सास और दोनों साले बातें कर रहे थे। गुमानी भी हाँ में हाँ मिलाती जाती थी। बड़े साले ने कहा, हम लोगों के बराबर चलता है, ये नहीं समझता कि किसी ने उसकी जिंदगी भर का बोझ थोड़ी ही उठा लिया है। 10 साल हो गए हैं, इतने दिनों में 2-3 हजार रुपये तो खा ही गया होगा। पीछे से छोटा साला भी बोल पड़ा, मजदूर हो तो आदमी डांटे भी, अब इनसे कोई क्या ही कहे अम्मा, कौन जाने कब इसका बोझ हमारे सर से उतरेगा। अपने मन मन में सोचता होगा, मैंने तो इन्हें पैसे दिए हुए हैं, रुपये दिए हुए हैं, पर ये ना सोचता होगा अम्मा कि वो रुपये तो कब के उड़ चुके, सवा शेर तो 1 जून को चाहिए। अपने छोटे बेटे की बात सुनकर हरिधन की माँ गंभीर भाव से बोली, हाँ बेटा सही कह रहा है, ऊपर से खाता भी तो कितना है। वहीं गुमानी भी अपनी माँ के सर से जुए निकाल रही थी, लेकिन माँ और भाइयों की बात सुनकर उसके कान पर कोई जूना चल रही थी। ऊपर से जलते हुए दिल से बोली, अरे अम्मा निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और काम ही क्या रहता है। इस पर बड़ा साला बोला, खाने की कोई बात नहीं है, जिसको जितनी भूख हो उतना खाए, लेकिन कुछ करे भी तो सही। अब मेहमान बन के आया था, ये तो सर पे मुसीबत बन के बैठ गया है। छोटा साला भी तंज कसते हुए बोला, मैं तो एक दिन कह दूंगा अम्मा, जीजा जी अपना रास्ता ना पिए, आपसे कर्ज थोड़ी ले रखा है हमने। गुमानी घर वालों की ऐसी बातें सुनकर अपने घर वालों से नफरत करने की बजाय अपने पति से ही नफरत कर रही थी, और कह रही थी, अरे अम्मा अगर वो बाहर से कुछ पैसे लाता तो इस घर में उसका कितना सम्मान होता, वो भी रानी बनकर रहती, पता नहीं क्यों बाहर जाकर कमाने में तो उसकी नानी मरती है। गुमानी की सोच अभी तक बिल्कुल बच्चों जैसी थी, उसका अपना कोई घर नहीं था, भाइयों के सहारे को सब कुछ मान रही थी, उसी घर के भले बुरे को अपना भला बुरा मान रही थी। जो भाइयों के और माँ के शब्द थे वो भी उन्हीं शब्दों में सोचती, इस समस्या को उन्हीं आंखों से देखती जैसे उसके घर वाले हरिधन को देखते थे। हरिधन भी पड़ा

अंदर ही अंदर जल रहा था कि दोनों साले बाहर आए और बड़ा साला बोला, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया, कब तक सोते रहोगे, सारा खेत पड़ा है। हरिधन तुरंत उठ बैठा और तेज स्वर में बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया है। दोनों साले हैरान हो गए। जिस आदमी ने कभी मुंह नहीं खोला, हमेशा गुलामों की तरह हाथ बांधे हाजिर रहा, आज वो अचानक इतना आत्मसम्मान वाला हो गया। ये उन्हें चौंकाने के लिए काफी था, कुछ जवाब नहीं सूझा। हरिधन ने देखा इन दोनों के पैर उखड़ गए हैं। तो फिर से बोल उठा, मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूं ना बहरा हूं, छाती फाड़ कर काम करता हूं और उस पर भी कुत्ता समझा जाता हूं। ऐसे गधे तुम्हें कहीं और नहीं मिलेंगे, है ना, सही कहा ना मैंने। अब बड़े साले को भी गुस्सा आ गया और वो बोला, तुम्हें किसी ने यहां बांध कर थोड़ी ना रखा है। अब हरिधन जवाब देने में असमर्थ हो गया, उसे कोई बात ना सूझी। बड़े साले ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, अरे अगर तुम ये सोचते हो कि जिंदगी भर मेहमान बने रहोगे और तुम्हारा आदर सम्मान हम वैसे ही करते रहेंगे, तो हमारे बस की बात नहीं है। हरिधन ने आंखें निकाल कर कहा, क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूं। इस पर बड़ा साला बोला, ये कौन कहता है। हरिधन फिर बोला, तो तुम्हारे घर की यही नीति है कि जो सबसे ज्यादा काम करे वही भूखा मर जाए। तुम खुद खाने नहीं गए, क्या हम तुम्हारे मुंह में खाना डालने आते। हरिधन ने होठ चबा कर कहा, मैं खुद खाने नहीं गया, ये कहते तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम्हारी बहन तुम्हें बुलाने आई, तुम्हारी माँ तुम्हें बुलाने आई, लेकिन मुझे एक बार किसी ने नहीं कहा। और अगर मेरी पत्नी मुझे बुलाने आई तो पहले मुझसे पानी भरवाया, इतना तुम लोगों ने खाना खा लिया, क्या मेरी इतनी भी औकात नहीं कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाना खा लूं। ये कहकर हरिधन की आंखों में खून उतर आया, वो दांत पीस कर रह गया। छोटे साले ने कहा, अरे आई तो अम्मा भी थी, तुमने कह दिया था मुझे भूख नहीं है, तो क्या करते। इस पर सास भीतर से तेजी से बोली, कितना कहकर हार गई तुम्हारे सामने, तुम उठे ही नहीं तो मैं क्या करूं। हरिधन ने जहर खून और आग से भरे स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लड़कों का झूठा खाने के लिए हूं क्या, मैं कुत्ता हूं कि तुम लोग खाकर मेरे सामने सूखी रोटी का टुकड़ा फेंक दो और मैं उसे खा लूं। बुढ़िया ने ऐंठ कर कहा, ओ हो, बड़े आए तो तुम क्या मेरे लड़के हो, मेरे लड़कों की बराबर खुद को समझते हो, कौन तुम भाई। इस पर हरिधन पराजित हो गया। बुढ़िया ने एक ही शब्द में, एक ही वाक्य में उसका काम तमाम कर दिया। उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई, आंखों की आग बुझ गई, फड़कते हुए नथने शांत हो गए, किसी घायल इंसान की तरह वो जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम मेरे लड़कों के बराबर हो, ये वाक्य एक लंबे भाले की तरह उसके दिल में चुभता चला गया। ना दिल का अंत था ना उस भाले का, बस छाती में एक दुख पैदा हो गया था। सास की इस बात ने हरिधन को पूरी तरह तोड़ दिया। क्या तुम मेरे लड़कों के बराबर हो। अब हरिधन का फैसला क्या होगा, क्या वो खुद को संभाल पाएगा, क्या वो फिर से चुप रहेगा या विद्रोह करेगा। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर इस कहानी का अंत क्या होगा, तो इस कहानी का अंतिम भाग यानी आखिरी एपिसोड, एपिसोड नंबर 5 सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा।

नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तो दोस्तों, अब टाइम हो चुका है हमारे आज के सेगमेंट बुझ तो जाने के सवाल के जवाब को जानने का। तो हमारा आज का सवाल था कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, जिसका सही जवाब है महाराष्ट्र।
2: और सही जवाब भेजने वाले दोस्तों के नाम हैं जॉन डिकैस्ट्रो, दिनेश कुमार वर्मा, नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, हीरामणि शर्मा, नानक खन्ना, चंचल खन्ना, ताज मोहम्मद अंसारी, धर्मेंद्र छिपा, दिलीप भाबर, गंगा सिंह रावत, धर्मवीर कश्यप और बबलेश पनवार, बीआई धाकड़, मसूर हसन, निसार सलमानी, किशन सपकाल, नरेंद्र कुमार शर्मा, बी कमल और जगदीश धाकड़, रामकुमार रेवार, राष्ट्रपाल गजभई, जाकिर मंसूरी, नजमूल होदा जावेद और विजय और महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, फागुराम यादव, बलवंत कुमार वर्मा, संजय ढिंगिया, देवशंकर तामुरिया, धीरज भाई राबरी, शाहजी वोदके, पुंजाजी नरवेल, राजकुमार दूदी, रामशरण विश्वकर्मा, मोहम्मद सईद अब्बासी, दिलशाद हुसैन, मोहम्मद रफीक पवार और मोहम्मद अफजल ताज,

0: राजेश वर्मा, राधेश्याम पांडे, गुरमीत सिंह।
1: तो दोस्तों इसी के साथ हम आपको सुनवा देते हैं हमारे सेगमेंट नॉन फिल्मी चार्ट्स बस्टर का एक और नॉन फिल्मी सॉन्ग।

दोस्तों, उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा और हमारे सेगमेंट नॉन फिल्मी चार्ट बस्टर के सारे गाने भी पसंद आए होंगे। तो चलिए इसी खुशी में चलते चलते एक और नॉन फिल्मी चार्ट बस्टर का गीत आपको सुनवाते हैं।

0: दोस्तों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लगते हैं, आप हमें खत के जरिए भी बता सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763।
1: साथ ही आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपडेटेड रहने के लिए हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद और हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही आप हमारे पुराने प्ले, कहानी, स्टोरीज सब सुन सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर, जिसके लिए आपको सर्च करना होगा आकाशवाणी नजीबाबाद। आप सभी लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथ ही मुझे यानी सिमरन कौर
0: और यानी मुझे अपनी साथी मोनिका सैनी को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

0: अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: श्री टंडन ने कहा कि दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची थी। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसक के युग का अंत किया है और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। सत्र में भाग लेने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी नेता मजबूत और अधिक समृद्ध पूर्वोत्तर के निर्माण के अपने संकल्प में एकजुट हैं। रक्षा

0: और कुछ मामलों में ये दोगुने से भी अधिक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूअल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूअल तकनीक की शुरुआत केवल एक नए वाहन की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूअल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। इससे देश को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है और गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता के मामले में विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता का मुख्य कारण ये है कि देश के नागरिकों ने ये समझ लिया है कि वे अपनी छतों पर बिजली खुद पैदा कर सकते हैं और बिजली बिल शून्य हो सकता है। इसके अलावा श्री जोशी ने आज विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक में सरकारी भवनों के छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने की प्रगति की भी समीक्षा की। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। भारतीय टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। 5 बार की विजेता भारतीय टीम और मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश आमने सामने होंगे। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज का दिन भारत के लिए मिला जुला रहा। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी एरोन ताई और कैंग खाई जिंग को कड़े मुकाबले में हराया, लेकिन पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी कड़े संघर्ष के बावजूद पराजित हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:05 और अब हमारे किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया आलोक कुमार गंगाराम
1: और भैया प्रमोद सिंह की
0: राम, राम, राम, राम। और प्रमोद भैया क्या हो रहा है?
1: बहुत बढ़िया भैया, तुम अपने सुनाओ, सब ठीक ठाक है ना?
0: पर देखो इस टाइम तो होश नहीं भैया में। पर देखो गन्ने की जहाँ तक बात है उसमें भैया हमने जो है साफ सफाई करा कर,
1: हाँ
0: बढ़िया निराई गुड़ाई करा कर,
1: हाँ हाँ हाँ हाँ,
0: और भैया अच्छा खाद वाद डाल के भैया गूल चढ़वा दी हमने तो।
1: बहुत बढ़िया बात है भाई, ये तो जरूरी है ही। देखो गूल तो चढ़नी चाहिए, मिट्टी अगर चढ़ जाएगी जड़ पे तो ज्यादा अच्छा रहे।
0: बिल्कुल। और दूसरे भैया हमने यो काम करा,
1: हाँ
0: कि हम भैया जो मुंजी में बोनी ना उसका बीज लेकर आए थे हम।
1: अच्छा जी,
0: और भैया पनीर बो दिया।
1: देखो कहने का मतलब यह है कि खेती बाड़ी के सारे काम तुमने टाइम से पूरे कर लिए, टाइम से रोपाई हो जाएगी धान की, तो भैया टाइम से कटाई होकर अच्छा मुनाफा भी हो जाएगा।
0: बिल्कुल। अब बस हमने भैया जो अब जिसमें मुंजी लगानी खेत में उसमें ढैंचा खड़ा
1: हाँ
0: और सनई खड़ी
1: अरे वाह,
0: और थोड़े से भैया हमने लोबिया।

0: बहुत बढ़िया भैया, देखो खेत की तैयारी करके टाइम से अगर पनीर को लगा देंगे, मुंजी को लगा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
1: बिल्कुल भाई, बस बात एक ही है कि अब थोड़ी गर्मी में भी वो बात नहीं रही, थोड़ा हल्कापन आया।
0: हाँ ये बात तो है
1: ये
0: भाई।
1: बारिश हुई थी ना, इससे थोड़ी सी हल्की हुई है।
0: तापमान कम तो हो यार।
1: हाँ, तो सुबह शाम ना अब खेतों में काम करने में भी आराम हो गया।
0: भाई देखो, किसान भाई तो अपने काम में लगे ही हुए हैं। भाई कुछ ऐसे भाई हैं जिन्होंने अभी तक धान की जो पनीर की बात कर रहे हैं, नर्सरी की बात कर रहे हैं, वो अभी तक नहीं बोई, वो बो रहे हैं। कुछ भैया जैसे अभी खेतों की तैयारी में लगे पड़े हैं, यो वाला काम कर रहे हैं। यो काम तो है ही, पर भाई आमदनी बढ़ाने के लिए अगर हम अपने घर परिवार को साथ लेकर अपनी आमदनी को बढ़ावें तो भला यो बताओ कैसा रहेगा।
1: यो काम की बात कही है आपने आज। भाई देखो, अब जमाना ऐसा आ गया
0: हाँ
1: प्रमोद भैया, देखो हम काम तो कर ही रहे हैं,
0: हाँ भैया।
1: लेकिन परिवार का सभी सदस्य अगर हमारी आमदनी में हाथ बटा हुआ,
0: जी जी जी
1: यानी कि सभी लोग काम करें, तो भैया हम तरक्की कर सकते हैं। और उससे केवल परिवार की तरक्की नहीं होती, पूरे देश की तरक्की हो जा।
0: ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो भैया। देखो अब वैसे भी भाई अब यो आमदनी तो बढ़नी ही चाहिए, क्योंकि भैया खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। और भाई हम एक चीज देख रहे हैं आज की तारीख में,
1: वो क्या?
0: वो यो है भैया कि जैसे हम अपने घर परिवार के सदस्यों को मिला के काम करने की बात बता रहे हैं ना, वैसे ही भाई सरकार की एक योजना स्वयं सहायता समूह के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। हाँ
1: बिल्कुल भैया, सुनखा। देखो मैं आपकी बात रोकूं, एक बात कहूंगा।
0: हाँ
1: देखो इसके पीछे मंशा ये है
0: हाँ
1: कि हमने एक बात अपने मन में गांठ बांध ली कि अब भैया लड़के लड़की में कोई फर्क नहीं
0: ना ना
1: है।
0: ना वो तो भैया
1: तो
0: बिल्कुल
1: जाहिर
0: नहीं।
1: सी बात है कि हमें अगर तरक्की करनी है तो हमारी लड़कियों को, महिलाओं को भी आगे बढ़ना
0: हम
1: पड़ेगा,
0: बिल्कुल
1: और उनके विकास के लिए या उनका भी, हमारे जो आर्थिक विकास करने में मदद की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए स्वयं सहायता समूह तो पहले से चल ही रहे हैं।
0: जी
1: लेकिन स्वयं सहायता समूह के जरिए
0: हाँ
1: हमारी जो बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, वो और अधिक आमदनी करना चाहती हैं, तो उनके लिए यह विशेष योजना चल रही है, और वो उसका नाम है लखपति दीदी योजना।
0: बिल्कुल ठीक कहा भैया आपने। और देखो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो हमारी बहनें हैं वो लखपति बन रही हैं।
1: बिल्कुल, अब बात ये आ रही है कि भाई इस योजना का क्या उद्देश्य है, कैसे लखपति बन जाएंगे, कोई
0: हाँ
1: लॉटरी लग
0: और
1: जाएगा?
0: कैसे काम करेंगे इसमें।
1: तो कोई लॉटरी वोटरी नहीं लगने वाली है
0: जी
1: भाई।
0: जी जी
1: होता यह है कि महिलाओं को पहले जो है कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर कोई महिला जो है सिलाई कढ़ाई करना चाहती
0: जी
1: है,
0: जी
1: बुनाई करना चाहती है, कुर्सी बुनना का काम करना चाहती है, या और बहुत सारी, उसमें एक पूरा पैकेज है, उनमें से कोई भी काम करना चाहती है, तो उसका एक निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा।
0: बिल्कुल ठीक बात है। और देखो ये जो प्रशिक्षण की आप बात बता रहे हैं ना, ये हमारे उस स्वयं सहायता समूह की उन महिलाओं को दिया जाता है भैया जो इसके लिए काम करना चाह रही। और समूह होता है 10 से 11 महिलाओं का, कम से कम 10-11 महिला होनी चाहिए उस
1: बिल्कुल
0: समूह में।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सही
0: और
1: बात
0: वो
1: कही।
0: भैया उसके माध्यम से फिर कोई भी काम कर सकें, किसी भी तरह का प्रशिक्षण लेकर आगे बढ़ सकें।
1: बिल्कुल, प्रशिक्षण के बाद भैया उनको जो है उस आजीविका को चलाने के लिए, मान
0: हाँ
1: लीजिएगा सिलाई का काम का प्रशिक्षण ले लिया, तो अब सिलाई के लिए भैया सिलाई मशीन की जरूरत पड़ेगी, यानी
0: बिल्कुल
1: कि संसाधनों की जरूरत पड़ेगी,
0: जी जी जी
1: और उन संसाधनों का उपयोग करके भैया महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। अब सवाल ये उठा कि भैया ये पैसे कहाँ से होंगे?
0: बिल्कुल ठीक बात है भाई, ये तो सोचने वाली बात है, काम तो पैसे से ही चला है।
1: सही कह रहे हैं। तो भैया उसके जरिए जो है बहुत ही सामान्य से ब्याज पे भैया पूरा जो समूह होगा
0: जी
1: उसे भैया लोन मिल जाएगा,
0: हाँ
1: और भैया उस लोन को धीरे धीरे धीरे उतार दो, बहुत सारी उसमें छूट भी रहती है, और भैया अपना काम कर दो।
0: सही कह रहे भैया, इस समूह के माध्यम से महिलाएं लोन लेके किसी भी काम को करके लखपति बन सके हैं।
1: अब भाई एक बात और रह गई
0: वो क्या
1: कि
0: भैया।
1: भाई हम इस योजना का लाभ उठावें तो इसका फॉर्म कहाँ भरें, कहाँ लो जाना पड़ेगा,
0: जी
1: कहाँ कहाँ के
0: जी
1: चक्कर
0: जी
1: काटने पड़ेंगे?
0: जी जी जी जी
1: भाई
0: जी
1: इसके लिए सरकार ने बड़ा बढ़िया कदम उठाया
0: वो क्या
1: कि
0: भैया।
1: भाई कहीं आपको चक्कर काटने की जरूरत नहीं है,
0: हाँ
1: हर गांव में आंगनबाड़ी केंद्र है,
0: बिल्कुल है।
1: या तो भैया उसके जरिए फार्म भरवा लो, या फिर पंचायत का कार्यालय है हर ग्राम पंचायत में,
0: जी जी जी
1: तो
0: जी
1: वहां पर जो है भैया एक कार्यालय है
0: हाँ
1: पूरा,
0: हाँ हाँ हाँ
1: वहां पर फॉर्म भरवाओ आप,
0: पंचायत सहायक बैठे हैं वो।
1: पंचायत सहायक बैठते हैं, पंचायत
0: हाँ
1: सहायक की मदद से फार्म भरो,
0: जी
1: और भैया आपका नंबर जो है प्रशिक्षण में आ जाएगा, और जब प्रशिक्षण मिल जाएगा, पूरी ट्रेनिंग मिल जाएगी, पूरा ज्ञान आपको हो जाएगा, तो उसके जरिए आपको क्रमबद्ध जानकारी मिलती चली जाएगी, और हमारी जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर हो जाएंगी, यानी कि लखपति बन जाएंगी।
0: और ये ही हमारी सरकार का भी उद्देश्य है कि हमारी जो बहनें हैं वो

0: आए, आत्मनिर्भर बने, अपना भी कल्याण करें और भैया देश का भी कल्याण करें।
1: बिल्कुल, महिलाएं जो है भैया अपने घर के गृहस्थी के कामों को करने के साथ साथ आमदनी उनकी कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह से ज्यादा हो जा
0: बिल्कुल
1: घर
0: बिल्कुल
1: बैठे,
0: जी जी
1: ऐसी
0: जी जी
1: भैया एक योजना है। और इस योजना का हम उम्मीद है कि हमारी जो महिलाएं हैं भैया वो लाभ उठाएंगी
0: बिल्कुल।
1: और सरकार की जो योजना है उसका पूरा फायदा करेंगी।
0: अब भैया अब हमें क्या करना भला?
1: भाई अब तो भाई पहले सुन लेते हैं कुछ जरा से संदेश।
0: ठीक है भैया।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुन लिए, अब कुछ और बात कर ले।
2: अरे भैया, बात करनी बहुत जरूरी है। अब देखो,
1: हाँ,
2: हम कह रहे थे कि अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहिए।
1: ठीक,
2: आमदनी बढ़नी चाहिए भैया,
1: कोई शक
2: नहीं। लेकिन भैया, हमें स्वस्थ भी रहना चाहिए।
1: यो सबसे जरूरी बात कही आपने।
2: हाँ।
1: देखो भाई, पुरानी कहावत है, जान है तो जहान।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो भाई, हम अच्छे जब रह सकते हैं, यानी कि स्वस्थ जब रह सकते हैं, जब हमारा खान पान सही होगा।
2: बिल्कुल ठीक बात है भैया।
1: आज के दौर में आप देखो, अरे भाई वो फल मतलब कहियो, उसमें बहुत दवाई छिड़की जा रही
2: है।
1: अरे भैया वो सब्जी मतलब ये, उसमें बहुत दवाई छिड़की जा रही है।
2: जी जी,
1: ये
2: जी,
1: बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं।
2: और भैया, बच्चों को क्या पसंद है? बच्चे तो भैया वो फास्ट फूड खा रहे हैं, कोई वो भैया ठिल्लो बखड़ो का कुछ और चीज खाई जा रही। मतलब कहने का ये है कि हम वो चीज नहीं खा रहे जिसको खाकर हमारे शरीर को जान मिले।
1: भाई पुराने बुजुर्ग क्या कह रहे थे, भाई पहले जमाने में घर तो जरूर कच्चे होते पर आदमी पक्के होते।
2: बिल्कुल, क्योंकि भैया वो अनाज ही ऐसा खाए करे थे।
1: तो उसका कारण ये था कि वो भैया अपने भोजन पर बहुत ध्यान दिए थे। भले से ही भैया वो चटनी से रोटी खावे थे,
2: जी जी,
1: लेकिन अन्न तो बढ़िया होता।
2: सही,
1: वो भैया चने मिलामत थे, गेहूं मिलामत थे, जौ मिलामत थे, और बहुत सारे अनाज को मिश्रण करके
2: गोचनी
1: की रोटी खाते थे। तो सुबह ही खा ली, उन्होंने घी लगा लिया, मट्ठा पी लिया एक गिलास, और
2: जी,
1: शाम
2: जी,
1: को दबा कर दूध पिया, मलाई खाई, लो भैया हो गया काम। तो कुल मिला के बात यह है कि हमें अपना जो खान पान है उसमें बदलाव करना पड़ेगा।
2: और भैया देखो, रसायन मुक्त अगर हम अनाज पैदा करेंगे और थोड़ा सा हम भैया पीछे की तरफ चले जाएंगे,
1: हाँ,
2: देखेंगे कि भैया हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो पूर्वज थे, वो किस तरीके की खेती कर रहे थे, कैसा अनाज खाए कर रहे थे, तो भैया उस तरफ जाकर हमें वहां से कुछ लेना चाहिए।
1: बिल्कुल। और बात ये, अगर आप कोई नया अनाज उत्पन्न करो, जैसे भैया आपको याद होगा, हम पिछले दिनों जो है भैया बुलंदशहर गए थे।
2: हाँ हाँ भैया।
1: और वहाँ भैया एक विशेष प्रकार का गेहूं था, है नहीं?
2: जी,
1: याद
2: जी,
1: है
2: जी,
1: आपको?
2: बिल्कुल याद है, याद है भैया।
1: और एक विशेष प्रकार का भैया वो भी था जौ,
2: जी,
1: बिना छिलके वाला।
2: हाँ हाँ हाँ।
1: तो भैया वो सोना मोती गेहूं और वो बिना छिलके वाला जो
2: जौ
1: था, उसे देख के हमारा ही मन हुआ भाई हम भी प्रयोग
2: मिलना चाहिए, खाना चाहिए।
1: क्योंकि भाई ये दोनों ऐसी किस्में थी कि जिसमें भैया रासायनिक खादों का, रासायनिक दवाइयों का उपयोग नहीं हो रहा था।
2: अरे भैया देखो, पहले जमाने में हम अपने खेतों में बोए करे थे भैया, वो सावनी है ना, समाई कह देते जिसे।
1: हाँ, हाँ।
2: और भैया मोटे अनाजों में हम बात कर रहे हैं, बाजरा, कोदो, ये सब चीज हम खाए करे थे, खेतों में बोए करे थे। तो भैया इन्हें खाकर शरीर में जान आए करे थी।
1: बिल्कुल। तो भाई ये जो सारे अनाज हैं, इन्हें कहते हैं श्री अन्न।
2: श्री अन्न।
1: तो ये श्री अन्न भैया क्या है और इससे मानव स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है, कैसे और अच्छा हो सकता है, इन्हें कैसे उगाया जाए, क्यों ना इस बारे में जानकारी ले ली जाए।
2: बिल्कुल। और भैया देखो, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे भैया जितेंद्र कुमार ने बातचीत करी है डॉक्टर सतनाम सिंह नागर से, जो कि विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं नजीबाबाद में।
1: तो भैया सुनते हैं इनसे दी गई ये जानकारी।
2: ठीक है भैया।
3: किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम में। और जैसा कि आज हम सभी जानते हैं कि भाई आज हम किस तरह से अपनी सेहत के लिए फिक्रमंद रहते हैं और क्या खाएं क्या ना खाएं, इसी जद्दोजहद में लगे रहते हैं। तो भैया इसी कसम के बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक पुराना लेकिन बेहद जादुई शब्द हमें याद दिलाया, श्री अन्न। तो आज हम इसी चमत्कारी अनाज के स्वास्थ्य लाभों पर बात करेंगे। और भाई आज हमारे बीच जानकारी देने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर सतनाम सिंह नागर, और डॉक्टर साहब से जानकारी का विषय है मिलेट्स का हमारे स्वास्थ्य पर लाभ। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
4: नमस्कार जितेंद्र जी, और आपके सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार।
3: सर जैसा कि हम आज बात कर रहे हैं मिलेट्स, तो सबसे पहले सर आप हमारे किसान भाइयों को यही जानकारी दीजिए कि मिलेट्स क्या है।
4: देखिए, श्री अन्न कोई नया अनाज नहीं है, यह हमारे पूर्वजों का जो पारंपरिक भोजन है
3: जी,
4: वही है जिसे हम आम बोलचाल में मोटा अनाज या मिलेट्स कहते हैं।
3: जी जी।
4: इसमें मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, कोदो, कुटकी सावा सम्मिलित है।
3: जी सर, आपने सिरियन के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी कि सिरियन क्या है और कौन कौन से सिरियन की श्रेणी में अनाज आते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा आपसे विषय भी है कि हमारे स्वास्थ्य पर सिरियन यानी मिलेट्स का क्या लाभ है, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि सिरियन इन्हें क्यों कहते हैं।
4: इन्हें सिरियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये केवल पोषण के मामले में सर्वश्रेष्ठ नहीं है
3: जी,
4: बल्कि पर्यावरण और किसानों के लिए भी वरदान है। ये जो अनाज है पानी और खराब मौसम में भी आसानी से उग सकता है
3: जी जी,
4: इसलिए यह सिरियन कहा गया है। स्वास्थ्य के लिहाज से सिरियन पोषक तत्वों का पावर हाउस माना जाता है
3: जी।
4: इसके मुख्य योगदान को हम कुछ बीमारियों या बिंदुओं के साथ कह सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गई, दिल की बीमारी हो गई, पाचन तंत्र हो गया, या वजन घटाने में इसकी मददगार हो गई। और पोषक तत्व से तो भरपूर है ही
3: जी।
4: और सबसे पहले हम ले लेते हैं डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज आपने देखा होगा कि भारत को डायबिटीज की कैपिटल कहने लगे।
3: बिल्कुल सर,
4: वो डायबिटीज को रोकने के लिए इसका सबसे ज्यादा योगदान है। और कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो सिरियन है इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत कम होता है
3: जी।
4: इसका मतलब क्या होता है कि खाने में जो ब्लड में शुगर मिलती है उसे धीरे धीरे ब्लड में घोलता है, जिससे शुगर जो है कंट्रोल रहती है
3: जी। सर,
4: आपको मैं डायबिटीज के बारे में बता दूं, डायबिटीज दो प्रकार की होती है, एक तो टाइप 1 होती है, एक टाइप 2 होती है
3: जी सर।
4: ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज तो ये होती है कि इंसुलिन ही नहीं बना पाती पैनक्रियाज, उसमें जो कुछ जैसे कि इम्यून संबंधित बीमारी होती है शरीर में, उससे जो है वो नष्ट ही हो जाती। ठीक है, और जैसे कि हम देखते हैं टाइप 2 जो डायबिटीज है वो ज्यादा लोगों को घेरे हुए है, उसका मुख्य कारण जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस है बॉडी में। इंसुलिन रेजिस्टेंस कब डेवलप होता है? जब हम ऐसा भोजन खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा तो ज्यादा हो और फाइबर की मात्रा उसमें कम हो। उससे क्या होता है, जैसे कि गेहूं भी हो गया उसमें, चावल भी उसमें ही हो गए, और भी बहुत चीजें हैं जो ऐसी हैं, मैदा हो गया
3: जी।
4: जैसे ही हम उनको खाएंगे, उनसे बने उत्पाद खाएंगे, तो ये हमारे शरीर में जैसे जाएंगे तुरंत हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को बढ़ा देंगे, यानी कि हमारे खून में ये शुगर को तुरंत भेज देंगे
3: जी जी।
4: फिर हमारे शरीर क्या करेगा, जो हमारे शरीर में पैनक्रियाज है वो ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन बनाएगी। जितनी ज्यादा इंसुलिन बनाएगी वो फिर इंसुलिन क्या करेगी, शुगर को पकड़कर वो हमारी कोशिकाओं में लेके जाएगी
3: जी जी।
4: तो जब पहले से ही हमारी कोशिकाओं में शुगर मौजूद है
3: जी,
4: तो वो अपना ताला ही नहीं खोलेगी शुगर के लिए। तो जब ताला नहीं खोलेगी तो वो फिर क्या होगा, वापस ब्लड में शुगर आएगी और हमारे जाके लीवर में जमेगी, जिसे बोलते हैं फैटी लीवर, और ये हमारी शुरुआत होती है, इसे बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो सिरियन उसमें क्या लाभ देता है, सिरियन में होते हैं फाइबर, इसमें फाइबर की मात्रा अच्छी खासी होती है, 8 से लेकर 12% तक फाइबर।

0: होता है इसमें, जैसे
1: जी
0: कंगनी हो गया उसमें 8% फाइबर होता है, सावा है उसमें 10% फाइबर होता है, कोदो है उसमें 9% फाइबर होता है, कुटकी है उसमें 9.8% फाइबर होता है,
1: जी
0: और जो छोटी कंगनी होती है उसमें 12.5% तक फाइबर होता है।
1: जी सर
0: फाइबर का क्या काम है हमारे शरीर में? फाइबर का ये काम है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट इनमें भी पाया जाता है,
1: जी
0: सीरियन है इनमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन इनके अंदर जो फाइबर होता है वो उसकी स्थिति को मेंटेन करके रखता है। कैसे करता है? जैसे कि हमने इसको खाया
1: जी सर
0: सीरियन को, जिसे मोटा अनाज कहते हैं हम,
1: जी जी
0: तो जो इसमें मौजूद फाइबर है
1: जी
0: वो कार्बोहाइड्रेट को हमारे शरीर में धीरे धीरे घोलता है,
1: जी सर
0: जहां आधे घंटे में हमारा सारा घुल जाता है इसके फाइबर के अभाव में, ये
1: जी
0: क्या करता है उसे घोलने में 5-6 घंटे लगाता है।
1: अच्छा
0: और जब ये फाइबर को हमारे खून में धीरे धीरे घोलेगा तो हमारे जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन भी थोड़ा थोड़ा ही बनाएगी उसके लिए।
1: जी।
0: जब थोड़ा थोड़ा इंसुलिन बनाएगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं बनेगा हमारे शरीर में, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं बनेगा तो डायबिटीज ही नहीं होगी।
1: जी सर
0: और जिस आदमी के इंसुलिन रेजिस्टेंस बनता है उसी को फैटी लिवर होता है, और जिसको फैटी लिवर होता है उसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उसे दिल की बीमारी होती है।
1: जी।
0: तो अगर देखा जाए ये क्या है, सीधे तौर पे दिल की बीमारी को भी और लीवर की बीमारी को भी और डायबिटीज को भी और आपके पाचन को भी दुरुस्त करती है, क्योंकि जो फाइबर होता है ये इसमें जो फाइबर की क्वालिटी पाई जाती है वो पाई जाती है सोलुबल फाइबर,
1: अच्छा सर
0: जिनको कब्ज की समस्या है कई कई दिन तक वो उनका पेट साफ नहीं होता, इसे खाने से पेट भी साफ हो जाता है।
1: बिल्कुल, आपने स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के प्रति हमारे किसान भाई, हमारे नौजवान साथी जागरूक रहे, बड़ी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, और जो हमारे मिलेट्स हैं उनके लाभ के संबंध में कि किस तरह से वो हमारे स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक बात और इसी बीच में, इसी प्रश्न में की कि सावा, कोदो, कुटकी, कंगनी, तो डॉक्टर साहब जैसा आपने इन फसलों के, इन मोटे अनाजों के नाम लिए, तो हम अपने किसान भाइयों को भी जागरूक करने की दृष्टि से और आपसे एक थोड़ा सा छोटी सी जानकारी चाहते हैं कि इनकी बुवाई हमारे किसान भाई किस समय करें।
0: देखिए इसकी बुआई का समय जो है अब चल रहा है,
1: जी
0: हमारे जो कृषि विभाग के गोदाम हैं, राजकीय गोदाम हैं,
1: जी
0: बीज भी आ गया है।
1: जी
0: जैसे कि हमारे पास में रागी का बीज आता है हमारे पास में,
1: जी
0: और बाजरे का आया हुआ है, और ज्वार और मक्का का भी आया हुआ है,
1: जी
0: और इसकी जो बुआई है वो इस महीने चल रही है,
1: यानी
0: जून
1: जून से लेके और कब तक बुआई होती है इसकी?
0: जुलाई तक इसकी बुआई चलती है।
1: अच्छा सर
0: और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें पानी की मात्रा बहुत ही कम रहती है।
1: अच्छा
0: अब जैसे कि बरसात होती है, बरसात पे ही जम जाता है, और उसमें ज्यादा फर्टिलाइजर की भी जरूरत नहीं पड़ती, जो हमारे घर पर या हम अपने गड्ढों में तैयार करते हैं देसी खाद, ये उससे तैयार हो जाता है।
1: जी जी
0: इसमें
1: जी
0: ये नहीं है आप अंधाधुंध यूरिया डाल ले या डाई डाल ले, उसमें डालने की जरूरत नहीं पड़ती।
1: बिल्कुल सर बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को, हमारे नौजवान साथियों को दी और बताया कि जो ये समय चल रहा है जून से जुलाई का, तो इस समय हमारे किसान भाई मोटे अनाजों की यानी कि मिलेट्स की खेती करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, और जो हमारा स्वास्थ्य है उस पर एक अच्छा, उसको अनाज को खाकर एक स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी कड़ी में चलते चलते मिलेट्स के संबंध में और क्या कुछ संदेश या कोई जानकारी ऐसी जो रह गई हो वो हमारे किसान भाइयों को, हमारे नौजवान साथियों को आप बताना चाहेंगे, ताकि वो भविष्य में इन बीमारियों के प्रति, इन मोटे अनाजों के प्रति जागरूक रहें।
0: देखिए किसानों को मैं सबसे पहले एक बात बताऊंगा, जैसे कि हम धान उगाते हैं,
1: जी
0: 1 किलो धान उगाने में 5,000 लीटर पानी लगता है,
1: जी जी
0: और जहां हम इनको उगाते हैं अब
1: जी
0: पानी की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि अब बरसात का समय चल रहा है, इतनी बरसात हो जाती है जितने इसमें पानी चाहिए।
1: जी
0: अगर थोड़ा बहुत हमें पानी चाहिए भी तो लगा देते हैं।
1: जी
0: फिर जैसे धान होता है उसमें यूरिया की भी जरूरत पड़ती है, डीएपी की भी जरूरत पड़ती है,
1: जी
0: इसमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, इसमें ना के बराबर ही डाले जाते हैं, ये जो
1: जी
0: देसी खाद तैयार करते हैं हम FYM, उससे
1: जी
0: ये तैयार हो जाता है, केचुए की खाद इसमें डालते हैं उससे से तैयार हो जाता है ये।
1: फसल तैयार हो जाती है।
0: हाँ तैयार हो जाती है, इसमें एक तो लागत कम आती है हमारी,
1: जी जी
0: और ये बिकता बहुत महंगा है,
1: जी सर
0: इसकी कीमत भी बहुत हाई है। चीज को समझ पा रहे हैं कि अगर हम मिलेट्स नहीं खाएंगे तो आगे का जीवन हमारा कष्टदायी होगा, तो
1: जी सर
0: इसीलिए हमें मिलेट्स खाने चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में सभी लोगों को जो ये समय चल रहा है डायबिटीज की बीमारी है, ये डायबिटीज को भी ठीक करता है। पोषक तत्व तो भरपूर है,
1: जी
0: जैसे इसमें कैल्शियम है, रागी में कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है,
1: जी जी
0: ठीक है, जाहिर सी बात है आपकी हड्डी भी मजबूत रहेगी, आपके दांत भी मजबूत रहेंगे।
1: जी जी बिल्कुल सर
0: और आपको छोटी सी बात और बता दूं मैं, कि ये सिरी अन्न 5 ही प्रकार के होते हैं,
1: अच्छा सर
0: हाँ, जिसमें कंगनी हो गया, सावा हो गया, कोदो हो गया, और कुटकी हो गया, और छोटी कंगनी हो गई।

0: अच्छा जी,
1: किसानों से सीधा यही है, अगर आपको खुद भी और अपने आने वाली पीढ़ी को भी
0: जी
1: बचाना है, स्वस्थ रखना है,
0: जी
1: तो आपको दोबारा मिलेट्स पे आना पड़ेगा, मोटे अनाज पे आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पूर्वज भी यही खाते थे, इसीलिए वो बीमार नहीं होते थे।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल। और लंबा जीवन जीते थे।
1: क्योंकि हमारे खाने में विविधता नहीं है, हम केवल गेहूं और चावल खा रहे हैं, हमारे खाने में विविधता की कमी है। पहले लोगों में विविधता बहुत ज्यादा थी खाने में, वो चना भी खाते थे, मक्का भी खाते थे, ज्वार भी खाते थे, रागी भी खाते थे, कंगनी भी खाते थे, कुटकी भी खाते थे, कोदो भी खाते थे, सावा भी खाते थे, वो सब चीज खाते थे।
0: बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आज जैसे जैसे जहां हमारे किसान भाइयों ने प्रगति की है, कृषि यंत्रीकरण बढ़ा है, संसाधनों का प्रयोग करना शुरू किया है, वहीं कहीं ना कहीं हम इस दौड़ में, सरियन उगाने की दौड़ में कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं।
1: जी
0: तो बिल्कुल सर, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को मिलेट्स के संबंध में दी, और मिलेट्स का किस तरह से हमारे स्वास्थ्य पर लाभ है, ये पूरी जानकारी बड़ी विस्तृत रूप से आपने हमारे किसान भाइयों को दी। और डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: श्री अन्न और मानव स्वास्थ्य, भैया अभी आपने डॉक्टर सतनाम सिंह नागर, विषय वस्तु विशेषज्ञ ने जीववाद से हमारे भैया जितेंद्र कुमार की बातचीत सुनी।
3: बिल्कुल भैया, और देखो इसमें तो नागर जी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि ये जो मोटे अनाज हैं इन्हें खाकर हम किस प्रकार से स्वस्थ रह सकें, और भैया डायबिटीज के बारे में तो बहुत ही अच्छी जानकारी दे दी।
2: बिल्कुल, देखिए अगर हमें स्वस्थ रहना है तो भैया हमें मोटे अनाज की तरफ आना पड़ेगा, जैसे भैया कोदो होता है, कुटकी होती है, कंगनी होती है, इन्हें भैया हमें जो हमारे अन्य अनाज हैं उनके साथ जो है प्रयोग करना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हम बच सकते हैं।
3: बिल्कुल ठीक आपने कहा। देखो ये जानकारी तो मिल गई भैया, ये कुछ संदेश थे, जरा पहले इन्हें सुनो लें।
2: ठीक है भैया।

0: AIR at 90.
1: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
2: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
1: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
2: खुशहाली का नया प्रयोग।
3: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।
4: तो किसान भाइयों ने भैया जरूरी संदेश सुने, और प्रमोद भैया एक बात तो बताओ।
5: हाँ भैया।
4: भाई तुमने उड़द मूंग भी बोए नहीं?
5: अरे भैया कैसी बात कर रहे हैं। हाँ। भाई दाल खानी है तो उड़द मूंग की खेती तो करनी पड़ेगी।
4: देखो भैया ऐसा था, हमारे यहाँ ना
5: हाँ।
4: जो सरकारी बीज भंडार है
5: हाँ हाँ।
4: उसमें भैया एक योजना आई थी।
5: अच्छा जी।
4: पिछले दिनों
5: हाँ।
4: कि भैया उड़द और मूंग का जो बीज है वो भैया सब्सिडी में मिल गया।
5: अच्छा।
4: तो भैया हमने तो अपना पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखा था और वो दोनों काम हो गए, बीज मिल गया कम कीमत में और भैया जमीन खाली पड़ी थी, हमने तो बहुत ही बढ़िया।
5: सही पूछो क्या?
4: हाँ।
5: हमने भैया बीज भंडार से ही लिया था बीज।
4: भाई देखो बात यो है, मूंग और उड़द बोने के हमें दो फायदे।
5: हाँ हाँ हाँ।
4: एक तो भाई यो है कि तिलहन जो है, सॉरी दलहन जो है, वो अब इतनी कीमती होती चली जा रही है।
5: हाँ।
4: आप देख लो कोई भी दाल ले लो
5: जी भैया,
4: 100 रुपए से नीचे तो है ना।
5: ना जी ना
4: भाई, उसका कारण ये है जब हमारे किसान भाई बोने के नहीं तो किसी भी चीज की कमी आ जाएगी
5: जी।
4: और भाई मांग और पूर्ति का झगड़ा, तो भैया यो कारण है कि हम अगर स्वस्थ रहना चाह रहे हैं तो हमें ऐसे फसलें उगानी चाहिए जिसकी मांग ज्यादा हो।
5: अब भैया देखो चाहे दलहनी फसलें हों या ये दूसरी फसलें हों,
4: ठीक,
5: अब हम बात कर रहे हैं दलहनी फसलों की, मूंग की और उड़द की, तो भैया देखो ये तो ऐसी फसल है कि हर एक को बड़ा स्वाद आवे इनको खाने में। दाल है भैया उड़द की दाल होनी चाहिए।
4: हाँ।
5: और भैया उसके साथ में उड़द चावल की तो बात ही क्या है भैया, फिर तो मजा ही आ जाए कुछ और ही ना है।
4: बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, देखो कोई भी फंक्शन हो, कोई भी त्योहार हो, सब पर भैया दाल की जरूरत पड़ती
5: हाँ,
4: है।
5: हाँ, हाँ।
4: और सबसे बड़ा फायदा एक ये है खाने के अलावा कि भैया इनकी जो पौधों की विशेषता ये है कि इनमें नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने की शक्ति होती है।
5: बिल्कुल।
4: तो ये प्रकृति की जो नाइट्रोजन है उसे स्थिर कर देते हैं और तो हमें ज्यादा यूरिया डालने की जरूरत नहीं खेतों। तो भाई हमारी सरकार भी कोशिश ये कर रही है कि यूरिया का कम से कम इस्तेमाल हो
5: जी,
4: तो उस तरफ भी हम एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा सकते हैं।
5: और हमें दलहनी फसलों की खेती करनी ही चाहिए, इससे देखो भैया जैसे अभी आपने वो वायुमंडल में जो भैया नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की बातचीत करी है तो ये तो फायदा है ही। साथ ही साथ भाई हम अपने खेतों को भी उर्वरा शक्ति बढ़ा के उनसे ज्यादा उत्पादन ले सके।
4: बिल्कुल। देखो भाई हमें अपनी भूमि के बारे में जल्दी सोचना चाहिए क्योंकि देखो जो भूमि हमें भी किसी ने दी है।
5: हाँ भैया।
4: और हम यो भूमि जो है सही सलामत अपने बुजुर्गों ने दी हुई जो है ये अपने संतानों को या आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको सौंप के जावे
5: जी जी जी,
4: और उपजाऊ जमीन सौंप के जावे, यो हमारा कर्तव्य बनता है।
5: बिल्कुल।
4: क्योंकि भाई इससे जो है वैसी वसुंधरा नहीं कहते, इसमें जो कुछ भी भंडार छिपे हुए वो भैया हमारी जाने कितनी पीढ़ियां आगे वो इसका उपयोग करेंगी, तो वो जब ही कर पाएंगे जब हमारी भूमि उपजाऊ रहेगी।
5: बिल्कुल। और जो विरासत हमें हमारे बुजुर्गों ने दी है वही विरासत हमें आने वाली पीढ़ी को देनी है, तो भैया इसको हम क्यों ना उस रूप में दें जिस रूप में ये हमें मिली थी, और इसकी सही देखभाल हम करें। इस पे भैया देखो अन्न तो पैदा करना ही है, लेकिन अन्न भी अगर हम सही तरीके से पैदा करेंगे तो भैया आमदनी भी बढ़ेगी, जमीन भी सुरक्षित रहेगी और यूं समझो कि पर्यावरण भी ठीक ठाक रहेगा।
4: बिल्कुल। देखो दलहनी फसलों की एक खास बात और होती भैया, वो कम टाइम में आ जाए।
5: हाँ।
4: तो हमें अगर भैया जल्दी जल्दी आमदनी लेनी है तो हमें दलहनी फसलें उगानी चाहिए।
5: बिल्कुल उगानी चाहिए।
4: कम टाइम में 3 में 4 महीने में बहुत बढ़िया सी फसल तक पक तैयार हो जाती है और एक बढ़िया सा हमें उत्पादन मिल जाता है, आमदनी अच्छी हो जाती है, भूमि की उपजाऊ शक्ति हमारी बढ़ जाती है। तो भैया हम तो अपने किसान भाइयों को ये सलाह देंगे कि भाई हर साल थोड़ी थोड़ी करके आप दलहन फसलें उगानी शुरू करो।
5: बिल्कुल। और देखो भैया, जहाँ तक है जंगली जानवरों से अपनी फसल को बचाने की बात, तो देखो भैया फसल की रखवाली तो हम सभी की करें।
4: बिल्कुल
5: भाई, चाहे वो धान की फसल हो, गेहूं की फसल हो, गन्ने की फसल हो या कोई और फसल हो, रखवाली तो सबकी करनी पड़े।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
5: वैसे ही भैया, हम अगर दलहनी फसलें भी बोएंगे तो उनकी भी सही तरीके से देखभाल करके इनसे भी अच्छा उत्पादन हम ले सके।
4: भाई देखो, जहाँ तक आपने रखवाली की बात करी, तो यो कोई जरूरी यो ऐसा कोई बात ना ना भैया, यो हो जगह वो हो जगह। पहले जमाने में टिड्डियों का दल आया करता था। आज कहाँ है?
5: कहीं भी नहीं।
4: उसके बाद भैया यो हो गया कि भाई माहे बहुत आ रहे हैं, नील गाय बहुत आ रहे हैं। फिर ये हुआ कि भाई वो दुनिया भर के और जंगली जानवर आ गए। तो समय के साथ साथ ही आते रहते हैं और समय के साथ साथ ही जाते रहते हैं।
5: अब भैया देखो, किसान है, किसान को तो हर परिस्थिति का सामना करने की आदत रहे। तो हमें तो भैया अपने खेतों में हर परिस्थिति में अन्न पैदा करना है, हर तरीके की फसलें उगानी है, और भैया अपने आप को भी खुशहाल रखना है और देश में भी खुशहाली लानी है।
4: देखो, बात आपने खुशहाली की करी तो असली खुशहाली जब आती है, जब मनोरंजन हो जाए।
5: बिल्कुल बिल्कुल। आपने भैया किसान भाइयों के मन की बात कह दी, तो जल्दी से सुनवा दो, क्या सुनवा रहे हैं?
4: तो भाई आपको सुनवाते हैं ये प्यारी सी रागनी।
5: ठीक है भैया।

0: तन से मन की हुई लड़ाई होया मुकदमा वारी। भैया आपने महनपाल सिंह और साथियों की आवाज़ में ये बहुत ही प्यारी सी रागनी सुनी और उम्मीद है प्रमोद भैया हमारे किसान भाइयों का मनोरंजन हुआ होगा।
1: बिल्कुल भैया, देखो किसान भाइयों को रागनी अच्छी लगी होगी और भैया वो हमें चिट्ठी में लिख कर जरूर बतावेंगे कि भैया उन्हें हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा।
0: हाँ तो बिल्कुल, देखो भाई आपको कोई खेती किसानी पशुपालन या बागवानी आदि संबंधी समस्या अगर आपकी है तो आप हमें खत लिख सकते हैं। खत लिखने के लिए मैं आपको अपना पता बता देता हूँ भैया। कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन कोड 246763। और भैया देखो किसी वजह से आप चिट्ठी ना लिख सको तो भैया आप फोन कर सकते हैं।
1: जी जी जी।
0: और कल जो है भैया यानी कल कुछ 6:05 से लेकर और भैया 6:45 तक आप अपनी कोई भी खेती किसानी की समस्या हो तो हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है हालो किसान, उसमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए आपको फ़ोन नंबर बता देते हैं 9457-07-8288।
1: तो देखो भैया आपने ये सब तो बता ही दिया है और किसान भाई चिट्ठी भी लिखेंगे हमारे पास में फोन भी करेंगे। भाई चलते चलते मौसम की जानकारी भी दियो दे हैं।
0: हाँ बिल्कुल बताओ भैया।
1: देखो भैया ये मौसम की जो चिट्ठी हमारे पास में आई है यो भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आई है लखनऊ से। इसमें बताया गया है भैया कि हमारे जनपद बिजनौर और आसपास के बहुत सारे जनपदों में आंधी और भैया मध्यम से तीव्र वर्षा होने की संभावना है।
0: बिल्कुल, तो भाई देखो ऐसे मौसम की एक संभावना व्यक्त की जा रही है, उसको देखते भैया आप अपनी तैयारी जारी रखें और भाई अपनी जो भी फसल हैं जैसे भैया आपने अगर धान की नर्सरी नहीं करी है तो वो कर दो, आपने अगर भैया अभी भी अपने गन्ने में जो है गूल वगैरह नहीं चढ़ाई मिट्टी नहीं चढ़ाई तो वो चढ़ाने का काम कर दो। तो इस तरह से अगर आप ध्यानपूर्वक काम करेंगे तो आपकी फसल भी अच्छी होगी।
1: बिल्कुल,
0: और आपकी आमदनी भी अच्छी होगी।
1: और भैया हम भी आपके बीच में इसी तरीके से इस कार्यक्रम को लेकर आते रहेंगे, बस आप हमारे पास में चिट्ठी भेजते रहो और भैया व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं, वो नंबर भी आप जानो, ये वो नंबर है 94।

0: में 570 78 288।
1: इसके अलावा भैया आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं आकाशवाणी नजीबाबाद के नाम से। तो कुल मिला के देखिए तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, बस आप ऐसी अपना प्रेम हमसे बनाए रखो। तो अब इसी के साथ आज का कृषि जगत कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया आलोक कुमार गंगाराम
0: और भैया प्रमोद सिंह को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों राम राम, राम।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर। समय शाम के 6:45 और आइए अब सुनते हैं 90 साल बेमिसाल कार्यक्रम के अंतर्गत रेडियो प्रसारण के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में विशेष भेंटवार्ता, जिसमें रेडियो श्रोता पराग से बातचीत करेंगी निधि भारद्वाज।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90 साल बेमिसाल। जी हाँ, आकाशवाणी के 90 साल बेमिसाल कार्यक्रम शुरू हो चुका है और आज इस क्रम में हम आपसे जुड़ते ही हैं। और इस कार्यक्रम में मेरे साथ आपसे बातचीत करने के लिए स्टूडियो में पहुंच चुके हैं पराग अग्रवाल जी मेरठ से। और आपका पराग जी बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू मैम।
1: हम अपने श्रोताओं को बता दें कि पराग अग्रवाल जी मेरठ में कंटेंट क्रिएटर हैं और मेरठ में मेट्रो गाय के नाम से आपका चैनल है। अपने श्रोताओं को बताइएगा आप इसके बारे में और फिर हम आकाशवाणी के 90 साल के सफर की ओर बढ़ते हैं।
2: जैसे कि अभी मैम ने बताया कि यहाँ 90 साल पूरे हो चुके हैं, तो उसी के लिए यहाँ पे हम सब जगह से जुड़े हैं। मैं हूँ एक कंटेंट क्रिएटर जो मेरठ में मेट्रो चल रही है उसके ऊपर हम मेरठ मेट्रो गाय के नाम से सोशल मीडिया पे पेज चलाते हैं और मेरठ की मेट्रो जो दिल्ली से कनेक्ट है सीधी उसकी इन्फॉर्मेशन अपने सभी मेरठ वासियों को देते हैं।
1: देखिए, इसके बारे में भी आपसे अगले किसी कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी बात जब हम कर रहे हैं कि 90 साल बेमिसाल की, तो इसमें आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि किस तरह से आकाशवाणी का सफर ये जो चल रहा है 90 वर्षों का, आपके नजरिए से कैसा है?
2: जैसे मैम ने बताया अभी कि मैराथन का आयोजन किया गया है, यहाँ पे आके हमने देखा कि एक हर एज ग्रुप के लोग यहाँ पे आके जुड़े हुए हैं, जो सब आकाशवाणी से काफी पहले से लगता है जुड़े हुए हैं। काफी अच्छा आयोजन यहाँ पे किया गया था और आकाशवाणी को हम देखें तो हम रेडियो के माध्यम से भी इसे सुनते हैं। कम्प्लीट इंडिया में 23 लैंग्वेज में अपनी इन्फॉर्मेशन, काफी चीजें लाइक स्टोरी वगैरह, लव स्टोरी या इन्फॉर्मेशन न्यूज वगैरह देते हैं।
1: सही कहा आपने, क्योंकि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हमारा ये एक संकल्प है और हमें इस आदर्श पर खरा उतरते हुए अपने श्रोताओं से जुड़ते हैं। पराग जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो आकाशवाणी पे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, श्रोताओं के लिए कितने कारगर हैं आपके नजरिए से?
2: जो भी लोग इन्हें सुनते हैं, जैसे देखा जाए आज की टेक्नोलॉजी के युग में लोग आज भी रेडियो सुनते हैं, इनसे काफी टाइम से लोग जुड़े हुए हैं, सबको सुन के काफी अच्छा लगता है कि हर तरह के कंटेंट पे ये अपनी इन्फॉर्मेशन लोगों तक शेयर करते हैं, जो लोगों को काफी अच्छा लगता है।
1: आपने जैसे जिक्र किया कि 8 मई 2026 को आकाशवाणी ने एक वॉकेथन की और इस पद यात्रा से जब हम जुड़े, तो अपने श्रोताओं को बताते रहते हैं कि 90 साल और भी यादगार बन गए। तो 90 साल में जब हमने ये पद यात्रा करी, उसे आप बताइए कि हमारे श्रोताओं को क्या संदेश पहुंचा होगा?
2: संदेश जैसे हमने यहाँ पे आके देखा, कुछ टाइम में लाइव भी आने वाली है, लाइक सोशल मीडिया पे भी ये लाइव आएगी और न्यूज चैनल पे भी ये लाइव आने वाली है, तो यहाँ काफी मोटिवेशनल है। सबसे बड़ी बात यहाँ देखिए यूनिटी की, यहाँ पे सभी लोग आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं, कितने टाइम से जुड़े हुए हैं और काफी अच्छा अरेंजमेंट यहाँ किया गया।
1: इससे हमारे जो श्रोता है वो जानेंगे कि चलने से हमारा स्वास्थ्य कितना अच्छा रहता है और हम एक दूसरे से कड़ी से जुड़ते चले गए। अभी जब पहला समय था, लोग ट्रांजिस्टर को सीने से लगाकर चलते थे और अब हम देख रहे हैं कि आपके हाथ में मोबाइल है, तो आप मोबाइल से रेडियो सुनते हैं कि अभी आपका वही पुराना ट्रांजिस्टर आपके पास है?
2: नहीं, ट्रांजिस्टर तो नहीं है। क्या होता है, कभी कभी जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं तो रेडियो तो बिल्कुल सुनना ही होता है, क्योंकि उसमें हर तरह का उसमें कंटेंट आपको मिल जाता है और वही सबसे अच्छा लगता है।
1: हाँ जी, हमारे नजीबाबाद से हम कई तरह के नाटक टॉक शो करते रहते हैं और फिल्म संगीत हमारे श्रोता सुनते हैं, हेलो नजीबाबाद कार्यक्रम सुनते हैं, जागरूक श्रोता सुनते हैं और युवाणी के विभिन्न कार्यक्रम, महिला जगत और बाल वाटिका जैसे कार्यक्रम हम सुनवाते रहते हैं। आपका पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा है?
2: नजीबाबाद में काफी कुछ जो लव स्टोरी वगैरह भी यहाँ शेयर की जाती है,
1: युवाणी के कार्यक्रम से आप बहुत प्रभावित
2: हैं, वो हम काफी अच्छा सुनते हैं, जो हमें अच्छा लगता है।
1: हाँ जी, और सत्यम शिवम सुंदर

0: रंग की जैसे एक गूंज होती है, यही संदेश हमारा आकाशवाणी भी देता है। तो आप हमारे श्रोताओं को कुछ और जैसे बताना चाहते हैं कि कैसा लगता है कि जब हम रेडियो को सुन रहे होते हैं।
1: तो अभी क्या है कि जैसे मोबाइल के टाइम में कि लोग बाग रेडियो भी सुनते हैं, तो ये काफी अच्छा लगता है सबको सुनने में। रेडियो से इन्फॉर्मेशन भी अच्छी मिलती है, और आकाशवाणी की बात करें तो वो तो 90 साल हो चुके हैं, लोगों से अभी तक भी जुड़े हुए हैं इतने टाइम से, और लोग बाग उन्हें अभी तक भी सुनते आ रहे हैं अपने।
0: हाँ, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि 6 स्टेशनों से शुरू हुआ था ये कारवा, और आज तो दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क के रूप में हर घर आंगन का
1: बिल्कुल सही
0: हम
1: कहा,
0: हिस्सा
1: बिल्कुल सही
0: बन
1: कहा मैम
0: चुके हैं।
1: आपने।
0: और बताइए कि जैसे आपके घर में कुछ और लोग भी होंगे आपके अलावा, कौन कौन है?
1: फैमिली में मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर भी हैं, भाभी हैं, और मेरी खुद भी, मैं मैरिड हूँ, मेरी वाइफ है, बेबी है एक छोटा, साथ में ही रहते हैं सब हम।
0: उनमें से सबसे ज्यादा रेडियो के कार्यक्रम सुनने का शौक किसको है?
1: फादर मदर को
0: अच्छा, वो तो पुरानी
1: सबसे
0: समझ
1: ज्यादा
0: में
1: वही
0: आप
1: लोग सुनते हैं।
0: लगभग आपने जब बचपन से उन्हें देखा होगा, कौन से कार्यक्रमों को आपने उनको विशेष रूप से सुनते,
1: हास्य कह लीजिए कि हंसी मजाक के जो उस पर कंटेंट चलता है उस समय का, वो ज्यादा सुनना पसंद करते हैं।
0: यानी कि बहुत जिंदा दिल हैं आपके पेरेंट्स। और जब हम गीत संगीत की बात भी करते हैं तो शास्त्रीय संगीत है, लोक संगीत है इसमें, और कभी कभी हम अपने जो अपने कलाकार भी होते हैं उनको भी बुलाकर सुनते हैं, कुछ रुहिलखंडी गीत कभी हम सुन लेते हैं। तो ऐसा कोई गीत जो कभी आप गाते हो, गुनगुनाते हो, या फिल्मी गीत आप गाते हो?
1: अपने
0: हाँ,
1: मदर फादर को हमने सुनते हुए देखा है कि वो म्यूजिक वगैरह काफी अच्छे से सुनते रहते हैं रेडियो पे, या
0: आपको
1: फिर
0: केवल सुनने का शौक है,
1: उन्हें देखते रहते हैं, उन्हीं से अच्छा लगता
0: कभी
1: है सब
0: कभी कोई
1: कुछ।
0: गीत आपने सुनते सुनते गुनगुनाया?
1: नहीं ऐसा तो कोई
0: चलिए कोई बात नहीं, आप गीत सुनने के शौकीन हैं, सुनाने के नहीं हैं।
1: हाँ।
0: पर अपने बच्चों के हाथों में भी जब हम देखते हैं कि बहुत सारे मोबाइल आ रहे हैं, मोबाइल में बहुत सारे अलग अलग तरह के वीडियोस वो देखते हैं, या फिर कुछ अपनी कविता पाठ वगैरह उसी से करते हैं, तो क्या आप कहते हैं कि रेडियो भी सुना
1: हाँ, जब
0: करें?
1: वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हैं रेडियो सुनते, तो उन्हें भी लगता है कि वो उसे सुने, और उन्हें भी अच्छा लगता है कि उसमें जो भी चल रहा है,
0: हाँ
1: क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उसमें कोई भी वीडियो नहीं आती, केवल ऑडियो के माध्यम से आप लोग सुनते हैं, तो कुछ आपको नुकसान भी नहीं है
0: हाँ हाँ
1: उसके।
0: वैसे अब हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर
1: हाँ,
0: भी
1: वो लोग
0: आकाशवाणी
1: ज्यादा,
0: के पेज को फॉलो करते
1: हाँ
0: हैं लोग।
1: इंस्टाग्राम पे, लाइक सोशल मीडिया पे, किसी सभी जगह आकाशवाणी का पेज भी है, मैं खुद इनको एक फॉलोअर्स हूँ, और वहां पे उनका कंटेंट देख के काफी अच्छा लगता है जब वो लोग लाइव आते हैं या अपना कोई कंटेंट बनाते हैं।
0: मैं देखना चाह रही थी कि आप भले ही गीत नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ पंक्तियां आप मुझसे पहले कह रहे थे कि मैं जरूर कहूंगा, अब बता दीजिए अपने श्रोताओं को क्या कहना चाहते हैं।
1: मैं आपके लिए एक पंक्ति बिल्कुल कहूंगा, 90 बरसों की यादें हैं, 90 बरसों का प्यार, आकाशवाणी खड़ा है आज बनकर ज्ञान का आधार।
0: वाह वाह वाह, बहुत ही सुंदर बात आपने कही है। सच में श्रोताओं, ये 90 वर्षों की ही यादें हैं, और हम इसी से अपने श्रोताओं से जुड़ रहे हैं, और इसी में मैं भी कुछ आपसे कहना चाहती
1: जी
0: हूँ।
1: मैम,
0: हवाओं के कंधों पर चढ़कर, हवाओं के कंधों पर चढ़कर जो हर घर तक आता है, अनदेखा होकर भी जो अपनों का सा रिश्ता निभाता है, वो है हमारा आकाशवाणी।
1: बहुत बढ़िया।
0: और आकाशवाणी की लाइन आपने हमेशा ही सुनी होगी कि हम आकाशवाणी की नजीब बात की तरह से बोल रहे हैं, तो जैसे ही हम इसको बोलते हैं श्रोताओं को कैसा लगता होगा?
1: इस लाइन के जैसे हम रेडियो पे सुनते हैं तो वहीं कनेक्ट हो जाते हैं, क्या होता है कि कुछ चेंज करना तो हम वो भी करना छोड़ देते हैं कि आकाशवाणी नजीबाबाद ही हमें सुनना है।
0: और श्रोता आपको सुनते हुए ये भी जरूर जानना चाह रहे होंगे कि आप मेरठ से हमारे इस सफर में जुड़ चुके हैं, आपको हमारे साथ जुड़े हुए लगभग कितना समय हो गया है?
1: काफी टाइम से हम यहाँ पे जुड़े हैं, पिछले 7-8 साल से हम आकाशवाणी नजीबाबाद को सुन भी रहे हैं, बल्कि इंस्टाग्राम पे जब से इनका पेज है उसे फॉलो भी करते हैं, और सुनना भी काफी पसंद करते हैं।
0: जो हमारे इंस्टाग्राम पर लोग जुड़ते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल संदेश आपका?
1: अभी तक आपने चैनल वगैरह इनका फॉलो नहीं किया है तो बिल्कुल फॉलो कर लें, जिससे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, और होपफुली आपको अच्छा लगेगा कि आपने एक अच्छा चैनल फॉलो किया है।
0: और आकाशवाणी की बहुत सारी खासियत है, अगर हम अपने मुंह से कहेंगे तो श्रोता कहेंगे कि निधि भारद्वाज तो बोलती ही रहती हैं, पर हम जानते हैं कि हमारे श्रोता भी उसमें बहुत कुछ जानते हैं।

0: बट जब सभी लोग सुनते हैं, चाहे वो देश में सुने विदेश में सुने, याद तो सबको आकाशवाणी के आते हैं कि इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं अपने रेडियो के माध्यम से, काफी अच्छा लगता है सबको सुन के।
1: हाँ जी, क्योंकि इसमें ना केवल गीत संगीत है बल्कि कुछ समाचार
0: स्टोरीज वगैरह
1: है,
0: भी होती हैं, न्यूज़ भी होती हैं, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है।
1: न्यूज
0: जो
1: से हमारे श्रोताओं को क्या फायदा हो सकता है?
0: न्यूज़ से कि आप जो करंट कंटेंट है या करंट इन्फॉर्मेशन है उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन ऑन एयर मिल सकती है, तो ये तो काफ़ी अच्छी है, मतलब अच्छी चीज़ है।
1: तो 90 साल बेमिसाल हमारे चल रहे हैं, उसमें हमारे बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम भी आते हैं, जैसे मुझे याद है जरा जरा और सुहाना सफर, इसके अलावा विशेष कार्यक्रम अब लगातार चलते ही रहेंगे, तो हमारे श्रोता उनसे जुड़ेंगे और उसमें उनकी यादें भी शामिल हो जाएंगी। आपकी कोई ऐसी विशेष याद जो आप हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहते हैं?
0: आकाशवाणी पे सबसे ज़्यादा हम अपना जो म्यूज़िक का कंटेंट होता है या म्यूज़िक वगैरह होती है उसी को सुनते हैं। कुछ जो कॉमेडी होती है, कॉमेडी इसमें स्टोरी भी आती हैं, वो भी हमें काफ़ी अच्छी लगती हैं, तो होपफुली आपको भी सभी को अच्छी लगती होंगी।
1: तो श्रोताओं, ये तो हमने पराग जी से बात की और मेरठ मेट्रो गायक के नाम से अपना एक चैनल चलाते हैं और मेरठ में कंटेंट क्रिएटर हैं, और 90 साल बेमिसाल में आए, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम, आपका भी।
2: अभी आप सुन रहे थे 90 साल बेमिसाल कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष भेंटवार्ता, जिसमें पराग से बातचीत कर रही थी निधि भारद्वाज। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। समय शाम के 6:55 और श्रोताओं आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत छाया गीत। स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का आज के छाया गीत कार्यक्रम में।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म कटी पतंग से ये गीत। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत था आरडी बर्मन का। कार्यक्रम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म है आया सावन झूमके। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत छाया गीत। और कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म राम तेरी गंगा मैली से, आवाजें हैं लता मंगेशकर।

और लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हमजोली से ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, साथ में आशा भोसले ने, और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत छाया गीत। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 7:15 हो रहे हैं। हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर से याद दिला दें, प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से सुनिएगा आज रात्रि 10 बजे। और सुगम संगीत में आज शाम 7:32 पर गुलाम हुसैन साबरी और साथियों की गाई कव्वालियां पेश की जाएंगी। गीत संध्या कार्यक्रम होगा आज 8 बजे। साथ ही 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। और श्रोताओं, आज रात्रि 9:30 पर सुनना ना भूलें कविंद्र रविंद्रनाथ ठाकुर का लिखा नाटक प्यासे पत्थर। तो ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल सुबह 9:15 पर जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से बात आसपास की ये कार्यक्रम होगा। कल सुबह 9:50 पर और सुबह 10 बजे सुनिएगा कार्यक्रम सुहाना सफ़र। साथ ही कल सुबह 10:30 पर बिल्कुल भी सुनना ना भूलें कार्यक्रम जागरूक श्रोता। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग कल पूर्वाहन 11:30 पर और प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया सुनिएगा कल दिन में 12 बजे। श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद कल रात्रि 9:30 पर और फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रात की हमसफर सुनिएगा कल रात्रि 10:30 पर। 6:05 पर होगा भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदना और 6:30 पर आनंद लीजिएगा श्री रामचरित मानस गान का। चिंतन आप सुनेंगे सवेरे 6:40 पर।

खेती की बातें कार्यक्रम का समय रहेगा कल सवेरे 7:10 पर, और स्वास्थ्य चर्चा 7:05 पर, सूरज के साथ साथ रोज की ही तरह कल सवेरे 7:31 पर। तो ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के प्रमुख कार्यक्रमों के।

स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिंग के।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के पहले दिन संस्कृति आधारित सतत विकास पर हुआ मंथन। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया समेत 11 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व पर्यावरण दिवस पर लखनऊ से करेंगे प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ। राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का है लक्ष्य। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लखनऊ में करेंगे बायो युग ग्रीन कमांड का शुभारंभ। बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देगी यह पहल। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कल से 21 जून तक होंगे विशेष आयोजन। मुख्यमंत्री ने दिए विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। वाराणसी में आज से 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की शुरुआत हो गई है। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक में रूस, इथोपिया और मिस्र हाइब्रिड मोड में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि इस आयोजन में रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संस्कृति आधारित सतत विकास आदि विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है।
2: तो बैठक में जो मेन मुद्दे हैं कि कहाँ पे जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज हैं वो कैसे सहयोग कर सकते हैं, जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, जो हमारे आर्टिसंस हैं, आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, उनको कैसे हम आपस में कोलैबोरेट करा के जो हमारे मेंबर कंट्रीज की अर्थव्यवस्था है उसमें उनका योगदान बढ़ा सकते हैं। जो नए चैलेंजेस हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है, उसको कैसे हम सबको मिलके उस पर काम करना है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लखनऊ के कुकरैल वन क्षेत्र में पौधरोपण कर प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस वर्ष राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश के 17 नगर निगमों, 825 विकास खंडों, 762 नगर निकायों समेत सभी ग्राम पंचायतों में यह अभियान कल पूरे दिन चलेगा। वन विभाग के साथ ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, उद्यान आदि विभागों के सहयोग से अमृत सरोवरों, तालाबों, सड़कों, एक्सप्रेसवे, नदियों के किनारे पौधे लगाए जाएंगे। इसमें विद्यालयों, महाविद्यालयों, स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों की भी सहभागिता होगी। पौधरोपण अभियान के तहत लखनऊ मंडल में 62 लाख, वहीं बरेली और प्रयागराज में करीब 32 लाख पौधे लगाए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।

0: रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह कल से 3 दिवसीय दौरे पर राजधानी पहुंचेंगे। दौरे के पहले दिन रक्षा मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में बायो युग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ करेंगे। यह पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। इस कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, उद्योग जगत, रक्षा क्षेत्र, शोध संस्थानों और पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रदेश में 8, 9 एवं 10 जून को आरक्षी, नागरिक, पुलिस और समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग द्वारा रियायती किराए पर अंतर जनपदीय विशेष बसों का संचालन किया जाए। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने कहा है कि भर्ती परीक्षा की शुचिता, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ किसी भी स्तर पर समझौता ना हो। उन्होंने अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए यातायात प्रबंधन की प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने 6 जून को परीक्षा आयोजन का पूर्वाभ्यास कराने और सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस परीक्षा में लगभग 29 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
0: प्रदेश में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित टीजीटी भर्ती की 2 दिवसीय लिखित परीक्षा आज सकुशल संपन्न हो गई। परीक्षा में लगभग 50% पंजीकृत अभ्यर्थी ही शामिल हुए। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया, परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए AI आधारित मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक सत्यापन और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के कारण परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और विश्वसनीय रही। नई दिल्ली में आयोजित पीएम सूर्यघर पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत देश भर में हुए सोलर इंस्टॉलेशन के आधार पर प्रदेश ने टॉप 3 स्टेट इंस्टॉलेशन श्रेणी में 3रा स्थान प्राप्त किया। जिला स्तर पर सोलर इंस्टॉलेशन और राज्यवार वेरी हाई कंज्यूमर बेस श्रेणी में प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर आकाशवाणी एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया, जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई, जिससे कारोबार करना आसान हो गया। वहीं 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस JEM की शुरुआत की गई। JEM पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र में एनडीए सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में कल से 21 जून तक विशेष आयोजन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन जनभागीदारी आधारित कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनसेवा, सुशासन, पर्यावरण संरक्षण, युवाओं के हित और जनकल्याण से जुड़े प्रत्येक कार्यक्रम का क्रियान्वयन संवेदनशीलता और जन सहभागिता के साथ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि 5 से 21 जून तक की अवधि में जनप्रतिनिधि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि चौपालों का आयोजन कर जन समस्याओं के समाधान, योजनाओं की समीक्षा और शिकायतों के निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था की जाए। समाचार कक्ष से तन्वीर फातिमा।
0: इसी क्रम में आज विभिन्न जनपदों में मंत्रियों और जन

0: प्रतिनिधियों ने प्रेस वार्ता कर इस विशेष जागरूकता अभियान के बारे में जानकारी दी। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कानपुर में मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल भारत के उत्कर्ष, आत्मविश्वास और वैश्विक प्रतिष्ठा के वर्ष रहे हैं।
1: इन 12 वर्षों में जो उनके कार्य और कृतित्व रहा वो बेमिसाल रहा। ये 12 वर्ष भारत के उत्कर्ष इसके रूप में सिद्ध हुआ है। और यदि हम कहें कि उनके कार्यों को गिनाना शुरू करें जनहित के, देश हित के, अंतर्राष्ट्रीय जगत के हित के, तो एक ग्रंथ बन जाएगा। उन्होंने बड़े और कड़े निर्णय लिए हैं जिनकी कल्पना करना जनता सोच भी नहीं सकती थी।
0: 17 जून को अफगानिस्तान और भारत की टीम के बीच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष सचिन आनंद शुक्ला ने बताया, मैच के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हमीरपुर समेत प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में आज तेज आंधी और बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। मौसम विभाग ने कल भी प्रदेश के अधिकांश जनपदों में कहीं कहीं हल्की बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के पहले दिन संस्कृति आधारित सतत विकास पर हुआ मंथन। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया समेत 11 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व पर्यावरण दिवस पर लखनऊ से करेंगे प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ। राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का है लक्ष्य। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लखनऊ में करेंगे बायो युग ग्रीन कमांड का शुभारंभ। बायोप्लास्टिक को बढ़ावा देगी यह पहल। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कल से 21 जून तक होंगे विशेष आयोजन। मुख्यमंत्री ने दिए विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
2: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो।
3: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 7:32 और लीजिए पेश है सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत गुलाम हुसैन साबरी और साथियों की कई कव्वालियां।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
3: आकाशवाणी नजीबाबाद केंद्र से इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम हुसैन साबरी और साथियों की गायी कव्वालियां।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं सुगम संगीत कार्यक्रम, और आज हम आपको कार्यक्रम के अंतर्गत सुनवा रहे हैं गुलाम हुसैन साबरी और साथियों की कव्वालियां।

सुगम संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे गुलाम हुसैन साबरी और साथियों की इकाई कव्वालियाँ। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। संध्या के 8 बज रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का आज के गीत संध्या कार्यक्रम।

कार्यक्रम का ये पहला गीत श्रोताओं आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म थी छलिया। गीत लिखा था कुमार जलालाबादी ने और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। कार्यक्रम की अगली पेशकश अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में फिल्म है फिर तेरी कहानी याद आई। गीत लिखा है कातल शिफाई ने और संगीत है अनु मलिक का।

0: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संध्या।
1: सूचना, ज्ञान एवं मनोरंजन से भरपूर प्रसारण के 90 वर्षों से हम हैं आपके साथ, क्योंकि हम हैं आकाशवाणी।

एक बार फिर से स्वागत है सभी श्रोताओं का कार्यक्रम गीत संध्या में। और कार्यक्रम में अगला गीत चित्रा सिंह की आवाज में फिल्म है अशोका। गीत लिखा है गुलजार ने और संगीत है अनु मलिक का।

चित्रा सिंह की आवाज़ में आपने सुना फिल्म अशोका का ये गीत। शब्द रचना थी गुलजार की और संगीत था अनु मलिक का। और आई श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत। फिल्म है ये रास्ते हैं प्यार के। महबूब के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अदनान सामी ने।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संध्या और कार्यक्रम की अगली पेशकश अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में फिल्म है साया। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है MM करीम का।

और श्रोताओं लीजिए कार्यक्रम गीत संध्या के अंत में सुनिए श्रेया घोषाल को। फिल्म है जस्म, गीत लिखा है नीलेश मिश्रा ने और संगीत है MM करीम का।

आशुतोष, इसी गीत के साथ ही आज का गीत संध्या कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत संध्या। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। समय संध्या के 8:30 और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। और श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं 8 अगस्त 1997 में आई फिल्म परदेश के चंद गीत। श्रोताओं, इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक थे सुभाष घई। मुक्ता आर्ट्स के बैनर तले इस फिल्म को बनाया गया था। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसमें शाहरुख खान, महिमा चौधरी और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आइए अब कार्यक्रम में सुनते हैं इस फिल्म का ये पहला गीत।

शंकर महादेवन और के एस चित्रा की आवाज़ में आपने सुना फिल्म परदेस का ये गीत। तो और आइए अब आपको सुनवाते हैं सोनू निगम, हेमा सरदेसाई और साथियों की आवाज़ में परदेस फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है और कार्यक्रम है एक ही फिल्म से। आज कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म परदेश के कुछ गीत, और आइए अब सुनते हैं कुमार सानू की आवाज में ये खूबसूरत गीत।

0: और श्रोता, इसी गीत के साथ ही आज का एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत एक ही फिल्म से। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री

0: पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
1: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ का ग्रोथ इंजिन है।
0: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
4: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
6: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई स्टार्टअप महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक प्रदान करता है।
4: सूक्ष्म लघु और

0: उद्यम MSME के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
3: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा। चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
1: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
4: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में MR अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की। दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में

0: आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इम्पोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इम्पोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ का ग्रोथ इंजिन है।
1: ये आकाशवाणी है। अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान ने एक करारदाद पास की है जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में मजीद फौजी कार्रवाई करने से रोकने को कहा गया है। यह करारदाद जंग को मुस्तरद करने के कामयाब मुजाहिरे में चार रिपब्लिकन अराकीन के डेमोक्रेट्स के साथ शामिल होने के बाद 208 के मुकाबले 215 वोटों से कामयाब रही। ट्रंप के जंग से मुतालिक इख्तियारात को लगाम लगाने की गरज से ऐवान के जरिए ये चौथी कोशिश है, जिसके लिए बकौल तनकीद निगारों के कांग्रेस की मंजूरी का फुकदान है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने चेहरे की शनाख्त के जरिए तस्दीक का एक निजाम वजह किया है ताकि इम्तिहान के अमल की सालमियत को बेहतर बनाया जा सके और असल की जगह फर्जी फर्द के जरिए इम्तिहान देने की रोकथाम की जा सके। कमीशन ने हाल ही में मुनक़िदा सिविल सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इब्तदाई इम्तिहान 2026 के दौरान कामयाबी के साथ चेहरे की शनाख्त के जरिए तस्दीक के अमल को नाफिज किया। चेहरे की तस्दीक का प्रोटोकॉल इस बात को यकीनी बनाता है कि दरखास्त फॉर्म पुर करने के वक्त उम्मीदवार का जो फोटो अपलोड किया गया था वो उम्मीदवार वही है जो इम्तिहान देने के लिए एडमिट कार्ड के साथ इम्तिहान देने पहुंचा है। एक भारतीय निजात दिल के इमराज के माहिर सर्जन डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए ज्ञाना से भारत में तवील फासले की रोबोटिक टेली सर्जरी कामयाबी के साथ अंजाम देकर एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। ये टेली सर्जरी ज्ञाना में जॉर्ज टाउन पब्लिक अस्पताल और इंदौर में IRCAD इंडिया के दरमियान रिमोट तरीके से अंजाम दी गई है। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता आज साकेत के मैक्स अस्पताल गईं और कल मालवीय नगर में आग लगने के बड़े वाकये में जख्मी लोगों की खैरियत मालूम की। उन्होंने जख्मी अफराद और उनके कुंबे के लोगों से भी बातचीत और उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों से भी उनके जारी इलाज के बारे में मालूमात हासिल की और ओहदेदारान को सभी जरूरी मदद फराहम करने की हिदायत दी। आग लगने के इस बड़े वाकये में हलाक होने वालों के कुंबों को 10-10 लाख रुपए की नकद इमदाद का ऐलान किया गया है। शदीद तौर पर जख्मी लोगों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जुनूब मगरबी मानसून आज केरलम पहुंच गया है। भारत के महकमा मौसमियात ने अगले 7 दिन के दौरान केरलम और कर्नाटक में ज्यादा और बहुत ज्यादा बारिश और तमिलनाडु में बहुत ज्यादा बारिश की पेशगोई की है। कल माहे पुडुचेरी और क्राइकल में बहुत और बहुत ज्यादा बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिन के दौरान अंडमान निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, मध्य महाराष्ट्र, जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड और शुमाल मशरकी रियासतों में बहुत ज्यादा बारिश की पेशगोई की है। इधर दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते में आज तेज बारिश हुई जिसके सबब गर्मी और हब्स की सूरत हाल से राहत मिली। महकमा मौसमियात ने आज रात हल्की और बहुत हल्की बारिश की पेशगोई की है जिसमें बिजली की गरज चमक भी शामिल है। जकार्ता में हुए इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की भारतीय जोड़ी मर्दों के डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज एक सख्त मुकाबले में मलेशिया की जोड़ी आरुनताई और कांगखाई सिंह को 16-21, 21-15 और 21-19 से शिकस्त दी है, जबकि सिंगल जुमरे में PV सिंधु और आयुष शेट्टी के अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शिकस्त के बाद भारत की मुहिम खत्म हो गई है। भारत ने मुक्केबाजी की हालिया आलमी दर्जा बंदी में अपनी मजबूत पोजीशन बरकरार रखी है। ख्वातीन के 57 किलोग्राम के जुमरे में जैस्मीन लेम्बोरिया आलमी नंबर 1 पर पहुंच गई हैं, जबकि एशियाई चैंपियंस प्रिया घंगा 60 किलोग्राम और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम के अपने अपने जुमरे में टॉप 3 में पहुंच गए हैं। ख्वातीन के जुमरे में मीनाक्षी ने 48 किलोग्राम के जुमरे में आलमी नंबर 1 का अपना मकाम बरकरार रखा है, जबकि मर्दों के जुमरे में सचिन सिवाच और नरेंद्र बेरवाल बैनुल अक्वामी पैमाने पर मुसलसल कामयाबी हासिल करने के बाद टॉप 5 में पहुंच गए हैं। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। निजी तवानाई, तिजारत और सेहत देखभाल के शोबों में तआवुन के नए मौके की जस्तजू की। मरकजी

0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 9:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कविंद्र रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखित नाटक प्यासे पत्थर। निर्देशक हैं दीननाथ। बांग्ला रेडियो रूपांतर SS गुप्ता का। हिंदी अनुवादक रघुवीर सहाय। प्रस्तुति सहायक सुदर्शन कुमार और प्रतिभागी कलाकार हैं नीरज शर्मा, कृष्ण कुमार नरूला, गुलशन कपूर, RH चिश्ती, राजेश्वर नाथ और सुचित्रा गुप्ता।
1: आज प्रस्तुत है कविंद्र रविंद्रनाथ ठाकुर की सुप्रसिद्ध कहानी क्षुधित पाषाण के बंगला रेडियो नाट्य रूपांतर का हिंदी अनुवाद प्यासे पत्थर। बंगला रेडियो नाट्य रूपांतर श्री SS गुप्ता ने किया और हिंदी अनुवाद श्री रघुवीर सहाय ने। तो लीजिए सुनिए। प्यासे पत्थर।
2: खान साहब, आखिरकार हम आ ही गए।
3: हम बड़े खुशकिस्मत हैं हुजूर। भड़ोस बहुत उम्दा जगह है, नहायत ही उम्दा। हुजूर को खुद पता चल जाएगा, यहाँ आपको किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी। हुजूर को खुद पता चल जाएगा।
4: खबरदार, सब झूठ है।
2: ये क्या है?
3: ये महर अली है, पागल है, पागल।
2: अच्छा तो फिर
3: हुजूर कतई जिक्र न कीजिए। इसी चुंगी दफ्तर में रुई की गांठें गिनते गिनते बाल सफेद हो गए। कलेक्टर पर कलेक्टर आए गए, आपकी द्वार से किसी ने एक लफ्ज अपने मुंह से नहीं कहा। आप तो अभी माशाल्लाह नौजवान है।
2: हाँ साहब, आप कैसी बातें करते हैं, हम बुजुर्गों की बात न सुनेंगे तो कहाँ जाएंगे।
3: आजकल यहाँ रुई का बाजार।
2: बाजार को छोड़िए, मकान की बात कीजिए।
3: मकान किस मतलब से हुजूर?
2: मेरे ठहरने के लिए।
3: वो तो तय है, इस दफ्तर के बगल वाले 3 कमरे।
2: माफ कीजिए खान साहब, दफ्तर के बगल वाले कमरों में ठहरने का इंतजाम कुछ समझ में नहीं आता।
3: अव्वल इंतजाम है हुजूर, गुसलखाना, बावर्ची
2: खाना। नो, इनमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मैं यहाँ इस शोरगुल में बिल्कुल नहीं रह सकता, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा और मेरे साथ एक दोस्त का भी। ऊपर से वो कवि हैं, मैं उन्हें इस भीड़ भड़के में ठहरा कर नाराज नहीं करना चाहता।
3: अब तो आपने बड़ी मुश्किल में डाल दिया।
2: मुश्किल क्या है, भड़ोस तो आप ही से सुना है कि बहुत उम्दा जगह है, यहाँ ठहरने का कोई साफ सुथरा घर नहीं मिल सकता।
3: मुश्किल है हुजूर।
2: मुश्किल नहीं है, रहने दो। मैंने अपना मकान खुद ढूंढ लिया।
3: कहाँ हुजूर?
2: वो सामने पहाड़ के नीचे नदी के किनारे, वो जो सफेद पत्थर की इमारत है ना, है ना, उसमें 1-2 कमरे खाली नहीं मिल जाएंगे?
3: नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं।
2: क्यों, किसका मकान है वो?
3: उसे आप मकान कहते हैं।
2: चलिए महल सही, मगर है किसका?
3: शाह महमूद दोहन का।
2: भाई शाह महमूद साहब ने कोठी तो बहुत उम्दा बनवाई है, तारीफ करनी पड़ेगी। अगर उनसे कहा जाए तो क्या 1 कोना भी 3 दिन के लिए किराए पर ना देंगे?
3: उन्हें आप पावेंगे कहाँ हुजूर?
2: अच्छा, यहाँ नहीं रहते?
3: वो इस दुनिया में ही नहीं हूँ।
2: हम तो उनके लड़के तो होंगे।
3: कोई नहीं है, उस महल में चिड़िया का पूत भी नहीं है।
2: तब फिर क्या मुश्किल है खान साहब, मैं ही उसे आबाद किए देता हूँ, आप हमारा इंतजाम कर दीजिए।
3: हुजूर
2: क्या बात है, जल्दी खत्म कीजिए, मुझे लगता है जैसे वो महल मुझे बुला रहा है।
3: हुजूर
2: क्या हुआ खान साहब?
3: कुछ नहीं, आप वहां न जाइए, आपको उस महल के बारे में कुछ मालूम नहीं।
2: तो आप ही बताइए ना, मगर जल्दी।
3: 250 पहले की बात है, शाह महमूद को ये जगह पसंद आई, और उन्होंने अपने ऐश और आराम के लिए महल बनवाया। पीछे अरावली पहाड़, नीचे सामने शुस्ता नदी, महल से 150 सीढ़ियों का एक जीना नदी तक उतरता है।
2: मुझे शाह महमूद के बारे में कुछ नहीं पता, मगर उनका महल देखकर मैं उनकी पसंद की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता।
3: हुजूर, एक दिन था जब इसी महल के बागीचों में बसरे के लाखों गुलाब खिला करते थे और उसके कमरों में उन्हीं गुलाबों की तरह खिली हुई ईरानी परियां रंग रेलियां करती थी। हमाम में फव्वारों से गुलाब जल और केवा जाता था और उसके हौज में गोरे गोरे पैर लटकाकर बैठी हुई लंबे लंबे बालों वाली बांदिया सितार लेकर अंगूरों के देश की गजलें गाती थी।
2: और अब?
3: अब वहां जा रखा है? अब न हमाम है, न वो फव्वारे है, न वो गजलें हैं, और न संग मरमर पर गोरे गोरे पैरों की पायलों की झनकार है।
2: क्यों खान साहब, आप कुछ शायरी से भी शौक फरमाते हैं?
3: जी नहीं, कहां रुई की चुंगी के दफ्तर में काम करने वाला मुंशी कहां शायरी।
2: तब 250 वर्ष पहले की बातें आपको कैसे पता?
3: मैंने आंखों देखी बताई है।
2: आंखों देखी? खान साहब, आपकी उम्र क्या होगी?
3: यही कोई 80 से कुछ ऊपर। मगर हुजूर, किसी वक्त मैं भी जवान था।
2: ऐसे?
3: और मुझे हर चीज रंगीन नजर आती थी। ये खाली महल तब मुझे भी ऐसे ही बुलाता था जब तब मैं भागकर वहां जा पहुंचता था और कमरों, बरामदों और छज्जों में घूमता रहता था।
2: मगर तब तक तो वो सब ईरानी सुंदरियां और इत्र के फव्वारे खात्मे मिल चुके होंगे।
3: लोग ऐसा ही कहते, मगर मैं जानता हूं कि कुछ नहीं गया, सब वही है। जो प्यास बुझती नहीं वो मिटती भी नहीं।
2: ये पागल?
3: जी, ये पागल है। आप मेरी बात मानिए, उस महल में न ठहरिए।
2: किसी को भेजिए मेरा सामान ले आए, मैं वहीं ठहरूंगा। मैं और कुछ नहीं सुनूंगा।
5: इस महल में रहकर भी आकर भूख तो लगती ही है।
2: क्या मतलब? धन्य हो, मैं तो समझता था कि कवि जी को नदी का ये कलकल, उजली उजली सीढ़ियों की ये दीवार और डूबते हुए सूरज की ललचौर झलकी काफी होगी। लगता है बीते वैभव के इस अवशेष ने आपको मुगलिया खानों की ज्यादा याद दिलाई है और नई फूली हुई लताओं जैसी ईरानी सुंदरियों की कम।
5: यह बात तो नहीं विभोर, अतृप्त कामना का विद्रोह मुझमें भी होता है। मनुष्य की साथ कितनी विराट है भाई, कभी पूरी नहीं होती। इस विशाल ऐश्वर्य भवन में कितना आमोद, कितना परिहास, आदर सत्कार और अभिसार हो चुका होगा, कोई बता सकता है? मेरी कल्पना तो झूठ पड़ जाती है। और आज ये संगमरमर की अट्टालिका विधवा की भांति जैसे सादे कपड़े पहने हुए चुपचाप पड़ी है। न इसका मालिक बचा है, न उस मालिक की वासना को शांत करने वाले उसके असंख्य गुलाम, नवयुवतियों और कुमारियों का इसको पता मिलता है।
2: भला सोचो तो, 250 वर्ष पहले की बात और करीम खान ने कैसे अधिकार से सुनाई थी। वो भी तुम्हारा ही साथी है कवि।
5: वो सखिया क्या है?
2: और मेहर अली, वो भी तो एक पागल है यहाँ। और इस तरह कुल मिलाकर तीन।
5: करीम खान मुझसे कहता था मेहर अली इस महल में 3 रात रहा और पागल हो गया।
2: अच्छा, निसंदेह ऐसा सौंदर्य मैंने पत्थर में

0: कहीं नहीं देखा। ये नीचे दौड़ी हुई सीढ़ियां जिसके चरणों में नदी समर्पित होकर पड़ी हुई है, ये चौड़े चौड़े छज्जे, ये मेहराबे जिनके पार कभी कोई जाने नहीं दिया जाता होगा सिवाय अंतःपुर के ख्वाजा सराओं के। और ये हवा भी कैसी बह रही है जैसे पिए हुए हो। मुझे तुम कभी सुनो, सुना सुना कुछ
1: नहीं तो क्या सुनने को कह रहे हो?
0: अभी अभी न जाने कितनी सुंदरियों की भीड़ मेरे पास से होकर नीचे की तरफ गई है, तुमने उनका खिलखिलाना नहीं सुना? सुनो
1: भाई, मुझे तो केवल नदी का कलकल ही सुनाई दे रहा है
0: और कुछ नहीं।
1: कुछ नहीं,
0: वो देखो नहीं? और वो नदी में उतर गई, एक दूसरे पर हाथों से पानी उछालती हुई वे तैर रही है। देखो देखो देखो, ध्यान से देखो।
1: कहाँ? कुछ भी तो नहीं भाई।
0: ओ, तुम नहीं देख सकते, तुम नहीं देख सकते,
1: तुम कल्पना कर रहे हो, तुम्हें विभ्रम हो गया।
0: ये महक कौन सा इत्र है, कभी देखा नहीं। ओह, वो लहराते हुए दुपट्टे शाम के बादल जैसे रंगीन, वो चंचल पैरों की गोरी गोरी झलक चौकड़ी भरती हुई हिरनों से वो बिल्कुल मुझे छूती हुई चली गई, और उन्होंने मुझे देखा नहीं। मगर मैं मुझसे छिप नहीं सकती। ठहरो ठहरो, मैं तुम्हारे पास आता हूं।
1: ओ, तुम कांप रहे हो, तुम्हारा सिर फट गया।
0: छोड़ दो छोड़ दो, हो लो वो जा रही है, तुम भी उन्हें उड़ा दिया जैसे कोई निष्ठुर और मूर्ख बच्चा चुकते हुए कबूतरों को चिल्ला कर उड़ा देता है। मैं कहता हूँ छोड़ दो।
1: सुनो भाई,
0: सुनो, तुम्हें नूपुरों की रेम झुलम नहीं संपत्ति। ठहरो ठहरो, मैं आ रहा हूँ।
1: मुझे कुछ नहीं सुन पड़ता सिवाय तुम्हारे प्रलाप के, पागल हुए हो क्या?
0: ठहरो, ध्यान से सुनो कवि।
1: मुझे सिर्फ नदी का कलकल सुन पड़ता है। हाँ, दूर कहीं जंगल से झिंगुरों की झंकार भी आ रही है। तुम मेरा हाथ पकड़ लो, नहीं तो गिर पड़ोगे। और वो सोए हो जाग रहे हो? उठो चलो भाई, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, तुम्हारी कल्पना से तो वो बुझने की नहीं। मेहर अली, तुम कहते तो ठीक हो, इस वक्त भोजन को छोड़कर सब झूठ है। क्यों विभोर, तुम्हारी मुगलिया दावत में क्या क्या पका है?
0: भूख भी क्या चीज है, तुम्हारी कविता भी तुम्हारे पेट के भरे होने पर निर्भर है। क्यों कभी है ना। चलो खाना लग गया होगा, मगर आज नहीं तो कल जरूर मैं जाऊंगा। वो मुझे बुला गई है, वो हाथ, वो इशारा, जैसे वो केवल सितार के किसी मीट का बना हो, वो हीरे की अंगूठी जो उंगलियों में थी, जैसे सांप की मणि हो जो मुझे बरबस खींचे ले रही है। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। यही वो कमरा है जहां उसने मिलने के लिए कहा था, उसकी दूती मुझे इसी रास्ते से लाई थी। हाँ ठीक है, यही मेहराबी मैंने पार की थी, मुझे उनकी पच्चीकारी तक याद है। इसी कालीन से ढके हुए फर्श पर मैंने उसकी जरीदार जूतियों पर नजर रखकर यही कमरा पार किया था। और तुम आ गई, मैं यहां हूं। सुंदरी, तुम कहां चली गई? तुम मुझे बुला गई हो पर मुझे नहीं पता किधर जाना है।

0: ये इत्र और मसालों की सुगंध से भारी हवा मुझे तुम्हारे पास खींचे लिए जाती है। पर ये तो हवा ही है, इसका कोई ठिकाना नहीं किधर बह जाए। इधर आता हूं, आता हूं। नहीं नहीं, इतनी जल्दी मत चलो। क्या तुम्हें किसी के जाग जाने का डर नहीं? चलो, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चल सकता हूं। इन संकरी गलियों से जहां केवल अंधकार है, उन खुले बरामदों, छतों, जीनों से होकर तुम मुझे कहां लिए जा रही हो? हाँ, कहीं भी लिए जा रही हो, पर मैं कायर नहीं हूं। मुझे तुमने बुलाया है, मैं आऊंगा, निश्चय आऊंगा, मैं आऊंगा। कितना रूप, कितना ऐश्वर्य, और मैं इस अंतःपुर में बिना आज्ञा, बिना अनुमति के खड़ा हूं। तुम्हारा शरीर, तुम्हारे यौवन की उद्दाम अभिलाषा, तुम्हारा तन मन सब बंदी है। मेरी सुंदरी, खुली तलवार लेकर जो तुम्हारे द्वार पर पहरा देते हैं, वे तुम्हारी व्यथा को नहीं जानते। तुमने जिस दीर्घ प्रतीक्षा में अपने दिन काटे हैं, उसे इतिहास के शुष्क वृतांत नहीं नाप सकते। 250 वर्ष काल के लिए एक शत्रु निमिष भर है, पर मानव हृदय की अतृप्त आकांक्षा के लिए युग युग का विस्तार रखते हैं। सुंदरी, तुमने ये युग किस आशा में काटे? मेरी प्रतीक्षा में। मेरे ही लिए तुमने ही अपने नव विकसित यौवन को पुष्पित रखा, मुरझाने नहीं दिया। ये साजो सामान, सखिया, सभा, संगीत, सुरा, ये मधमाता आलोक जिसकी किरणों में सुगंध है, तुमने मेरे लिए संजो रखा, मिटने नहीं दिया, बुझने नहीं दिया। आज मैं आ गया हूं। अतीत की अतीत ज्वाला, तूने मुझे खींच कर बुला लिया है, मेरे पंखों को झुलस दे कि मैं फिर लौट न सकूं। मैं जानता हूं तू इसी कमरे में है, अपनी सखियों के बीच साम्राज्य की सजी बैठी है। ये नीला पर्दा हटाकर मैं तुझे देख सकता हूं। 250 वर्षों के अंधकार की भांति ये पर्दा मेरे सामने पड़ा हुआ है। मैं अपने हाथ से इसे हटाकर तुझे देख लूंगा। सुंदरी, ये क्या हुआ? ये कैसा अंधकार है? मैं कहां हूं कवि? तुम कहां हो? ये कैसा अंधकार है?
1: झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है।
0: नहीं, झूठ नहीं है, सब सच है, कुछ भी झूठ नहीं है। जो मैं देखता हूं ये सब सच है, सब सच है।

Buhur. Vibhor. Ganga. Vibhor. देखो तो इस निर्जन महल में आकर ठहरना भी एक अनुभव है। किसे पता था कि रूई की चुंगी का कलेक्टर इस जादू महल के खाली कमरों में रात रात भर भटकने के लिए मुझे को अपना साथी चुनेगा। भगवान भला करे मैं

0: वैली का, जो पागल हो गया। भगवान मुझे भी सुबुद्धि दे कि मैं बचा रहूं। मगर विभोर है कहां? विभोर, विभोर, विभोर।
1: तुम आ गई।
2: मैं तो बराबर तुम्हारे साथ रहती हूँ।
1: वो तो मैं जानता हूँ सुंदरी।
2: तब फिर क्यों पूछते हो?
1: मैं पूछ रहा था क्या अब तुम सदा के लिए मेरे पास आ गई हो?
2: नहीं, अभी नहीं, अभी समय नहीं आया है।
1: पाषाण, तुम पाषाणों में रहती हो इसी से इतनी निष्ठुर हो, या इतनी निष्ठुर हो इसी से पाषाणों में रहती हो?
2: तुम भी विचार में पड़ गए। हर भी पुरुष की बुद्धि।
1: मैं नहीं जानता तुम कौन हो, यही जानता हूं कि पिछली दो रातों से तुम मुझे जादू की तरह देखती हो और छिप जाती हो, मुझे बुलाती हो और मैं खिंचा चला आता हूं। आओ, पास आओ।
2: यहां से तो मैं तुम तक नहीं पहुंच सकती।
1: कहां से? तुम कहां हो?
2: बताओ तो जाने।
1: तुम मेरे सामने हो।
2: नहीं।
1: तुम मेरे दाएं हाथ हो।
2: नहीं।
1: फिर कहां हो? क्या तुम चली गई?
2: नहीं, नहीं।
1: फिर तुम कहां हो? क्यों नहीं आ सकती? क्या तुम इस महल के किसी तहखाने में बंद हो? किसी धन कब्र के अंदर तुम छिपी हो? रोती क्यों हो? रोती क्यों हो? रो नहीं।
2: तुम मुझे यहां से छुड़ा ले जाओ।
1: मैं तुम्हें ले जाऊंगा। हाँ, मगर मगर कैसे?
2: इस माया, इस नींद, इस स्वप्न के द्वार तुम खोलकर मुझे मुक्त कर दो।
1: परंतु मैं कैसे कैसे ये करूं?
2: अपने पौरुष से।
1: इस धूमिल मादक स्वप्न की माया में मेरा पौरुष शिथिल हो गया है सुंदरी।
2: फिर मैं जाना चाहती हूँ। मुझे छुड़ाओ, मुझे यहाँ से ले चलो। तुम मुझे खोल पर बिठा कर जंगलों को चीर कर, पहाड़ियों को लांग कर, नदियों को तैर कर उजाले के लोक में ले चलो, ले चलो। यहाँ के भारी धुएं जैसे अंधेरे में मेरा दम घुटता है। मैं यहाँ की नहीं हूँ, यहाँ नहीं रह सकती, नहीं रह सकती।
1: तुम कौन हो? कहाँ से आई थी?
2: खरीदी हुई तासी का भी कोई परिचय होता है? मुझे ना अपने पिता का ज्ञान है, ना अपनी माँ की याद। राजपुरी के बाजार में एक निर्मम बदबू मुझे किसी के साथ बेच गया।
1: वो कौन था?
2: वो भी कोई गुलाम था।
1: उसने तुम्हें शाह की नजर कर दिया। तुम्हारे उठते हुए यौवन, सलज्ज नयन और संकोच भरे शरीर को वो कुछ स्वर्ण के बदले बर्बर वासना के हाथों अपमानित होने के लिए यहाँ छोड़ गया।
2: हाँ, वरना फारस की लड़की इस अंतःपुर में कैसे आती है?
1: अंतःपुर में क्या हुआ?
2: वो मैं किसी के सामने नहीं कह सकती।
1: क्यों? क्या उसमें केवल लज्जा की ही बात है? आनंद की, उपभोग की, ऐश्वर्य की कुछ भी नहीं? संगीत, सुरभि, सुरा
2: और हाथ में लपलपाती हुई कटार, विषपुची आग्नेय आंखों की आग क्या थी?
1: इतना ऐश्वर्य और इतना अपमान, ऐसा कठोर बंधन।
2: लेकिन ये बंधन उससे भी कठोर है जिसमें मैं अब हूं। मुझे छुड़ाओ, मुझे यहाँ से छुड़ा ले चलो।
1: ले चलूंगा, अवश्य ले चलूंगा। मैं तुम्हें इस अस्पष्ट अंधकार और इस धूमिल स्वप्न माया के पार वायु वेग के घोड़ों पर बिठाकर अपने हृदय से सिमटा कर निकाल ले जाऊंगा।
2: तो फिर आओ।
1: आता हूं, पर तुम कहां हो?

0: मैं इस अंतिम अंधेरी कब्र में कैसे खोजूं? तुम कहाँ हो? तुम कहाँ?
1: तुमने भी मुझे निराश कर दिया।
0: मेरा मन तुम्हारे पास आने के लिए तड़पता है। मैं तुम्हें छुड़ा ले जाना चाहता हूँ, अपने हृदय में रखकर तुम्हें नया जीवन देना चाहता हूँ। परंतु तुम हो कहाँ मेरी सुंदरी माया? तुम कहाँ हो?
1: तुमने भी मुझे धोखा दिया।
0: नहीं,
1: तुम भी औरों की तरह चले जा रहे हो।
0: मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हूँ, फिर भी तुम रोती हो।
1: पुरुष का समर्पण मुझे नहीं चाहिए, मैं उसे खूब जानती हूँ।
0: फिर तुम क्या चाहती हो?
1: मैं एक ऐसा पुरुष चाहती हूँ जो सब बाधाएं सब विघ्न मिटाकर अपने अचीन साहस से मुझे इस पाषाण कारागार से मुक्ति दिला सके।
0: क्या वो मेरे जैसा सामान्य पुरुष नहीं है जिसे तुम चाहती हो?
1: 250 वर्षों से मैं उसकी प्रतीक्षा में हूँ। वो नहीं आया। मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, कभी नहीं, कैसे मुझ कभी नहीं, कभी
0: नहीं। वो नहीं, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। मैं ही वो पुरुष हूँ। हाँ, घना अंधकार, वर्षा, तूफान, आंधी, कोई मुझे नहीं रोक सकेंगे। भय, मोह, निद्रा, वासना, सब बंधनों को तोड़कर मैं तुम्हें यहां से इस पाप कलुषित संगमरमर के खैर से छुड़ा ले जाऊंगा।
2: आओ मेरे पास आओ। रो नहीं,
0: तुम कहां हो? अपनी कब्र से निकल कर तुम मेरे सामने आओ।
2: आओ,
0: नहीं, इतनी जोर से आतनाद क्यों कर उठी? तुम्हारा ये चीत्कार मेरे पौरुष को छेड़ता है। तुम मुक्ति पाओगी। केवल मेरे सामने आ जाओ। आओ
2: आओ आ जाओ। आओ, तुम्हारे नूपुरों की झुन झुन झुन झुन सुनता हूँ।
1: तुम आ रही हो।
2: आओ आओ।
0: सुंदरी, तुम कहाँ हो?

0: प्यासे पत्थर। अभी आपने कविंद्र रविंद्रनाथ ठाकुर की सुप्रसिद्ध कहानी क्षुधित पाषाण के बंगला रेडियो नाट्य रूपांतर का हिंदी अनुवाद सुना। बंगला रेडियो नाट्य रूपांतर श्री एसएस गुप्ता ने किया और हिंदी अनुवाद श्री रघुवीर सहाय ने। निर्देशक थे दीनानाथ और प्रस्तुतिकरण सहायक श्री सुदर्शन कुमार और कृष्ण कुमार नरूला। भाग लेने वाले कलाकार थे नीरज शर्मा, गुलशन कपूर, आर एच चिश्ती, राजेश्वर नाथ और सुचित्रा गुप्ता।
1: अभी आप सुन रहे थे कविंद्र रविंद्र नाथ ठाकुर का लिखा नाटक प्यासे पत्थर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बजने को है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी है। आज के राष्ट्रीय क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं मैथिली लोक संगीत, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा। सौम्या मिश्रा बिहार के मधुबनी जिले की निवासी हैं। वे एक प्रतिभाशाली लोक गायिका हैं, जिन्हें मैथिली, हिंदी और भोजपुरी में अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों के लिए विशेष पहचान प्राप्त है। आपके संगीत में मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की गहरी छाप दिखाई देती है, साथ ही उसमें आधुनिक श्रोताओं को आकर्षित करने वाली नवीनता भी विद्यमान है। सौम्या मिश्रा देश भर के अनेक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक समारोहों और मंचीय कार्यक्रमों में अपनी मधुर एवं भावपूर्ण गायकी से श्रोताओं का मन मोहती रहती हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा की स्वरबद्ध प्रस्तुति में मनमोहक मैथिली लोकगीत। आज के कार्यक्रम में संगत करता है तबले पर हरिभूषण झा, ऑक्टोपैड पर ललित, ढोलक पर अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर शशिभूषण झा। सौम्या मिश्रा अपने कार्यक्रम का आरंभ कर रही हैं महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे से।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक। वी प्रेजेंट मैथिली फोक सॉन्ग बाय सौम्या मिश्रा एंड ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। सौम्या मिश्रा हेल्स फ्रॉम मधुबनी बिहार। She is a gifted folk vocalist, acclaimed for her soulful renditions in Maithili, Hindi and Bhojpuri. Her music reflects a deep connection to the cultural traditions of Mithila, while carrying a freshness that appeals to contemporary audiences. Sowmya Mishra has performed at numerous prestigious cultural festivals and stage programs across the country, enchanting listeners with her melodious voice and heartfelt expression. In today's program, the accompanists are Haribhushan Jha on tabla, Lalit Kumar on octopad, Aman Krishan on dholak, and Shashibhushan Jha on keyboard. She begins her rendition with a composition titled Chanan Bhel.

0: अभी आप सुन रहे थे सौम्या मिश्रा से महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे। आइए अब सुनते हैं एक लगनी गीत जिसके बोल हैं एकता हम बारी कुमारी।
1: We just heard a composition titled चानन भेल। Continuing this program, she now presents a composition titled एकता हम बारी कुमारी।

0: आप सुन रहे हैं सौम्या मिश्रा द्वारा प्रस्तुत मैथिली लोकगीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक चैती, जिसके बोल है कुहके बारी कोयलिया हो रामा।
1: That was a Maithili composition performed by Soumya Mishra. We will now listen a composition titled Kuhke Bari Koyaliya Ho Rama.

0: अभी आप सुन रहे थे चैती गीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक पूर्वी, जिसके बोल हैं, बाट हेरी दिन काटी नूर बहैया।
1: That was a मैथिली composition performed by सौम्या मिश्रा। She concludes her rendition with a composition titled बाटे हेरी दिन काटी नूर बहैया।

0: इसी के साथ आज के कार्यक्रम में मैथिली लोकगीत की ये प्रस्तुति अब यहीं संपन्न होती है। इस कार्यक्रम में तबले पर संगत की हरिभूषण झा ने, ऑक्टोपैड पर थे ललित कुमार, ढोलक पर थे अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर साथ दिया था शशि भूषण झा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर ओडिशा की प्रस्तुति।
1: विद दैट शी कंक्लूड्स हर रेंडिशन ऑफ मैथिली फोक कॉम्पोजिशंस। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड इन द स्टूडियो ऑफ आकाशवाणी दिल्ली। कॉन्टिन्यूइंग द ब्रॉडकास्ट फ्रॉम आकाशवाणी दिल्ली, नाउ वी विल लिसन टू द प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी जयपुर ओडिशा।

क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं मैं अमीना हुसैन। नमस्कार, आज हम आपको सुनवा रहे हैं उड़ीसा प्रदेश के कुछ मधुर और मन मोह लेने वाले आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र उड़ीसा। इन गानों को सुरों में सजाकर आप तक पहुंचाया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र उड़ीसा के सुप्रसिद्ध टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर श्री विजय कुमार सामंतराय। श्री विजय कुमार सामंतराय माता श्रीमती स्नेहलता सामंतराय और पिता श्री चंद्रशेखर सामंतराय के सुपुत्र हैं। आपने गुरु श्री हेमंत कुमार त्रिपाठी के तत्वावधान में बचपन से ही बेहला यानी कि वायोलिन की शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था। सन 1994 में आपने आकाशवाणी जयपुर केंद्र में स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पर योगदान दिया। उसके बाद से आपने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक सीढ़ियों को पार करते हुए सन 2023 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, आकाशवाणी और दूरदर्शन की तरफ से टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर का मान्यता हासिल किया। आपने सन 2015 में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में बेला वादक के तौर पर संगत भी किया है। आपने आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रम में संगीत देकर 20 से भी अधिक नेशनल और इंटरनेशनल एनुअल अवार्ड भी प्राप्त किया है। तो लीजिए, आज हम आपको सुनवा रहे हैं विजय कुमार सामंतराय के बनाए हुए सुरों से सजे कुछ आधुनिक ओडिया गीत। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे हैं तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण सतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह, ऑर्गन पर के संतोष कुमार राव, सैक्सोफोन पर हैं राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपैड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर हैं उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय। स्पेशियल इफेक्ट दिया है गुप्तेश्वर पाणिग्राही। तो प्रस्तुत है पहला गाना, जिसका बोल है मन हृदय जेते सबु कथा तम आगे प्रिय कही दिली। मतलब है अपने दिल की हर बात लो आज कह दिया हमने आपके सामने। ये बोल लिखा है गीतकार रंजन कुमार बेहरा और मधुर आवाज है प्रीति पंडा की।

चलिए अभी सुनते हैं जिंदगी के कुछ भूल भुलैया अनजान राहों की बात। ये बोल लिखा है गीतकार बसंत कुमार दास, आवाज है सनातन पुरोहित दास की। पांथ शाड़ार रातिटीए पाई घड़िए पड़ुछी उणा, हेले मधुशाला अजणा कोणरे सरुनाही बिका किणा। जीवन हेउ केते बाट बणा, हेउ केते बाट बणा।

अभी सुनते हैं गीतकार किशोर चंद्र नंद के लिखे हुए गीत आवेगरे के ही कही थीबा कथा मनो तुली ने किया अंके। इस गाने को आवाज दिया है प्रीति पंडा। किसी ने जो दिल से कह दिया कुछ बातें, आज ये मन उन्हें ही क्यों ढूंढे।

कार्यक्रम के अगले गाने को अपने मन मोह लेने वाले आवाज से प्रस्तुत कर रहे हैं सनातन पुरोहित दास। गीतकार हैं गौर पटनायक। बोल है नाटकर मिछ अभिनय छड़ा आउ किछि जाने नाही, मतलब है जीवन के रंगमंच में मैं हूं एक अभिनेता, झूठा अभिनय के सिवाय और कुछ भी तो नहीं आता।

अंत में प्रस्तुत है एक युगल गीत, गीतकार रंजन कुमार बेहरा, आवाज है सनातन पुरोहित दास और प्रीति पंडा की। बोल है, प्रथम देखा रे तुम्हें मनकल चोरी, अल्प कथारे आहा लागिगला टोरी, पहली ही मुलाकात में मन चुरा लिया, थोड़े ही बातों में हाय दिल लगा लिया।

अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ ओडिया आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया था आकाशवाणी जयपुर केंद्र उड़ीसा में और प्रसारण किया गया आकाशवाणी दिल्ली से। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे थे तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण सतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह और गान पर के संतोष कुमार राव, सेक्सोफोन पर थे राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपेड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय, स्पेशियल इफेक्ट दिया था गुप्तेश्वर पाणिग्राही। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग में सहायता किया था रंजन कुमार बेहरा, यांत्रिक सहायता किए थे शरद कुमार पाढ़ी और एन योगेंद्र। इसी के साथ क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विदा चाहती हूँ मैं अमीना हुसैन, नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: The discussions also
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: Can enter the Venezuelan market successfully.
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
3: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा। चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मिजोरम के चम्फाई जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई म्यांमा से अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी की तस्करी और 970 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुद्दीचेरी और कराईकल में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा।